ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ।

0: किसे लगा दोक पहुंचे जाई सटिया किसे लगा दो
1: अन्न देवता पानी देवता बसंतर देवता लून पंजमा पाया किरत तहवा पाप पवित
0: पापी सोतन गड्या चुका पया तित जित मुख नाम ना उचि रह बिन ना वै रस खा नानके वे जानिए तित मुख

0: पास, वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास। साहिब से ती हुकम ना चले कही बने अरदास, कूड़ कमाने कूड़ो हो गए, नानक सिफत विगास महला दूजा।
1: नाले उने दोस्ती बड़ा रुसुन हो, पानी अंदर लीक ज्यो तिसदा थावना थो महला दूजा। आना कई कम आनस तैरास, जे का चंगी करे दूजी पीवे रस। पौड़ी चक्कर लग चक्री अगला।

ਅੰਤਰ

सर्विस दी पंजाबी सेवा च तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत स्वागत। पेश कर रहे हैं सुफियाना कलाम। मैं खुदा शीशा साफ कीता तां मैं नजर आया, ते जद मैं साफ कीता तां तू नजर आया। चल बंदिया मैं साफ करके उस अन्ना सोने दे लड़ लगीए। आप प्रोग्राम दा आगाज कर दिया सैदा बेगम दे गाए इस सुफियाना कलाम दे नाल, कदी आमिल बिरहू सताई।

ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ।

यह आकाशवाणी की सिंधी सरसाएं 9870 किलोहर्ट से तैखा सवाए आकाशवाणी की सिंधी सर्विस रोज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश से बुध सकता है। प्रोग्राम शुरू हो चुका है तफसील में कुछ नजर आए थोड़ी देर में अब हमेशा भगत कराम साहब के बुधना तैखा कोई आजादी के दिन की अहमियत से एक नंबी तकरीर पेश की कुछ हब वतनी गीत पेश प्रोग्राम की तफसील आकाशवाणी की सिंधी सर्विस बुध रहा है भगत कोराम साहब जन के मिठड़े आवाज में कलाम बुधूं।

जी सिंधी सर्विस आहे। हीअ पेश आहे आज़ादी जे ॾींहं जे अहमियत ते हिकु नंढी तक़रीर। हर साल 15 अगस्त ते भारत में पंहिंजी देशभक्ति जी लहर डोड़ी पवंदी आहे। दिल्ली में लाल किले जे शानदार भितियुनि खां वठी करे जिते प्रधानमंत्री तिरंगो फहिराईंदो आहे, तव्हांजो वठी ॻोठ जे नंढे स्कूलनि ताईं आज़ादी जो जज़्बो गूंजी उठंदो आहे। आज़ादी जो ॾींहुं सिर्फ़ को हिकु क़ौमी मोकल जो ॾींहुं कोन आहे, बल्कि इहो यादि जो हिकु पवित्र ॾींहुं आहे, ख़ुदमुख़्तारी जो हिकु चुस्त जशन आहे ऐं उन्हनि क़दरनि जी हिकु ताक़तवर तस्दीक आहे जेके हिंदुस्तानी क़ौम खे बयान था कनि। हिन जी अहमियत अजमाती शोर में गहरी आहे। हिन महिनत सां जदोजहद सां हासिल कयल आज़ादी जो सबूत ऐं मुस्तक़बिल लाइ हिकु रोशनी आहे। 15 अगस्त 1947 जे सभ खां फौरी ऐं नाक़ाबिल तरदीद अहमियत तक़रीबन 2 सदियुनि जे ब्रितानवी बैठकी हुकूमत जे ख़ात्मे में आहे। भारत जेको कॾहिं ब्रितानवी सल्तनत में ताज में हीरो हो, जंहिंजी इक़्तिसादियत तमामु ई वसी हुई, मुल्क खुशहाल हो, तंहिंखे ब्रितानवी बैठकी हुकूमत तमामु ई पीड़ी करे मुआशी एक्सप्लॉइटेशन कई, सियासी दबाव विधो, सियासी गुलामी विधी ऐं सकाफ़ती तौर गुलाम बणायो। मुल्क जे वसी ज़खीरनि खे ख़तमु कयो वियो, ॾींहं हुनर खे बर्बाद कयो वियो ऐं इन खां वधीक माण्हुनि खे सननि बुनियादी हक़नि ऐं ख़ुदमुख़्तारी खां महरूम रखियो वियो। आज़ादी जो ॾींहुं इन ग़ुलामी जे दौर खां आज़ादी जो ॾींहुं आहे। सभु ॿुधाए थो त कीअं असां बिना फसादनि जे ऐं लॻातार जदोजहद करे बैठकी हुकूमत खां आज़ादी हासिल कईसीं। आज़ादी जी जदोजहद में घणनि अॻवाननि हिसो वरितो, जहिड़ो कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐं इनखां सवाइ ॿिया अणघड़ियल अॻवान ऐं अणघड़ियल माण्हुनि हिसो वरितो, जिन पंहिंजी जान जी क़ुर्बानी ॾेई करे आज़ादी हासिल कई। आज़ादी जे लड़ाकनि जो पहिरियों जेल में क़ैद कयूं वियूं, इज़ार ॾिना विया, लाठीचार्ज कयो वियो, एतिरे क़दुरु जो खेनि मौत जी सज़ा पिण ॾिनी वई, पर पोइ बि सननि आज़ाद भारत जो सपनो कॾहिं ख़तम कोन थियो। गैर क़ानूनी हलचल खां वठी करे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट ताईं, भारत छॾण जी हलचल खां वठी करे ब्रितानवी बैठकी हुकूमत खे भॼाइण जी हर लहर तव्हांखे ब्रितानिया दॿाइण जी ज़बरदस्त कोशिश कई। तंहिं करे आज़ादी जो ॾींहुं उन्हनि देशभक्तनि जे क़ुर्बानीनि खे इज़त ॾियण जो ॾींहुं आहे, खेनि यादि करण जो ॾींहुं आहे, जिन सिधे नमूने ऐं अणसिधे नमूने आज़ादी जे मुश्किल राह खे पार करे ईंदड़ पीढ़ियुनि खे ग़ुलामी खां आज़ाद करायो। भारत में आज़ादी जो ॾींहुं महज इतिहासिक आज़ादी जे हक़ीक़त खां अॻिते तमामु घणी माना रखे थो। भारत जी आज़ादी सां आलम जी वॾी में वॾी लोकशाही बरपा थी। अॼु राति जो जवाहरलाल नेहरू सही फरमायो त जॾहिं पूरी दुनिया सुतल आहे, भारत जाॻी रहियो आहे ऐं आज़ाद आहे। इहो को फ़क़त हुकूमत जी या ताक़त जी मटसट कोन हुई, पर हिकु सभ्यता जी सुजाॻी पिण हुई, जंहिंखे लंबे अरसे खां दॿायो वियो हो। इहा मुल्क जी लोकशाही जे उसूलनि ॾांहुं कोरबता हुई त माण्हुनि जी हुकूमत लाइ माण्हुनि पारां ऐं वणनि लाइ इहा लोकशाही हलंदी रहंदी। एतिरे क़दुरु जो बाक़ी आलम में बैठकी हुकूमत ख़िलाफ़ झेड़ा ऐं छिकताण हली रही हुई। आज़ाद भारत माण्हुनि खे सननि जा बुनियादी हक़ ॾिना। जदीद भारत खे अॾींदड़नि हिकु गैर मज़हबी, सभिनी शहरनि लाइ बराबरी जा हक़ ऐं सभिनी मज़हबनि जी इज़त, सभिनी शहरनि खे बराबर वजह जी राह चूंडी। सभिनी शहरनि खे इंसाफ, आज़ादी, बराबरी ऐं भाईचारो आईन तहत मिलंदो। आज़ादी जो ॾींहुं ॿुधाए थो त जिन बुनियादी हक़नि जे लाइ असांजे आज़ादी जे लड़ाकनि पंहिंजे ज़िंदगियुनि जी क़ुर्बानी ॾिनी, से सभिनी शहरनि खे बाक़ाइदा ॾिना वेंदा। आज़ादी जे ॾींहं ते मुल्क भर में थींदड़ जशन पंहिंजी पाण में घणी माना रखनि था। प्रधानमंत्री देश खे लाल किले तां ख़िताब कंदो आहे ऐं देश जी हासिलातुनि, ललकारनि खे मुंहुं ॾियण ऐं देश लाइ ईंदड़ वक़्त जे दूरंदेशी खे पधरो कंदो आहे। झंडो फहिराइण खां वठी करे सकाफ़ती प्रोग्राम ऐं परेड्स मुल्क भर में कढी वेंदियूं आहिनि, जंहिंमें मुल्क भर में माण्हुनि मंझि फ़ख्रु ऐं एकता भरियल हूंदी आहे। स्कूलनि ऐं कॉलेजनि में अहिड़ा प्रोग्राम थींदा आहिनि त जीअं नंढी टही खे पिण असांजी माज़ी जी ॼाण पए ऐं मुस्कूल जे ज़िमेवारनि खां नंढी टही वाक़िफ़ थी सघे। ऊचे फहिरंदड़ तिरंगे झंडे सां गॾु क़ौमी तराना क़ौम ऐं इन जे तारीख़ सां हिकु गहरो जज़्बाती तालुक़ु पैदा कनि था। इन सभ खां वधीक भारत जी आज़ादीअ पूरे आलम भर ते ज़बरदस्त तासीर छॾियो।

यह आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है 9870 किलोहर्ट्ज़ पे। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप ए डीडी फ्री डिश से बुझी सकता है। आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है। यह पेश है देशभक्ति गीत है।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरा हिंदर असाजे प्रोग्राम जो वक्त पूरा थी रहा है वरी असा मुलाकात थी सुबह सुबह जो यानी कि भारतीय वक्त मुताबिक 4:30 बजे तेसी तक मोकल सदाई कर

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 अगस्त तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर राष्ट्रध्वज फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में

0: भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह अभियान 2022 में शुरू हुआ था और अब एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इसका विशेष महत्व है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से फोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कल आबिजान में कोट डिआइवर के राष्ट्रपति अलासाने ओटारा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और कोट डिआइवर के बीच बढ़ती साझेदारी पर चर्चा की। श्री सिंह ने अफ्रीका के साथ मजबूत और व्यापक संबंधों को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे भारत और कोट डिआइवर के लंबे समय से चली आ रही मित्रता को और मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी के गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण स्कूल मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। श्री शाह मुर्गा थिएटर सिग्नल से हर घर तिरंगा रैली को भी झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। श्री शाह दो दिन के दौरे पर कल पुदुचेरी पहुंचे थे। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध के सिलसिले में आज राज्य सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच अगले दौर की वार्ता होगी। झारखंड सरकार ने परीक्षा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी जारी की है। इसके माध्यम से छात्र और सभी संबंधित पक्ष अपने सुझाव भेज सकते हैं। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से अधिक लोग अब भी प्रभावित हैं। सरकार ने बताया है कि 12 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। प्रशासन की ओर से 53 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं। इनमें 8,568 विस्थापित लोगों ने शरण ले रखी है। लगभग 10,600 हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न है। इसके अलावा 41 राहत वितरण केन्द्र भी कार्यरत हैं। जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से अमरनाथ यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोका गया है। कल जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1,202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों के काफिले में जम्मू के लिए रवाना किया गया। कल श्री अमरनाथ जी गुफा में 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में आज भारत की अश्मिता चालिहा का सामना चीन की क्यू हान से होगा। मैच दक्षिण कोरिया के आसन में कुछ देर बाद 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi and U.S. Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-U.S. comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from

0: संगीति का कार्यक्रम में अभी आप माधवी मधुकर से ये भजन सुन रहे थे, अभी आपने ये मीराबाई की रचना सुनी। इसी के साथ संगीति का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
2: तो इसे
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह भी सुहानी होगी और आप भी अपने अपने कामों में। वैसे तो आज संडे का दिन है तो भाई थोड़ा आलस तो होता ही है, लेकिन संगीत तो भाई सुनिए। और माहौल भी है भक्ति नुमा। जी हाँ, क्योंकि सावन चल रहे हैं और हर जगह कांवड़ियों का ताता वाता लगा हुआ है। हर जगह भोलेनाथ की भक्ति का माहौल है। चलिए आपको सुनवाते हैं एक कन्हैया का भजन अनूप जलोटा की आवाज में।

बजाए।

0: गिरधारी दिल में समाया।
1: जी हाँ दोस्तों, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका है जो जहाँ हम कल की थकान को अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सकते हैं। और भाई आज तो संडे का दिन है, तो भाई पूरे हफ्ते की थकान आपकी उतर ही गई होगी, क्योंकि आज तो आप आराम से उठे होंगे। दोस्तों जिंदगी में हर किसी के पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं। अगर आज मन थोड़ा भारी है तो याद रखिए, जैसे सूरज को उगने के लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए, वैसे ही अगर आपको चमकना है और आपको अपने आप को प्रूफ करना है तो किसी की मंजूरी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सिर्फ ईश्वर पे, ऊपर वाले पे भरोसा रखें।

दोस्तों परिवार के साथ बिताए गए सभी पल बहुत ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि खुशियां बड़ी नहीं होती, अपनों के साथ बिताए छोटे छोटे पल ही जिंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। परिवार का साथ हो तो हर पल खास होता है।

0: दोस्तों, आपका अपनों का साथ, यूं ही बना रहे, यूं ही खुश रहे, यूं ही मस्त रहे, इसी के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8 बजने को है, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी, कभी भी, 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 185वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसलेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
5: अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अभी एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी हो

अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुदुचेरी में हैं। श्री शाह गोरुमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृहमंत्री अमित शाह आज पुदुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुदुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुदुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुदुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एसनाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीश

0: न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलेजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। नजीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। IMD ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जलस्तर बढ़ने से यहाँ निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर सता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया के एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के KJ हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता

0: चालिहा और चीन की क्यूहान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यूहान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमरीका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल न पूछें, समाधान भी खोजें, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे, हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रो स्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िये जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 71,921 पर पड़ा असर।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, I'm Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discuss ways to further strengthen comprehensive global strategic partnership in key areas. Har Ghar Tiranga campaign begins today, coinciding with 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram. Appointment of 30 judges for High Courts of Madras, Calcutta, Madhya Pradesh and Karnataka notified. Amarnath Yatra to remain suspended from both Pahalgam and Baltal routes due to repair of tracks and forecast of bad weather. IMD issues orange alert for heavy rainfall in Uttarakhand and Chhattisgarh today. Sadnik Roy and Sayantan Kushari win gold medal in under 31 pairs at 9th World Bridge Federation Youth Transnational Championships. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi and US Vice President J.D. Vance discussed ways to further deepen India-US comprehensive global strategic partnership across key areas. Mr. Modi received a phone call from Vice President Vance yesterday. In a social media post, Mr. Modi said they noted the sustained momentum in the high-level engagements and reaffirmed their commitment to further strengthening cooperation in trade, defense, critical and emerging technologies, energy security and critical minerals. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. Prime Minister Narendra Modi has said new sectors are emerging in the country, offering fresh opportunities for the youth. Addressing the 57th convocation of Indian Institute of Technology, IIT Delhi, yesterday, the Prime Minister cited sectors such as semiconductors, space and drones, and said India is working towards becoming self-reliant across all sectors. Mr. Modi said this drive towards self-reliance will serve as a strong foundation for building a Viksit Bharat.
2: Our Bharat, economic self-reliance, technological self-reliance, industrial self-reliance, aise har sector mein aatmanirbhar banne ke liye kaam kar raha hai. Yahi Viksit Bharat ki majboot neev ka saboot hai. Is majboot neev par आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है.
1: He further urged the students to keep the national interest at the center of their decisions.
2: आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है. अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा.
1: The Har Ghar Tiranga campaign will begin today and will run through 17th of this month. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. The campaign, which began in 2022 as part of the Azadi Ka Amrit Mahotsav celebrations, has since evolved into one of the country's largest public participation movements. Over the years, it has emerged a true people's movement that inspires citizens across regions and communities to celebrate the tricolour as a symbol of India's unity, honour and collective national identity. A report. This year's campaign holds a special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song, Vande Mataram, the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. As part of the Independence Day commemorations, the government will also observe Partition Horrors Remembrance Day on August 14th across the country to remember the suffering and displacement caused by the partition of India. The observation will include silent marches, exhibitions on partition, documentary screenings and other commemorative programs across states and union territories. Inviting citizens to participate in the campaign, the Ministry of Culture has urged people to hoist the national flag with pride, learn and sing Vande Mataram, take part in community activities and join the nation in remembering the sacrifices that shaped India's journey to independence. More than 200 Indian embassies, high commissions and consulates will organize a series of events to mark the campaign. A key highlight this year will be the Surya Path Tiranga Digital Relay, in which 54 Indian missions and posts selected according to the sunrise sequence across time zones will participate. The relay will begin on 15th of August from India's easternmost diplomatic mission in Fiji and conclude at the Consulate General of India in San Francisco. Jigyasa Pandey, Akashvani News, Delhi. Union Home Minister Amit Shah will flag off Har Ghar Tiranga Yatra at Muruga Theatre Signal in Puducherry today. Mr. Shah, who is on a two-day official visit, arrived in the Union Territory last night. More from our correspondent.
3: Union Home Minister Amit Shah will present the ceremonial flag to the Puducherry Police, marking the conferment of the prestigious President's Police Colour on the force. The President of India had announced the conferment of the Police Colour on the Puducherry Police on May 8th in recognition of its exceptional service, discipline and distinguished achievements. Personnel from various wings of the Territorial Police are taking part in a ceremonial parade being held as part of the program. Puducherry Lieutenant Governor K. Kailash Nathan, Chief Minister N. Rengasamy and Home Minister A. Namashivayam are also present at the ceremony. Vivinesh Nath, Akashvani News, Puducherry.
1: This is our

0: नमस्कार।
1: शर्मा जी, आप छंदों पर बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि कविता में रुचि कैसे पैदा हुई और फिर आपकी साहित्यिक यात्रा कहाँ से आपने शुरू की?
0: मैं मूल रूप से प्रतापगढ़ जिले का निवासी हूँ, उत्तर प्रदेश से, और मेरी साहित्यिक यात्रा वहीं से प्रारंभ हुई। जब मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता था तो उस समय विद्यालयों में अंताक्षरी प्रतियोगिता होती थी, उसमें जीतना होता था और कई बार कुछ भूल गए तो कुछ नई तुकबंदियां करके सुनाते थे।
1: अच्छा,
0: इस प्रकार से तुकबंदियां शुरू हुई।
1: अच्छा,
0: धीरे धीरे करके मैंने अपने मित्रों को सुनाना प्रारंभ किया, कुछ जोड़ तोड़ करके लिखना शुरू किया और वहीं से प्रारंभ हुई। फिर धीरे धीरे करके प्रतापगढ़ शहर में कुछ काव्य गोष्ठियों में गया, कुछ मित्रों से मिला और फिर उन लोगों ने मेरा परिचय और लोगों से कराया और इस प्रकार धीरे धीरे करके मेरी काव्य यात्रा प्रारंभ हो गई।
1: इस तरह मतलब स्थानीय मंचों पर? आप
0: स्थानीय मंचों पर।
1: अभी आपके पीछे एक पुस्तक आई थी, जटायु शतक। जटायु तो पौराणिक पात्र है और ये पक्षी है, आमिष भोगी पक्षी है, तो जटायु को आपने अपने कविता का पात्र कैसे बनाया? प्रायः हमने देखा नहीं है कि ऐसा होता है।
0: जटायु पर लिखने के पीछे जो कारण था, प्रारंभ में रामलीलाएं खूब देखा करता था।
1: अच्छा,
0: रामलीला में जब मंचन होता था इस पात्र का, तो अचानक से मन में ये कवि हृदय जागा और एक भावना पैदा हुई कि एक ऐसा पक्षी जिसका सीता से कोई संबंध नहीं है, व्यक्ति या तो अपने लिए या अपनों के लिए या अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही संघर्ष करता है, लेकिन इसका किसी से कोई स्वार्थ नहीं है और निस्वार्थ भाव से मानवता की रक्षा के लिए, नारी के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और यही बात मन को छू गई और फिर मानवीय मूल्यों की जो बात इसके माध्यम से आई, जो इसने समझाया, वो बात मन को छू गई और फिर वहीं से ये प्रेरणा मिली कि इस पर कुछ लिखा जाना चाहिए। और जटायु का जो यही कार्य है कि मन को छू गया और इस पर कुछ लिखने की बात आई कि निस्वार्थ भाव से नारी के सम्मान की रक्षा के लिए एक पक्षी हमारे देश का भी मानवीय मूल्यों के सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए इस प्रकार से युद्ध करता है उस समय के सबसे बड़ी महाशक्ति रावण से, और उसके प्राण भी चले जाते हैं लेकिन फिर भी उसकी वो परवाह नहीं करता।
1: जैसा आपने बताया कि आप मूलतः प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं, तो फिर आप जालंधर कैसे पहुंच गए?
0: काव्य जगत से ख्याति तो खूब मिल रही थी लेकिन पेट का जो साधन था, रोटी का जो साधन था, उसी रोजी रोटी के चक्कर में मैं जालंधर पहुंचा। वहां चूंकि मेरे नाना जी रहते थे, उनके पास गया, धीरे धीरे उन्होंने मेरा परिचय कराया, मैं उन्हीं के माध्यम से कर्मकांड के क्षेत्र में आ गया, कुछ उनसे सीखा, कुछ पहले से जानकारी थी और फिर इस कार्य में मैं आगे बढ़ता चला गया और धीरे धीरे करके वहीं का ही होके रह गया।
1: तो अभी भी आप प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं, मंचों से जुड़े हुए हैं?
0: हाँ हाँ, जुड़े हुए हैं। जब भी आना जाना होता है, कोई विशेष कार्यक्रम होता है, लोग बुलाते हैं तो मैं जाता हूँ, तो जालंधर में भी और प्रतापगढ़ में भी समान रूप से वहाँ पे कार्यक्रम करता हूँ, जुड़ा हूँ।
1: तो आपकी ये जो जटायु शतक है, ये कहाँ से शुरू हुई और ये आपने जालंधर में लिखा या अपने गाँव में लिखा?
0: नहीं, प्रारंभ तो एक गाँव से ही हुआ था।
1: अच्छा,
0: प्रारंभ मैंने लगभग 25-30 छंद, जब मैं जालंधर नहीं आया था तब के पहले का लिखा हुआ था। फिर वहां पर त्रिपाठी जी से मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि यह आप जो लिख रहे हैं बहुत अच्छा है, इसे खंड काव्य का रूप दीजिए। फिर मैंने प्रयास करना शुरू किया धीरे धीरे करके, कुछ छंद, क्योंकि जटायु पर कहीं कुछ मिलता नहीं है, मानस में भी कुछ पंक्तियां हैं, वाल्मीकि जी में भी थोड़े श्लोक ही हैं, तो इस प्रकार से उस पर सामग्री उपलब्ध नहीं थी। फिर भी भगवत कृपा से, माँ भारती की प्रेरणा से, धीरे धीरे करके अपने जो मित्र हैं उनके कुछ मार्गदर्शन से, कुछ उनके प्रोत्साहन से, धीरे धीरे करके वो छंद पूरे हुए और ये 108 छंदों का ये खंड काव्य संपूर्ण हुआ।
1: शर्मा जी, बताइए कि प्रायः लोग अपनी फुटकर कविताओं का संकलन निकालते हैं और आपकी दो पुस्तकें प्रकाशित हुई और दोनों ही खंड काव्य हैं। पहला तो जटायु था और दूसरा आपका श्रुतकीर्ति आया है अभी अभी।
0: हाँ, देखिए ऐसा है कि फुटकर रचनाएं तो मैंने लिखी हैं, प्रारंभ में लिखता भी रहा हूँ, आज भी बीच बीच में लिखता रहता हूँ, लेकिन प्रकाशन की जो बात आई वो हमने ये हुआ कि जो खंड काव्य है पहले इसको प्रकाशित किया जाए, फिर बाद में जो अपनी रचनाएं हैं उनको संग्रहित करके और एक नई पुस्तक देने का प्रयास करूंगा। जल्द ही ईश्वर की कृपा होगी तो वो जल्दी आ जाएगी।
1: तो एक चीज बताएं कि चलिए आपने जटायु पर लिखा, आपको जटायु रामलीला में आपने उसका रोल देखा, वो आप उससे प्रभावित हो गए, लेकिन आज तो AI का युग है और AI के युग में समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, कविता को समाज के साथ चलना पड़ता है, तो पौराणिक पात्र जटायु को आपने आज के समाज से कैसे जोड़ा, कहाँ जोड़ा और क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या उसकी कोई प्रासंगिकता है भी?
0: देखिए, अतीत की

0: नींव पर भविष्य का महल खड़ा होता है और यह काम वर्तमान करता है।
1: ठीक बात है।
0: और कभी एक साथ में दो संसार के बारे में सोचता है, एक पहले वो संसार जो इस समय वर्तमान में है और दूसरा जो आने वाला है, जो या कवि चाहता है। किसी भी कवि की कविता इन दो दुनिया के बीच में पुल का काम करती है और जटायु शतक का भी यही उद्देश्य है। आज AI का युग है, मनुष्य चांद पर पहुंच गया है, मंगल पर पहुंच गया है, खूब विकास कर रहा है, परंतु इस विकास की धारा में मानवीय मूल्य कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं और यह स्थिति बनी है समाज में कि भौतिक रूप से संपन्न होते हुए भी समाज आज नैतिक रूप से बहुत ही पिछड़ जा रहा है, विपन्न होता जा रहा है। जटायु नैतिक विपन्नता के इस युग में नैतिकता की एक ज्योत बन करके आया और मैंने जटायु के माध्यम से भौतिक रूप से संपन्न समाज को ये बताने का प्रयास किया है कि जिस देश में एक पक्षी नारी सम्मान की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे बड़ी शक्तिशाली राजा रावण से भिड़ जाता है, आज उसी देश में जगह जगह नारी का अपमान हो रहा है और हम मौन हैं।
1: चलिए, आपकी बात में मान लेता हूँ कि आपने जटायु ने जो नारी के सम्मान में अपने प्राण की आहुति दी उसका संदेश आप आज के समाज को देना चाहते हैं, लेकिन सुतकीर्ति को आपने विषय बनाया तो इसकी यात्रा कब से शुरू हुई? और ये सुतकीर्ति भी पौराणिक पात्र है, उसी रामायण की पात्र है जिसका जटायु है, तो सुतकीर्ति को आपने पात्र क्यों बनाया, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? आप
0: देखिए, मैं चूंकि कर्मकांड से जुड़ा हूँ, धार्मिक पुस्तकें पढ़ना, प्रवचन सुनना, ये मेरे जीवन का अंग है। राम कथा सुनने के दौरान एक बार जब इसका प्रसंग आया सुतकीर्ति का, तो उस प्रसंग में सुतकीर्ति के व्यक्तित्व को बड़े गरिमामय तरीके से बताया गया और ये प्रसंग सुन करके मुझे एहसास हुआ कि ये चरित्र तो सीता और उर्मिला की तरह ही बहुत ही श्रेष्ठ है और इसे समाज के सामने लाना चाहिए। फिर मैंने ढूंढना शुरू किया तो कहीं कुछ नहीं मिला, फिर ईश्वर की कृपा से दो चार छंद लिखे गए, दो चार छंद मित्रों को सुनाए और फिर सबको अच्छा लगा कि नहीं अच्छा है, इस पर लिखा जाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे करके प्रसंग को जोड़ा, कुछ और बातें सुनने लगा प्रसंगों को, और इस तरह से धीरे धीरे करके हमारे मित्रों के द्वारा, कुछ प्रोत्साहन के द्वारा, और इस महान चरित्र को समाज के सामने लाने के लिए जो प्रेरणा मुझे मिली वो हमारे कवि मित्रों से चर्चा के दौरान और उनके उत्साहवर्धन के साथ ही इसका धीरे धीरे करके प्रारंभ हुआ और ये आपके सामने प्रस्तुत है।
1: तो इस खंड काव्य का क्या उद्देश्य आप बताना चाहते हैं, क्योंकि एक नारी पात्र है और पौराणिक है, वो आज की महिलाओं से बिल्कुल अलग है, तो उसको क्यों आज की महिलाओं के संदर्भ में आप उसको कहाँ ले जा रहे हैं, क्या उद्देश्य है, क्या संदेश देना चाहते हैं आधुनिक युग की महिला को?
0: सुतकीर्ति रामकथा की उन स्त्री पात्रों में से एक है जो शांत भाव से अपने पारिवारिक, सामाजिक और अपने धर्म का पालन कर रही है। उसका अस्तित्व रामकथा में उपस्थित तो है, लेकिन वो केवल राजमहल की चार दीवारी में बंद है। उसकी आवाज पौराणिक इतिहास और साहित्य में प्रायः अनसुना सा है। आज का युग आत्म प्रचार और दिखावे पर केंद्रित है, ऐसे में बिना किसी स्वार्थ के अयोध्या के संपूर्ण राजमहल की व्यवस्था को संभालती हुई यश और सम्मान की आकांक्षा से परे नारी के मौन त्याग और उसका जो उत्तरदायित्व है उसको स्वर देना और समाज के सामने लाना, ये मुझे प्रासंगिक लगा और इसलिए मैंने इसको चुना और यही उद्देश्य था इसका, पुस्तक को लाने का।
1: मैंने आपकी ये पुस्तक पढ़ी, आपने इसका प्रारंभ जो है कौशल्या और सुतकीर्ति के संवाद से शुरू किया है, तो इसका क्या कारण है?
0: देखिए, राम के बन जाने के बाद राज परिवार में एक उदासी का वातावरण छाया हुआ था, ऐसे में खंडकाव्य का प्रारंभ कौशल्या और सुतकीर्ति के संवाद से करना वातावरण को थोड़ा सामान्य बनाना था।
1: अच्छा।
0: उसका एक प्रयास था। सुतकीर्ति पुत्रवधु है, अपनी सासू माँ की चरण सेवा कर रही है और उस चरण सेवा के द्वारा रिश्तों में गर्माहट लाने का प्रयास करती है, अपने पुत्रवधु धर्म का पालन करती है और माँ तुल्य सास की सेवा कर पारिवारिक मर्यादा का पालन करती है और समाज को संदेश देती है कि कर्म परायणता ही परिवार और समाज और देश के लिए धर्म परक है। और दूसरी तरफ माँ कौशल्या का सुतकीर्ति के मलिन गात को देख करके प्रश्न करना कि क्या शत्रुघ्न तुम्हारा ठीक से ख्याल नहीं रखता, यह दृश्य इस खंडकाव्य को एक नया रूप देता है, नया भाव देता है। यह प्रश्न मातृत्व भाव की चिंता और नारी संवेदना की पहचान से उत्पन्न होता है और यह भाव अपने छोटे का ध्यान रखने का भाव है तथा

0: परिवार के बड़े लोगों का अपने छोटों के प्रति कर्तव्य भी है और उसका धर्म भी है।
1: तो ये कारण रहा कि आपने जो है वो
0: हाँ इसका प्रारंभ उन दोनों के संवाद से शुरू
1: किया, संवाद से शुरू किया है। ये पात्र जो पौराणिक पात्र है सुत कीर्ति, वो आज कैसे प्रासंगिक हो रही है?
0: देखिए, आज के बदले हुए समाज में संयुक्त परिवार अपनी गरिमा खोता जा रहा है। लोग आज न्यूक्लियर परिवार में विश्वास करते हैं, जबकि सबको समाज की आवश्यकता है। आज सुतकीर्ति उन महिलाओं को संदेश देना चाहती है कि घर को संभालना और बड़ों की सेवा करना, परिवार को भावनात्मक संबल देना अनावश्यक मानना नहीं है। आजकल स्त्रियां उस परिवार में जाना चाहती हैं जहां सबसे छोटा परिवार हो, जबकि गृहिणी होना कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति है। परिवार में बड़ों की सेवा और सम्मान करना सनातन संस्कृति की पहचान है। सुतकीर्ति का आचरण यह संदेश देता है कि जब परिवार में प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य को निस्वार्थ निष्ठा से निभाता है तो यह अपनापन परिवार को मजबूत करता है और यही एकता अंततः समाज और राष्ट्र को भी सुरक्षित और संरक्षित करती है। और सुतकीर्ति की यह दृष्टि जीवन को संतुलित, शांत और मूल्य परक दृष्टि है और यह बताती है कि परिवार, समाज और राष्ट्र केवल अधिकारों से नहीं कर्तव्यों की चेतना से भी चलता है। सुतकीर्ति के माध्यम से यह संदेश दिया गया है कि परिवार की एकता समाज और राष्ट्र की स्थिरता का मूल आधार है और पुरुषों की तरह परिवार की हर स्त्री का सहयोग और उसका अपनापन पूरे सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखता है। सुतकीर्ति यह सिखाती है कि हर परिस्थिति में मुखर होना ही शक्ति नहीं है, कई बार मौन, धैर्य और संयम संबंधों को टूटने से बचा लेते हैं। प्रेम और त्याग से ही संबंध जीवित रहते हैं। सुतकीर्ति समाज को भी ये संदेश देती है कि एकता किसी व्यक्ति विशेष की सुविधा से नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार से चलती है और जीवन में महानता किसी प्रदर्शन से नहीं बल्कि त्याग और मर्यादा से आती है।
1: तो आपने संवाद के माध्यम से सुतकीर्ति में भी बहुत कुछ बताने का प्रयास किया, लेकिन जटायु शतक में आपने संवाद क्यों डाला?
0: क्योंकि जटायु में रावण के साथ उसका संवाद है और जटायु की जो चिंता है वो ये है कि रावण एक राजा है और राजा स्वयं में एक पूरा समाज होता है और समाज का रक्षक होता है और साथ ही साथ वह सामाजिक मूल्यों का, नीतियों का, परंपराओं का और नारी सम्मान का भी रक्षक होता है। इसीलिए जटायु एक कुशल राजनीतिक की तरह, एक कुशल धर्मशास्त्री की तरह राजा को राजधर्म समझाता है जो स्वयं राजा द्वारा ही बनाया गया है। वह जानता है कि राजा यदि स्वयं अनाचारी हो जाएगा तो अपनी प्रजा को दरिंदा होने से कैसे रोक पाएगा। इसीलिए जटायु का रावण से संवाद करना, धर्म का मर्म समझाना, रावण को अनैतिक कार्य करने से रोकना था ताकि समाज को दरिंदा होने से बचाया जा सके।
1: आप अपनी कविता की कुछ पंक्तियां सुनाइए, कुछ अपने कुछ फुटकर रचना, कोई छंद अपना सुतकीर्ति से या अपना जटायु शतक से।
0: सबसे पहले मैं सुतकीर्ति का पहला छंद है, प्रारंभ जहां से होता है वहीं समय सुनाता हूँ कि माँ तो कौशेला ने एक रोज यूं ही पूछ लिया, तेरे गात बिटिया मलिन कैसे हो गई, शत्रुहन ठीक से ख्याल रखता नहीं क्या, आज कान खींचती हूँ बड़े दिन हो गए, चरण दबाती श्रुति कीर्ति ने निहारा जैसे, सजल नयन दिव्य आंचल भिगो गए, कैसे समझाऊं क्या बताऊं क्या कहूं माँ, क्योंकि इनके दर्श को तो 13 वर्ष हो गए, कैसे समझाऊं।
1: और सुनाइए।
0: और इसी क्रम में जब सुतकीर्ति के विषय में कौशल्या उस दासी से पूछती है कि इसका ये हाल कैसे हुआ है, आप सब सेवा नहीं करती क्या, तो वो जो बताती है कुछ हम देखें कि रानी को प्रसन्न चित्त देखने की चाह मातु, दिवा स्वप्न सज इससे अधूरी रह जाती है, काली अंधियारी जो अमावस्या की रजनी में बिना चंद्र दर से चकोरी रह जाती है, बार बार रूप को सजाती और संवारती हूँ, जाने कैसे कमी थोड़ी थोड़ी रह जाती है, अखियों में कजरे की धार टिकती ही नहीं, मुखड़े पे काली काली डोरी रह जाती।
1: क्या बात, अच्छा है, अच्छा है भाई।
0: अब कौशल्या क्या सोच रही है कि सोच रही माता कैसी विधि की विडम्बना है, कि फूल जैसी बेटियां झुलस गई छांव में, कंटकों पे चलने को हुई ओ विवश

0: आज पुष्प पंखुरी भी चुभती थी जिन पांव में। निष्ठुर नियति के कुचक्र से विदग्ध दिव्य, जैसे कोई हिरनी शिकारियों के गांव में। और अपनी विवशता पे हाथ मले बार बार, मानो हुई हार आज जिंदगी की दांव में।
1: अच्छा है।
0: जब सतकीर्ति से पूछती है माँ कौशल्या कि बेटी तुम्हें तो वनवास नहीं हुआ, तुम इस तरह क्यों रहती हो, तो उसका उत्तर जो है सतकीर्ति का वो छंद में देखें कि पूरा परिवार त्याग तप में प्रयुक्त, फिर भला राज सुख हमें कैसे रास आएगा। प्राणनाथ का हो जब आसन वसुंधरा पे, तो कंचन पलंग कैसे मन को लुभाएगा। पति कंद मूल खाए और हम राज भोग, कंठ सैन्य वाला कैसे भीतर समाएगा। पाप नहीं है ये घोर पाप से भी महापाप, नहीं नहीं अम्ब ये कदापि हो न पाएगा, नहीं नहीं अम्ब ये। और अंत में सतकीर्ति से जो संदेश देना है एक आधा छंद उसके देखें कि स्नेह और आदर जहाँ हो एक दूसरे का, ऐसा घर तो सदैव स्वर्ग के समान है। माता जैसी सास और बेटी सी बहू हो जहाँ, घर नहीं है वो सुख संपत्ति की खान है। देव पितृ गुरु नित्य सेवित जहाँ पे दिव्य, सुर नर मुनि करे उसी का बखान है। और माता और पिता की जो चरण धूलि धारे शीश, उसके ही चरणों में झुकता जहान है।
1: आप एकाध छंद जो है वो उससे जटायु शतक से भी सुना दें, एकाध फुटकर चाहे तो सुना दें।
0: हाँ, एक दो छंद मैं आपको सुना देता हूँ जटायु शतक से। जटायु शतक मेरा अवधि का खंड काव्य है, तो अवधि में लिखा गया है, और उसके एक दो छंद मैं आपको सुनाता हूँ। रावण को जब समझाता है कि उसका एक छंद देखें, कि आजु कहा मम मानी दसानन, राम के संग न बैर बढ़ावा। जौनी जो वंश के क्षेम चाह, जिनी खोदी के सूतल सिंह जगावा। सौम्य कुलीन पुलस्त महारिषि, के कुल माजिनी दाग लगावा। जाहु चला घर छोड़ी सी आती, या चोरन माजिनी नाम लिखावा। जो समझाए से नामन व्यापहता, ब्या तू हूँ भल अवसर खोए। और जौरन माँ को पी है रघुनायक, हे दस शीस चुके नहीं रोए। ब्रह्म रुद्र न राखी सके, तो बने बस काल के गाल म सोए। जौन जे बोए वो काटे वो है, पहताने से चैत के गोहूं न होए। आपन जानी के नीके बदे हम हूँ, इतना समझावत बाटी। पैदा भया जमने कुल माँ कुछ, तव जो गवा वही कई परिपाटी। नाहक बैर बढ़ाई के मीत, उतान करा जिनी आपन खाटी। नाही ही रौदे तो है वही से, जैसे रौदे कुहार भिगोई के माटी। भूल सुधार न हो ये कबो, जब आज कुपंथ पे पाम बढ़ऊ ब्या। बाटे बनी जितनी अब ले कुल, कई कुल तू मर जाद मिटऊ ब्या। फाटे करेज दही अनुमानी, जो चूना की मेटी में हाथ लगऊ ब्या। राम कबान जो छूटे कमान से, तो हेरो पर जूड़ी बयारी न पऊ ब्या।
1: शर्मा जी, आप कुल मिलाकर अपने साहित्य के माध्यम से आज के समाज को क्या संदेश देना चाहते, क्या कहना चाहते?
0: देखिए, समाज के प्रति मेरा जो एक कवि का दायित्व है, समाज में हो रही बुराइयां हम कैसे उनको दूर करें, और कैसे करें कि यह समाज हमारा, एक राम राज्य की जो हमारी परिकल्पना है वो पूर्ण हो, इसी भाव को लेकर के ये दोनों खंड काव्य लिखे गए। जटायु में भी हमने यही प्रयास किया कि नारी के सम्मान की जो रक्षा, जो दायित्व नारी के सम्मान के लिए उसने निभाया जटायु ने, अगर आज का समाज उस दायित्व को निभाने लगे, तो ये संभव है कि हम रामराज की परिकल्पना पूरी कर सकते हैं। और जो ये हो रहा है आज, अनाचार, पापाचार, महिलाओं के साथ अत्याचार, इसे रोका जा सकता है, ये संभव है। लेकिन तब संभव है जब इसका प्रारंभ अपने घर से हम करें। यदि एक बहन किसी नारी का अपमान करने वाले अपने भाई को राखी बांधने से इनकार कर दे, यदि एक पिता ऐसे पुत्र को अपनी संपत्ति और परिवार से बेदखल कर दे, यदि समाज ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार कर दे, तो नारी के प्रति किया जा रहा अपमान न केवल रुकेगा, बल्कि इसका पनपना भी बंद हो जाएगा। जटायु शतक जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जटायु आज के पढ़े लिखे सभ्य समाज से एक प्रश्न करता है कि क्या उसकी सोच एक पक्षी से भी गई गुजरी हो गई है। जिस दिन समाज और परिवार जटायु की तरह ऐसे रावणों के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उसी दिन से नारी के सम्मान की रक्षा भी होगी और राम राज्य की परिकल्पना भी साकार हो सकेगी।
1: धन्यवाद शर्मा जी। मैं ओंकार त्रिपाठी, आप सबको नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: मेरा साहित्य

0: सफर क्रम में अभी आप श्री जयराम शर्मा दिव्य से डॉक्टर ओमकार त्रिपाठी की ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां। प्रस्तुत कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति।
1: 2 अगस्त 2026 को दिल्ली के पीरागढ़ी में आयोजित एक गरिमामय साहित्यिक समारोह में कवित्री माही मुंतजीर के द्वितीय काव्य संग्रह मासूमियत के लिबास और कवि ललित मोहन जोशी के प्रथम गजल संग्रह उदासी खा गई का भव्य लोकार्पण संपन्न हुआ। पुस्तकों का लोकार्पण श्री राम कुमार भगत, श्रीमती ओमवती, डॉक्टर पुष्पा सिंह बिसेन, श्री कृष्ण गोपाल विद्यार्थी, श्री संजय जैन एवं श्री कुमार राघव के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर दोनों काव्य संग्रहों की समीक्षात्मक चर्चा की गई। वक्ताओं ने दोनों कृतियों की साहित्यिक विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए रचनाकारों की सृजनशीलता की सराहना की और उन्हें उज्जवल साहित्यिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। समारोह में उपस्थित साहित्यकारों एवं विशिष्ट अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर सब श्री अंजू अग्रवाल, उत्साही राजरानी भल्ला, उर्वी उदल, मधु, एकता चौहान, रजनी बाला, मयंक शर्मा, एडवोकेट प्रियंक शर्मा, वीरेंद्र राय, कुमार राघव, ईशा मालू, संदीप सोनी, मुरारी मंडल, साहिल सन्यासी, निखिल चौधरी, जितेंद्र जीत, सिद्धार्थ और नासिर सहित अनेक साहित्यकार, समाजसेवी और प्रबुद्ध जनों की गरिमामय उपस्थिति रही। समारोह का संचालन संदीप सोनी ने किया। वहीं 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त की जयंती के उपलक्ष्य में जयंती समारोह और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन गगोई वैश्य समाज द्वारा ग्रेटर नोएडा में किया गया। इस कवि सम्मेलन में सर श्री अंजना जैन, आशीष गुप्ता, नीलम नीलमणि, श्याम मोहन गुप्ता, मीनाक्षी गुप्ता, मीनू द्वारा काव्य पाठ किया गया। वहीं 3 अगस्त को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में आयोजित पावस गीत गोष्ठी साहित्य और संगीत की मधुर सुर लहरियों से सराबोर रही। विशुद्ध गीत केंद्रित आयोजन में देश के प्रतिष्ठित गीतकारों और कवियों ने वर्षा, प्रकृति, भारतीय संस्कृति तथा मानवीय संवेदनाओं पर आधारित अपने गीतों का भावपूर्ण एवं सस्वर पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन गीतकार श्री ओमकार त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि गीत काव्य की अत्यंत सशक्त और अद्भुत विधा है, जिसमें भारतीय जीवन मूल्यों, संस्कृति और मानवीय संवेदनाओं का सर्वाधिक सहज और प्रभावी रूप से दर्शन होता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा पीढ़ी को गीत जैसी समृद्ध साहित्यिक विधा से जोड़ा जाए, ताकि इसकी गौरवशाली परम्परा बनी रहे। कार्यक्रम के सरस्वत अतिथि डॉक्टर सुशील द्विवेदी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय छंद, गीत और दर्शन की महान परंपरा के उत्तराधिकारी होने के नाते हमारे गीतों में भारत भूमि की गंध, उसका एकात्मक बोध, उसकी विविध भाषाओं का सौंदर्य तथा छंद विधान की गरिमा अनिवार्य रूप से उपस्थित होनी चाहिए। शायर गीतकार श्री शिव कुमार बिलग्रामी ने अपने वक्तव्य में वर्तमान साहित्य गीतों में लोकगीतों की आत्मा और लोक संवेदना को संरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कवित्री डॉक्टर शैलजा सिंह ने अपना लोकप्रिय सावन गीत का सस्वर पाठ कर समूचे सभागार को सावन की मधुर अनुभूतियों से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम के संचालक श्री ओमकार त्रिपाठी ने कहा कि जब गद्य असमर्थ हो जाता है तब कविता जन्म लेती है, और जब कविता भी अपनी अभिव्यक्ति में असमर्थ हो जाती है तब गीत जन्म लेता है। गीत स्वयं रस है जो समाज पर रस वर्षा करता है। गोष्ठी में सर्व श्री डॉक्टर राजीव कुमार पांडे, विनय विक्रम सिंह, मनकही, नेहा वेद, नीना सहर, पीयूष क्रांति, नरेंद्र मस्ताना, डॉक्टर ईश्वर सिंह, शोभा सचान, डीपी सिंह और डॉक्टर सलेजा सिंह सहित अनेक प्रतिष्ठित रचनाकारों ने अपने गीतों का प्रभावशाली पाठ किया। प्रत्येक प्रस्तुति पर श्रोताओं ने भरपूर तालियों से उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्य प्रेमियों और गीत रसिकों ने पूरे उत्साह के साथ गीतों का आनंद लिया। वहीं 5 अगस्त को मैजिक मैन मनचंदा फाउंडेशन के तत्वाधान में काव्य के रंग आराधना के संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कवि भूपेंद्र राघव, कवित्री अनुराधा पांडे, कवित्री डॉक्टर अनीता भारद्वाज ने काव्य के रंग आराधना के संग में काव्य पाठ किया। इस कार्यक्रम का संचालन आराधना सिंह अनु ने बड़े ही मनमोहक अंदाज में किया। 8 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर सुर साहित्य परिषद और हिंदी साहित्य अकादमी के संयुक्त तत्वाधान में ओके मॉडल स्कूल के सहयोग से एक भव्य कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देशभक्ति, साहित्य और सामाजिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की अध्यक्षता योगी श्री ओम कुमार पुंडीर ने की। आयोजन के आयोजक डॉक्टर रवि कुमार रहे। जानी मानी शिक्षाविद डॉक्टर निर्मल स्वागतकर्ता की भूमिका में रही। कार्यक्रम का प्रभावी संचालन श्री संजय जैन ने किया। संयोजन का दायित्व

0: अतिरिक्त सुश्री उर्वी उदल और निवेदक श्री नयन नीरज नायाब रहे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सब श्री अशोक भारद्वाज और जयसिंह आर्य उपस्थित रहे। वहीं कर्नल प्रवीण त्रिपाठी को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए शौर्य सम्मान से अलंकृत किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न क्षेत्रों से आमंत्रित कवि और कवित्रियाँ अपनी ओजस्वी गीतात्मक और समकालीन रचनाओं का पाठ किया, जिनमें सर श्री डॉक्टर नाथूलाल लोटवाड़ा, सीमा रंगा, अनुराधा पांडे, अतिथि अस्थाना, ईशा भारद्वाज, आरती वर्मा, मनोज डागर, रामेश्वर, योगेश कृष्ण, विभा राज, सुनील शर्मा, अंकुर मिश्रा, अंकुश पांडे, शीतल, रघुवर दास शर्मा और नवीन जोशी नवल प्रमुख रूप से शामिल रहे। आयोजकों ने बताया कि यह आयोजन केवल एक कवि सम्मेलन नहीं बल्कि स्वतंत्रता के अमर मूल्यों, राष्ट्रीय चेतना और साहित्यिक संस्कारों का उत्सव रहा। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षाविदों, समाज सेवियों की उपस्थिति रही।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री ओम प्रकाश प्रजापति। श्रोताओं, चलते चलते आपको ये बताते चले कि साहित्य की कार्यक्रम का प्रसारण हर रविवार सुबह 8:45 पर किया जाता है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल एयर लाइव न्यूज 24x7 और आकाशवाणी दिल्ली के यूट्यूब चैनल पर। हम प्रतिमा युवाओं के लिए एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण करते हैं, कुछ कहता है दिल। इस कार्यक्रम में 30 साल तक के सभी युवा जो किसी भी स्तर का अध्ययन कर रहे हैं वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है akashvanihindiwarta@gmail.com। इसी के साथ साहित्य की का ये अंक अब यही संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हमारे अतिथि।
1: श्रोताओं, हमारे अतिथि क्रम में हमारी पिछली कड़ी में हम बातचीत कर रहे थे डॉक्टर दिविक रमेश से, तो आइए डॉक्टर दिविक रमेश से बातचीत का सिलसिला आज की इस कड़ी में भी जारी रहेगा।
2: तो आपको बाल साहित्य के लिए जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, क्या कहेंगे आप हमारे श्रोताओं को?
3: देखिए, ऐसा है कि पुरस्कार निश्चित रूप से किसी भी रचनाकार के लिए जो है एक उपलब्धि मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा जो है कोई मुझसे छोटा जब मुझसे ये कहता है कि मुझे कुछ बताइए कुछ कहिए, तो मैं एक ही आशीर्वाद देता हूँ उनको कि आपकी रचनाशीलता बनी रहे।
2: क्या बात, वाह।
3: देखिए, बहुत सारी बाधाएं होती हैं,
2: बिल्कुल आती हैं,
3: कुछ उपलब्धि हो गई तो उसे रोक दिया, कुछ और चीज हो गई जिंदगी में व्यक्तिगत रूप से तो रोक दिया, लेकिन रचनाशीलता बनी रहना बहुत जरूरी है,
2: बहुत बड़ी बात।
3: इसलिए जो है ये पुरस्कार आदि जो है ना आपको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाए तो अच्छी बात है, लेकिन आपको कुंठित कर दे, अवरोध पैदा कर दे तो फिर ये सोच लिया कि बस बस। सोच लीजिए उस समय के जो आपका लेखन था उसको ये पुरस्कार मिल गया है, अब उसको अब आपको आगे क्या लिखना है,
2: आगे क्या करना है, और नई जिम्मेदारी के साथ,
3: नई जिम्मेदारी के साथ लिखना है
2: जी, बिल्कुल।
3: तो ये चीज होती है, इसमें वही कि आप शायद जानते होंगे कम से कम हिन्दी में, देखिए बांग्ला में, मराठी में, कुछ और भाषाओं में बाल साहित्य का एक बड़ा वर्चस्व रहा है, और कहा यह भी जाता है कि बड़े जो भी बड़ा लेखक है वो जब तक बाल साहित्य नहीं लिखता तब तक उसको अधूरा

0: माना जाएगा
1: जी।
0: हिंदी में ऐसा नहीं था, हालांकि हिंदी में लिखा गया पहले भी। आप संस्कृत या पाली के साहित्य की बात छोड़ दीजिए, पंचतंत्र या हितोपदेश या जातक कथाएं वगैरह, लेकिन हिंदी में जो बाल साहित्य लेखन है वो है तो सही, लेकिन उसको जितना प्रोत्साहन मिलना था, जितने पहचान मिलनी थी, जितना सम्मान पुरस्कार मिलना था वो नहीं मिला। हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे गए, उन्होंने बाल साहित्य को उस तरह से एकांकित नहीं किया गया जिस तरह से किया जाना चाहिए। जबकि मैं ये मानता हूं आज तारीख में भी कि बाल साहित्य भी साहित्य है और उतना ही महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल,
0: जितना कि जिसको आप बड़ो साहित्य कहते हैं। पहली बात तो यह कि मैं तो बाल साहित्य को सबका साहित्य मानता हूँ। ये केवल बच्चों के लिए नहीं है,
1: सबका साहित्य है।
0: बच्चों का होकर वो सबका सबको पढ़ना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: ये तो बाल साहित्य जो है उसकी जो स्थिति है, तो जैसे मैंने नाम लिया जयप्रकाश भारती जी, देवसरे जी आदि, उन्होंने तो पहला रिसर्च जो था पीएचडी वो बाल साहित्य पे किया, अस्लम कपूर ने किया और लोगों ने किया। लेकिन बाल साहित्य के प्रति जो है जितना ध्यान जाना चाहिए था उतना नहीं था। तो हम लोग जो है इन सब साथ मिलकर के ये सोचते थे कि भाई बाल साहित्य के प्रति भी पूरा ध्यान जाना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: तो उस प्रयत्न होते रहे, तो उस प्रयत्न में एक सफलता यह मिली कि साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने भी और साहित्यों के बड़ों साहित्य के साथ बाल साहित्य को भी पुरस्कृत करना शुरू किया। और आपको ये बताते हुए मुझे खुशी है कि यह जो पुरस्कार शुरू हुआ तो पहले पुरस्कार की चयन समिति जो थी तीन व्यक्तियों की, उसमें एक मैं था।
1: अरे वाह,
0: तो वाह। और वहां पर जो है ना हमने जो है चुना किसको दिया जाए
1: जी।
0: तो उसमें जो है फिर
1: चल पड़ा से
0: मेरा भी नंबर आ गया।
1: बहुत अच्छी बात कही आपने। तो एक लेखक के रूप में आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही?
0: सबसे बड़ी चुनौती ये तो वही है जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा था कि वो रचना धर्मिता बनी रहे।
1: ये वाकई बहुत
0: बड़ी चुनौती ये होती है।
1: सबसे बड़ी बात है,
0: मेरे ऐसे समय आए हैं जब मुझे लगा कि मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ। उसके कई कारण होते होंगे, आपकी अपनी रचना आपके लिए चुनौती बन जाती है।
1: बिल्कुल
0: कि आप लिख रहे हैं आपकी और आपकी कोई अच्छी जिसको आप अच्छी रचना मानती है वो चुनौती बनी हुई कि आपने क्या लिख डाला है ना।
1: बिल्कुल सही।
0: तो इसलिए लेखक के सामने चुनौतियां तो बहुत है। देखिए कुछ व्यवहारिक चुनौतियां, कुछ रचना प्रक्रिया संबंधित चुनौतियां हैं। तो सबसे बड़ी तो रचना प्रक्रिया संबंधित चुनौतियां ही है कि आपकी अपनी रचनाशीलता बनी रहे।
1: बिल्कुल।
0: और अभी देखिए इस रूप में सोचिए कि रचनाकार के सामने दो स्पष्ट चुनौतियां होती है। एक तो ये कि जो उसने लिखा है वो जो अगला लेखन किया वो उससे आगे बढ़ा हुआ हो।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
0: वो इतनी बड़ी चुनौती है कि उसको स्वीकार तो कर लीजिए लेकिन उसको निभाना जो है वो बस हो जाए तो फिर क्या कहने।
1: बहुत बड़ी बात कही आपने डॉक्टर साहब। कोई ऐसी रचना आपकी जो आपके दिल के बहुत करीब हो?
0: देखिए मेरा एक काव्य नाटक है खंडक खंडक
1: जी जी जी,
0: वो लगभग 2 साल मैं सोचता रहा था तब जाके लिखा गया
1: जी।
0: उसमें अध्ययन भी अनुभव भी है, उसमें दृष्टि है, डिविजन भी है, सब कुछ है। वो काफी करीब है। वैसे तो कुछ ऐसा है कि मैं तो चाहे बाल साहित्य हो, चाहे वो कविताएं हो, चाहे बाल नाटक हो, कोई भी हो, सब मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ ही लिखने की कोशिश की है
1: जी।
0: और वो सभी मेरे प्रिय है, लेकिन अब मैं इसमें क्या कहूँ। पहली दफे जो है लगता है कि रचना बहुत प्रिय है तो दूसरी रचना आकर के सामने खड़ी जाती है कि मैं क्यों नहीं हूँ।
1: तो बच्चे बच्चे होते हैं सारे, जैसे कि मैं क्यों नहीं,
0: तो मुझे कहना पड़ता है तुम भी क्यों प्रिय हो। अब मैं झगड़ा नहीं करना चाहता, सारे प्रिय है।
1: तो क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि किसी रचना को कई बार लिखकर भी आपको सेटिस्फेक्शन ना मिली हो, संतोष ना मिला हो, कुछ कभी ऐसा हुआ है?
0: ऐसी बहुत सारी रचनाएं जो फिर मेरी किताबों में नहीं आई, रह गई वहाँ, फाइलों में ही पड़ी है, छप के भी फाइलों में पड़ी है,
1: छपने के बाद भी।
0: हाँ, ऐसी रचनाएं तो है और कई ऐसी रचनाएं हैं जिनको मैं बार बार पढ़ना चाहता हूँ। हमारी मेरी

0: कविता है माँ, मेरे माँ संबंधी बहुत कविता है, तो माँ को लेकर के कविता है। और मैं पहाड़ समुद्र वगैरह ये सब आ जाते, जब समुद्र नहीं देखा तब भी आ जाता था।
1: क्या बात, तो जरूर मैं चाहूंगी तो हमारे श्रोताओं को कुछ जरूर सुनाए।
0: जरूर सुनाऊंगा। अच्छा आपको बताऊं कि मैं 1981 में शायद कश्मीर गया था
1: जी,
0: और वहाँ जो है जो पहलगाम में गया
1: जी,
0: पहलगाम में नदी है, लिद्दर नदी है,
1: लिद्दर नदी है।
0: ओहो, तो उस समय नया नया मेरा विवाह भी हो चुका
1: जी,
0: था
1: जी,
0: तो
1: जी।
0: वहाँ मैं गया था, बच्चे छोटे थे, बहुत आनंद आया
1: जी।
0: तब की कविता है वो
1: जी, बिल्कुल सुनाइए।
0: देखिए और कविता कहाँ है पहलगाम।
1: पहलगाम
0: आप इस संदर्भ में कहा एक विशेष बात बताओ, ये कविता सूची की 1981 की लिखी हुई है और मेरा तीसरा जो संग्रह हल्दी चावल और अन्य कविता है 1992 में आया था, उसमें संकलित भी हुई
1: जी,
0: बाद में
1: जी।
0: अभी कुछ हाल ही में एक दिल्ली विश्वविद्यालय कॉलेज में उन्होंने मुझे कहा कि आपकी कविता हमने कभी पढ़ी थी, कहा है पहलगाम, उसको दीजिए। तो मैंने कहा रहे भाई इतनी पुरानी कविता का आप क्या करेंगे, नहीं वो कविता अब तो गूंज रही है, हम अपने पत्रकारों से छापेंगे, छापेगी उस पर लोगों ने टिप्पणी भी की। अब ये कविता कैसी है मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगा, सुन लीजिए।
1: जरूर जरूर।
0: इसका शीर्षक कहाँ है पहलगाम, पूछिए मत पूरी शैतान की नानी थी लिद्दर नदी। बर्लिन में मेरी जिप्सी लड़की सी अल्लाह पूरी की पूरी उतर गई थी मुझमें, आकाश से उतर मेरी धरती पर।
1: क्या बात सर, क्या बात।
0: पांव डालते ही पानी में काट ली थी एक ठुठूठी चिकोटी शैतान।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब।
0: आओ यहाँ भी, यहाँ बैठो मेरे पास इस पत्थर के वक्ष पर और डाल दो पांव पानी में।
1: वाह बहुत खूब,
0: नदी ने कहा।
1: बिल्कुल सर।
0: हर आते जाते को नोती थी बिना भेदभाव के लिद्दर नदी पहलगाम की, छिछुरते पानी में टिके पत्थर की नमी में भी कितनी तपिश थी,
1: वाह
0: किसी अपने के सामने जी खोल देने की तरह।
1: क्या बात, क्या बात, वाह।
0: कहीं कोई नहीं था वहाँ अकेला, पूरे ब्रह्मांड में हमारे होने का एक विराट उत्सव फूटने लगा था हम में चश्मों सा।
1: वाह,
0: हद हो गई थी, कितनी बेशरम हो गई थी हवाएं अचानक। हद ही हो गई थी, कितनी बेशरम हो गई थी हवाएं अचानक, और तुम कितना लजा गई थी।
1: क्या बात, वाह।
0: याद है ना वे गर्मी जो फूट गई थी हमारे पांवों के असावधान स्पर्श से।
1: क्या बात, वाह बहुत खूब, बहुत
0: खूब। पत्नी के साथ था वहाँ।
1: बिल्कुल बहुत खूब।
0: पूस की रात में हमें मिल गई थी अलाव की आंच से, बात यूं कितनी छोटी है, माओ ने भी खरगोश के फुटक कर ओट में हो जाने से।
1: क्या बात, वाह।
0: पर सवाल होते ही कितनी तीखी हो जाती है, हम क्या उत्तर देंगे अगर कोई पूछ ले कहाँ चलेंगे इन छुट्टियों में पहलगाम।
1: क्या बात सर, आप तो मुझे कश्मीर ले गए, क्योंकि मैं कश्मीर से हूँ तो आप मुझे वहीं ले गए। बहुत खूबसूरत, पूरा लिद्दर और पहलगाम आंखों के सामने आ गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर।
0: मैं एक कविता आपके सामने
1: जी जी सर,
0: माँ गाँव में इस शीर्षक से मेरा संग्रह भी है
1: जी, माँ गाँव में,
0: माँ गाँव में है, और इसके लिए चयन किया था डॉक्टर नावर सिंह जी ने।
1: अरे वाह,
0: कविताओं का
1: जी।
0: गाँव मुझसे छूटता नहीं कभी भी।
1: नहीं सर, बिल्कुल छूटता ही नहीं है।
0: शहरी हो चुका हूँ,
1: गाँव हमेशा रूह में रहता है।
0: आप देखिए
1: जी,
0: मैं शुरू में बताया ना, मैं तो बहुत बचपन में माँ से अलग, माँ गाँव में है, चाहता था आबसे माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में।
1: क्या बात, माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में।
0: चाहता था आबसे माँ भी यहाँ इस शहर में, पर माँ चाहती थी आए गांव भी थोड़ा साथ में, जो ना शहर को मंजूर था ना मुझे ही, ना आ सका गांव ना आ सकी माँ ही शहर में। और गांव में क्या करता जाकर, पर देखता हूँ कुछ गांव तो आज भी जरूर है देह के किसी भीतरी भाग में।
1: क्या बात, क्या बात।
0: इतना उधर छिटका थोड़ा थोड़ा चिपका, माँ आती बिना किए घोषणा तो थोड़ा होती सही, गांव तो आता ही ना शहर में।
1: क्या बात,
0: पर कैसे आता वह खुला खुला दालान आंगन, जहाँ बैठ चारपाई पर माँ बतियाती है, भीत के उस पार खड़ी चाची से बहुओं से।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत।
0: करवाती है।

0: बारिश पड़ोस की रामवती से सुस्ता लेती है, जहाँ धूप का सबसे खूबसूरत रूप उड़कर किसी लोक गीत की ओट में। आने को तो कहाँ आ पाते हैं वे चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद है खेत पैर कुएं और धाने।
1: बहुत खूबसूरत
0: पहलू जो है कही जाती है तरफ, जहाँ फसलें काट करके डाली जाती
1: है,
0: फिर उस पर बैल वगैरह चल करके उसमें से अनाज अलग करते थे। आने को तो कहाँ आ पाती है वे चर्चाएं भी, जिनमें आज भी मौजूद है खेत पैर कुएं और थाने। बावजूद कट जाने के कॉलोनियां खड़ी है जो कतार में अगले चुनाव के नियमित होने को, और वे तमाम पेड़ भी जिनके पास आज भी इतिहास है अपनी छायाओं के।
1: क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। तो डॉक्टर साहब, जब आप लिख नहीं रहे होते हैं तब आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं, क्या करते हैं उस वक्त?
0: देखिए, एक संयोग से ऐसा है कि मैं अध्यापक रहा हूँ, विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, और लेखक के साथ भी होता है कि वो लिखता है तो लिखने वाले पुस्तकें भी देते हैं
1: जी।
0: तो पढ़ना और लिखना ये साथ साथ ही चलता है।
1: बहुत खूब।
0: तो मैं पढ़ता हूँ और घर परिवार भी प्यारा है,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन अगर मैं लिखने की मेज पे हूँ और मुझे पता है कि ये नहीं लिखा गया तो फिर नहीं लिखा जाएगा,
1: होता है ऐसा।
0: लेकिन उसी समय अगर मेरी पत्नी को या मेरी बहुत अंतरंग किसी को मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं लिखना छोड़ के पहले उसकी जरूरत को पूरा करूंगा।
1: वाह, कितनी खूबसूरत बात कही उन्होंने।
0: तो मैंने उसमें से निकाला कि जिस मानवता जिस मनुष्यता के लिए हम लिखते हैं
1: जी,
0: वो मनुष्यता पुकार रहे उसको छोड़ के फिर आप लिखे तो ये कौन सी बड़ी बात हुई।
1: बिल्कुल। चलते चलते हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सबसे बड़ी बात यह, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, साहित्य वो स्थान है और साहित्य श्रम मेरा लिखा नहीं, हिंदी का नहीं, किसी भी भाषा का, पूरे विश्व का जो साहित्य है, जो श्रेष्ठ साहित्य है, वो जगह है जहाँ पर मनुष्यता आज भी संरक्षित है। सारी ज्ञान विज्ञान की शाखाएं मनुष्य के लिए होती हैं, लेकिन मनुष्यता के लिए, मनुष्य की संवेदनशीलता को जगाए रखने के लिए, मनुष्य को मनुष्य होने के लिए जो सबसे सुरक्षित और सबसे बड़ी जगह है वो साहित्य होता है। इसलिए साहित्य करीब आइए, साहित्य को अपनाइए।
1: बहुत खूबसूरत बात कही आपने डॉक्टर साहब। और आप हमारे स्टूडियोज में आए, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आए और अपने आपने अपनी इतनी अच्छी अच्छी बातें हमसे शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अतिथि क्रम में अभी आप सुन रहे थे जाने माने साहित्यकार श्री दिविक रमेश से भेंट वार्ता। इनसे भेंट कर रही थी काजल सूरी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुनते हैं पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

सामिन आदावर्स, ये आकाशवाणी है। सुबह के 9:30 बजे हैं। उर्दू सर्विस के पहले मजलिस की नशरात का अब आगाज होता है। इस मजलिस में आप तमाम सामिन का खैर मकदम है। उर्दू सर्विस की नशरात आप सुन सकते हैं मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री इंग्लिश पर। आइए एक नजर डालते हैं इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर। अब से कुछ ही देर के बाद यानी 9:35 पर सुबह का ही प्रोग्राम पेश किया जाएगा और 9:45 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम आज सवेरे। नौ बजकर 50 मिनट पर खबरें नशी की जाएंगी और सुबह 10 बजे आप सुनेंगे अखबार इंसारी पर अपनी शम्मे फरोजा।

मीडियम वेव से 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है प्रोग्राम सुबह का ही। सुबह के प्रोग्राम में आज समाप्त कीजिए शब्द, पेश करें भाई मनमोहन सिंह रागी और हमनवा।

0: गाय प्रोग्राम में आज आप समाप्त कर रहे थे, शब्द पेश कर रहे थे भाई मनमोहन सिंह रागी और हमनवा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, पेश है प्रोग्राम आज सवेरे।
1: और सारा 1925 में आज ही के दिन काकोरी कांड की घटना जो है वो घटित हुई थी।
2: दैट्स राइट, गवर्नमेंट ट्रेजरी फ्रॉम द पोस्टल ट्रेन वाज लूटेड नियर काकोरी स्टेशन। तो इसके बाद जो है काकोरी बहुत ज्यादा नुमाया हो गया। ऑफकोर्स अगर आप लखनऊ और अवध वालों से पूछे तो काकोरी के कबाब भी बहुत मशहूर है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट द काकोरी कांड एज इट केम टू बी नोन इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री दैट हैपेंड टुडे। एंड काकोरी इज अ स्मॉल टाउन दैट इज अराउंड 22 kilometers away from Lucknow, and the loot was actually by the members of Hindustan Socialist Republic Association.
1: और 1945 में आज ही के दिन अमरीका ने जापान के नागासाकी पर दूसरा परमाणु बम गिराया था।
2: Yes, indeed, a very sad day, and in fact, a day that should not be forgotten in history. Because अगर हम लोग भूल जाते हैं तो हम लोग दोहराते हैं इतिहास को, but we should remember that on this day in 1945, a US B-29 bomber dropped an atomic bomb on Nagasaki, Japan, जिसके आज तक उसकी जो इफेक्ट
1: है वो देखने को मिल जाता है।
2: Yes, absolutely.
1: सन 2007 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मरम्मत के महत्वपूर्ण कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिकों की टीम लेकर अंतरिक्ष यान ड्रिवर ने अपने अभियान पर निकला। और इसके अलावा सन 2012 में भारतीय सेना ने परमाणु हमला करने में सक्षम अग्नि 2 बैलिस्टिक मिसाइल का आज ही के दिन सफल परीक्षण किया था।
2: Today is also the birth anniversary of Sawan Kumar Taka, a film director, producer and lyricist. He directed many Hindi films, including successful films like Sajan Bina Suhagan, Sautan, Sautan Ki Beti, and Sabko Yaad Hoga Sanam Be Wafa. Of course, he is credited with giving break to actors such as Sanjeev Kumar and Mehmood Jr. His most famous directorial venture was Rajesh Khanna's Charo Sautan, which was the first Indian film to be shot in Mauritius. In fact, Sawan Kumar ne hi Sanjeev Kumar ko unka naam दिया था। इट वॉज, आप सब लोग जानते हैं उनका रियल नेम हरी भाई जरी वाला था, तो एक हीरो जैसा नाम तो कहीं नहीं लगता। तो इट वॉज सावन कुमार हु सेड दैट ही शुड यू नो स्टिक टू द नेम संजीव कुमार। एंड नौनिहाल ऑफकोर्स रिसीव प्रेसिडेंशियल मेंशन एट द नेशनल फिल्म अवार्ड्स देन। उसके अलावा सनम बेवफा का जब जिक्र हुआ है तो इस मूवी में बहुत ही खूबसूरत गाने थे, व्हाई नॉट लिसन टू वन ऑफ देम।

0: और सारा ये प्यारी सी आवाज जो आप सुन रही हैं, इसमें ये गीत गाया था अनुराधा पौडवाल ने और अमित कुमार ने, और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने.
1: And he was also a prolific lyricist and wrote songs for most of his produced and directed films. And apart from this, he also wrote lyrics for songs for movies that were produced and directed by other filmmakers. Mm-hmm. Among those were Sabak, the 1973 movie starring Shatrughan Sinha, and Poonam, featuring the popular song Barkha Rani Zara Jamke Barso. और आजकल के मौसम पे सही है ये गाना, लेकिन अब हमारे पास वक्त कम है इसलिए दूसरी पर्सनैलिटीज की भी बात कर लेते हैं. टुडे इज द बर्थडे ऑफ महेश बाबू, ऑफ कोर्स अ वेरी वेरी अकम्प्लिश्ड एक्टर, प्रोड्यूसर, फिलैंथ्रोपिस्ट, वॉइस एक्टर हु वर्क्स प्रेडोमिनेटली इन तेलुगु सिनेमा, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्टर्स इन इंडियन सिनेमा एंड हैज बीन फीचर्ड इन फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट फ्रॉम 2012 टू 2025. रिफर्ड टू इन द मीडिया एज द सुपर स्टार, ही हैज अपियर्ड इन ओवर 30 फिल्म्स एंड हैज बीन recipient of several accolades including 9 Nandi Awards, 5 Filmfare Awards South and 4 Seema Awards. Today is the birthday of Vivek Mushran, and those who have watched his films will remember this very fresh chocolatey boy wali jo unki image thi, especially jab Saudagar aayi thi to unki aur Manisha ki jodi ne kafi dhoom machayi thi, isn't it? So we have a song from Saudagar, first we listen to that.

0: और अब घड़ी की सुइया कह रही है कि हमें अपने श्रोताओं को कहना होगा अलविदा.
1: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन लिसनर्स. हैव अ ग्रेट ग्रेट डे अहेड. नमस्कार.
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे. ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है. मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और डीडी फ्रीडिश पर हमारी नशियात जारी है. सुबह के 9:50 हुए हैं. अब खबरें नशे की जाएंगी.
3: ये आकाशवाणी है. अब आप मुदम्मार से खबरें सुनिए. वजीर आजम नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया. हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है. ये मुहिम भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह के मौके पर शुरू की जा रही है. मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक हाईकोर्ट्स के लिए 30 जजों की तकर्री को नोटिफाई किया गया है. रास्तों की मरम्मत और खराब मौसम की पेशगोई के बायस पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से अमरनाथ यात्रा मुअत्तल रहेगी. भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. और सागनिक रॉय और स्यांतन कोशारी ने नवी आलमी ब्रिज फेडरेशन यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में 31 बरस तक की उम्र वाली जोड़ी के मुकाबले में सोने का तमगा जीता. अब खबरें तफसील से. वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेटी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई. एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद उसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया. दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तजारत, दिफा, अहम उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादियात के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा किया. दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया. वज़ीर आज़म मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया ऊषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया. वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में नए शोबे उभर रहे हैं जो नौजवानों के लिए नए मौके फराहम कर रहे हैं. कल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के 57

0: उसी के तहत हुई होगी। तो शायर तो मैं हूँ जैसे कि आपने कहा बुनियादी तौर पर, और मेरे ख्याल से 1970 में मेरी पहली गजल कहीं छपी थी, उसके बाद 73 से बाराबता मैंने छपना शुरू किया शायर में, जितने रसायल थे उस जमाने के शफून में भी और दूसरे तमाम रसायल हिंदुस्तान के और पाकिस्तान में भी उसके बाद। तो जहाँ जहाँ बल्कि एक जमाने चूंकि शौक ज्यादा था उस वक्त में, शुरू में होता है सबको, तो चाइना से रसायला निकला, फिक्र फन जापान से रसायला निकला और
1: बांग्लादेश
0: से इंतखाब भी था, एक और भी था, तो सब में भी वो तमाम गजलें और बास नज़्में कभी मज़ामीन भी उसमें छपते थे। तो सिलसिला उस वक्त से शुरू हुआ, तो खासा दिन हो गए इस सिलसिले को।
1: बहुत बहुत पुरानी बातें हो गई, जाहिर है 70 और अब यानी
0: 2017
1: अब है, अब इतना लंबा वक्त आपने अदब को दिया। अदब में जो जदीदियत का जो बिल्कुल आखिरी हिस्सा था
0: जी,
1: उसको आपने बहुत फाल हालत में देखा
0: जी।
1: तो ये जो गजल की शायरी है इस पे आपने खासा काम भी किया है, और इस हवाले से आपसे कोई भी सवाल करने से पहले खुद सवाल करने वाले को मोहतात होना चाहिए, मेरा डर ये भी है। बहरहाल तो जो गजल में तब्दीलियां रुनुमा हुई हैं खास तौर से और शायरी में आम तौर से, वो जदीदियत के बाद अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है और देखा है, जो आप अपने बाद की नस्लों को भी पढ़ते रहे हैं, अपने हमसरों को और आपसे पहले जो लोग थे उन्हें तो आपने पढ़ाई है, तो कुछ बहुत वाजह तब्दीलियां कौन सी हैं जिनकी तरफ आप इशारा करना चाहेंगे?
0: अच्छा, मैं बात यहां से शुरू करूंगा कि जब मैं बीए का तालिब इल्म था अलीगढ़ में, उस वक्त बड़े अहम लोग मौजूद थे, खलील साहब और शहरयार साहब, हिद अख्तर साहब,
1: जितने
0: अहम लोग, नसर के भी, नाकिद भी और शायर भी, मुख्तलिफ शोबों में थे, उर्दू के अलावा भी फरीद साहब उसमें सोशोलॉजी में थे,
1: स्कॉलर
0: साहब फिलासफी में थे, उसमें अंसारी साहब अंग्रेजी में थे, तो मुख्तलिफ शोबों में उर्दू के बड़े लोग थे। तो जो मेरा अंदाजा है कि उस वक्त जो बी ए के तालिब इल्म उर्दू के अलीगढ़ में थे, तो पूरी दुनिया में लिटरेचर में क्या ट्रेंड्स हैं और कौन से लोग अहम हैं और क्या तब्दीलियां हो रही हैं और लीडिंग मैगजीन्स कौन से हैं, ये बी ए के तालिब इल्म उस वक्त जानते थे। जो कैफियत मेरे ख्याल से मुझे अंदाजा होता है, क्योंकि दूसरी यूनिवर्सिटी में इतने साल पढ़ाते हो गए अलीगढ़ में देखा कि वो कैफियत अब नहीं रही है, तो उस वक्त इन चीजों को देखते थे बहुत, और तमाम रसायल और किताबें हिंदुस्तान से बाहर से भी आती थी और तबादले होते थे, लोग पढ़ते थे, उस पर डिस्कशन होते थे,
1: तो पूरा इन्वॉल्वमेंट होता था, पूरा इन्वॉल्वमेंट पूरी होती थी।
0: तो वो था, अब एक जमाना था कि ये जो जदीदत का आपने जिक्र किया, तो उस वक्त खासे लोग जो जदीद शुरा थे वो अपना एक मुस्तहकम मकाम बना चुके थे, उनके लहजे अपने जो है वो पुख्ता हो चुके थे, लेकिन उसके बावजूद वहां जदीदियत में जो तब्दीली आई थी, कुछ तो तब्दीली वो थी जो तकाजों के तहत थी, और कुछ तब्दीली वो थी कि जो तरक्की पसंदी के अख्तलाफ में या उसकी जिद में थी, तो उससे बाद ऐसी चीजें पैदा हुई थी, कुछ बहुत मुस्बत थी, कुछ मनफी थी, और मनफी चीजों ने गजल की शायरी को खास तौर पे खासा मुश्किल किया था। बाद ऐसी चीजें, जब भी जदीदियत का जिक्र किया जाता है जदीद शायरी का, तो चंद अशार हैं जिनको सबसे पहले कोट
1: करना जमाना कह सकते हैं आप,
0: जी हाँ जी, तो उस तरह की चीजें भी हुई थी, कुछ वो टेढ़ी गजल और काली गजल, एंटी गजल,
1: एंटी गजल,
0: ये सब सिलसिला चला था। लेकिन ये जो आपने जिसकी तरफ इशारा किया था कि ये आगे जाके थोड़ा सा थम गया, और इसका असर जदीद शोरा पर भी हुआ, और खासतौर से उनके बाद की नस्ल की जो शायर, जिनमें मैं कुछ लोगों का नाम ले सकता हूं, जैसे अशोकता चंगेजी थे, फरहत एहसास, असद बुरहानी और दूसरे शोरा, इन लोगों के यहां वो चीज नहीं थी, वो बदल गई थी और खासा ठहराव जो है वो आ गया था। और ये जो मैंने नाम लिए, ये भी अपने अपने एक खास लहजे हैं लोगों के और बहुत मोहतबर, बहुत अच्छे शायर, तो ये तब्दीली उस वक्त आई थी। उसके बाद में जब ये नाबाद जदीदत का जिक्र चला और उसके तहत बहुत सी चीजें हुई, लेकिन एक ये जरूर महसूस किया गया कि नाबाद जदीदत का फलसफा अपनी जगह, और वो भी जैसे जदीदत बाहर से आई थी वो भी बाहर से आया, लेकिन एक सूरत हाल यहां बहरहाल यहां भी बदली हिन्दुस्तान में भी
1: जी।
0: और उसके असरात तमाम अदब पे देखे जा सकते हैं, खासतौर से गजल पे देखे जा सकते हैं, लेकिन गजल बहुत मुस्तहकम हो गई उसके बाद। हमारे नए जो शोरा है जिसमें आप खुद हैं और दूसरे बहुत से शोरा है, मतलब एक नहीं बहुत से लोग, ये अच्छी बात है कि पहले चंद अच्छे शोरा होते थे और बड़ी तादाद

0: एक खास यानी लहजे के साथ, एक खास सतह के साथ, और उसमें उनके यानी लहजे एक तरह से तामीर हो रहे हैं, बन रहे हैं, जो बाद में कोई शक्ल अख्तियार कर।
1: बहुत उम्दा और हौसला अफजा बात कही आपने कि जो नई शायरी में जो लोग आ रहे हैं उनके हवाले से आपने जो कुछ कहा। मैं इसी हवाले से एक और बारीक सी बात तो नहीं है, चूंकि आप खुद माशाल्लाह काफी आगाह रहे हैं, नई नस्ल में बहुत सारे शुरा ऐसे आ रहे हैं जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है, लेकिन वो शेर उसी तरह कह रहे हैं कि अगर आप उनके नाम न पढ़ें तो आपको कभी ये गुमान भी नहीं गुजरेगा कि इन शुरा की मादरी जबान उर्दू नहीं है। तो ये एक बहुत हौसला अफजा और बहुत पुरुमीद बनाने वाली सूरत हाल है। लेकिन उससे जुड़ी हुई एक और बात है जो आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि अब जब हम इस बात का जिक्र करते हैं तो हम यही कहते हैं कि उर्दू का जो रस्म खत है वो खत्म होता जा रहा है, उसे सीखने वाले कम रह गए हैं। खुद उन घरों में जहां उर्दू के बगैर कुछ नहीं होता था वहां अब उर्दू के साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसी सूरत हाल में हम स्क्रिप्ट की रस्म खत की मकबूलियत या उसकी नामकबूलियत जो भी कह लें उसके हवाले से क्या हम समझ सकते हैं और सीख सकते हैं?
0: देखिए, आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है तो ये वाक़ है कि वह शुरा जिनकी मादरी जबान उर्दू नहीं है और वो उसी तरह शेर कह रहे हैं कि जिस तरह कोई अहले उर्दू कह सकता है, और ये मैंने देखा।
1: और जबान सीख के कह रहे हैं, जबान शायरी पढ़ रहे हैं,
0: वो जबान सीख के भी कह रहे हैं। और एक दूसरी चीज ये भी है कि साहब आज भी अगर कोई जुबान ऐसी है जिसको हिंदुस्तान की लैंग्वेज फ्रंका कहा जा सकता है, जो पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती है,
1: राब्ते की जुबान,
0: हाँ, राब्ते की, बाहमी राब्ते की जुबान, नॉर्थ ईस्ट में भी मैं गया हूँ, साउथ में भी गया हूँ, अगर वो अपनी इलाकाई जुबान के अलावा किसी जुबान में गुफ्तगू करते हैं तो वो ये है। और नई शुरा की जो आपने बात की, इसमें इल्म सोबत भी एक चीज है असल में
1: जी।
0: तो वो लोग उन लोगों से जो उर्दू के बाज़ाब्ता शायर हैं या अदीब हैं या उर्दू बोलने चालने वाले उस तरह के लोग हैं जिससे कुछ सीखा जा सकता है, तो वो लोग उनसे राबता रखते हैं और उन चीजों को सीखते हैं। पहले आपने कहा कि उन्होंने बाकायदा सीखा है, मेहनत की है, कोशिश की है और पढ़ा है, तभी वो इस तरह, वरना वो उस तरह के शेर नहीं कह सकते, ये वाकया है। दूसरी बात जो आपने कही रस्म खत की, तो वो वाकया है कि ये एक लम्हे फिक्रिया है, हमें सोचना चाहिए कि इसको, इसलिए कि इस वक्त उर्दू जो है वो दो चीजें हैं, एक तलफ्फुज़ और एक रस्म खत, यही उर्दू है, वरना सब लोग वही जुबान बोलते हैं उसको उर्दू नहीं कहते। तो ऐसे आलम में रस्म खत की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। आपने देखा होगा इसमें टीवी पर, रेडियो पर और तमाम जगहों पर लोग फिर फूल कहते हैं, फटना कहते हैं। तो ये मैंने तो हिंदी के एक स्कॉलर थे जो मुस्तकिल फिर बोल रहे थे, गुफ्तगू बहुत अच्छी कर रहे थे जिस मौजू पर कर रहे थे, चूंकि पढ़े लिखे आदमी थे, लेकिन फिर कहते हैं। तो मैंने उससे सवाल किया था कि ये किस जुबान का लफ्ज, मैं ये उर्दू और हिंदी में तो है नहीं, ये किसी और तीसरी जुबान को आप बोल रहे हो, तो वो उसका कोई जवाब नहीं था, खामोश हो गया। तो मैंने कहा इसमें ये नहीं है कि तलफ्फुज़ का मसला है, इसमें एक मसला है कि एक बहुत बड़ी आवाज जो है आपके यहां से गायब हो रही है, फाड़ की जो आवाज जो खत्म हो जाएगी अगर आप फिर बोलते रहेंगे फिर, तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होगा और ये नहीं होना चाहिए। तो ये रस्म खत और तलफ्फुज़ जो है इसकी हिफाजत जिन लोगों को करनी चाहिए खासतौर पर, वो लोग नहीं कर रहे हैं, वो लोग जो है उतने बेदार नहीं हैं, और बार बार इसका तकाजा महफिलों में, गुफ्तगू में किया जाता है, उसके बावजूद मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी और मजीद क्या सूरत हाल होनी चाहिए, बहरा उस पर सोचना पड़ेगा।
1: आपने जिस खास वाकई की तरफ अभी इशारा किया, मुझे ऐसा लगता है कि ये जब कई जबाने एक जगह एक संगम के तौर पर आके मिल रही होती हैं तो कई बार एक जबान के लफ्ज दूसरे जबान के लफ्ज से टकराते हैं, उनकी आवाजें टकराती हैं, और उसमें कई बार वो लोग जो बहुत कीन साउंड सेंस नहीं रखते, जिसे हम कह सकते हैं अंग्रेजी की इस्तेलाह में, उन्हें ये अंदाजा नहीं हो पाता कि यहां पे इसकी असल आवाज क्या होनी है, तो ये कन्फ्यूजन यहां से पैदा होता है। चूंकि हमारे ज्यादातर लोग जो आज की जबान है या जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनकी बुनियादी तौर पर उनकी तालीम की जबान अंग्रेजी होती है, तो वो उन आवाजों को बहुत अच्छी तरह समझ लेते हैं जो अंग्रेजी अल्फाबेट से निकलती हैं। अब वो उन्हें जीरो बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, उन्हें फेक बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो ये आवाजें इतनी اس طرح سے ان کے ذہن پر حاوی ہو گئی ہیں کہ وہ جب اردو کے پھاوالے الفاظ بھی بولتے ہیں ہندی کے یا اردو کے تو وہ اس کو فاقی طرح ہی بولتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہوگا، چونکہ

0: खबर से मिलके बहुत रोए,
1: गर्चे आए थे,
0: गर्चे आए थे नए मकान की तबोताब देखने के लिए।
1: बहुत खूब,
0: नए मकान की तबोताब देखने के लिए। ये कैसे चांदनी खुद में सिमट के बैठ गई, ये कैसे चांदनी
1: खुद
0: में सिमट के बैठ गई, ये कौन आ गया महताब देखने के लिए।
1: बहुत खूब,
0: ये कौन आ गया महताब देखने के लिए। ये शेर मुलाहजा कीजिए कि सुकून जब्त के मेरे कसीदा खां है मगर, सुकून जब्त के मेरे
1: कसीदा
0: खां है मगर, थे मुस्तरिब मुझे बेताब देखने के लिए।
1: बहुत खूब,
0: थे मुस्तरिब मुझे बेताब देखने के लिए। और ये शेर है, जरा अलग सा मुलाहजा कीजिए कि वो भोले लोग भी पुश्ते बनाने सीख गए,
1: वो भोले लोग भी पुश्ते बनाना
0: सीख गए, न जाना गांव अब सैलाब देखने के लिए।
1: वाह,
0: वो भोले लोग भी पुश्ते बनाना सीख गए,
1: न
0: जाना गांव अब सैलाब देखने के लिए। मकता है कि तवक्के जिनकी थी वो आन पहुंचे हैं शह पर, तवक्के जिनकी थी
1: वो
0: आन पहुंचे हैं शह पर, बचा खुचा हुआ असबाब देखने के लिए।
1: बहुत खूब,
0: बचा खुचा हुआ असबाब देखने
1: के लिए। बहुत खूब, एक बहुत अच्छे शायर, एक बहुत अच्छे मुंतजिम से भी अब मुलाकात हुई, और आपने अपनी इन तमाम दो मसरूफियात के दरमियान हमारे लिए वक्त निकाला, तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने याद किया।
2: रूबरू प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे मारूफ अदीब शायर प्रोफेसर शहबर रसूल के साथ की गई एक बातचीत। आपसे महवे गुफ्तगू थे सैयद नुमान शौक, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशर जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर, मेरी पसंद। इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है, आप सभी को मेरा आदाब। प्रोग्राम की पहली पेशकश मुकेश की आवाज में, फिल्म बंधन।

पतवा सर छे डोले मनवा कि यारा में उठत हिलो अरे पुरवा के झोंकवा में आयो रे सर।

गुदान फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, और लीजिए अब सुनिए जेल थी फिल्म का नगमा लता मंगेशकर, भूपेंद्र और साथियों का गाया हुआ।

यह है मेरी पसंद प्रोग्राम की आखिरी पेशकश, चांदी की दीवार फिल्म का नगमा गीता दत्त और सुमन कल्याणपुर का गया हुआ, मौसीकी अंदत्ता की।

0: भैया एक गेम और खेलते हैं।
1: नहीं भाई मैं तो चला, तुम लोग कैरम खेलो, मिठाई खाओ और खूब कहे लगा।
0: भैया सुनिए तो, कहाँ चले?
1: अरे जल्दी आ जाऊंगा, कहीं दूर नहीं जा रहा।
0: भैया
1: भाई एक बड़ा जरूरी काम याद आ गया मुझे, और फिर मेरा यहाँ ठहरना कुछ मुनासिब तो नहीं। अब शोभा के पिताजी आ जाएं तो तुम उनसे बातचीत कर लेना।
0: बातचीत तो मैं कर लूंगी भैया,
1: लेकिन बस बस सब ठीक है, तुम मेरी बहन ही नहीं, माँ भी हो, पिता भी हो, मौसी भी हो, काका भी हो, काकी भी हो, क्या समझे कभी कुछ हो तुम।
0: मगर जल्दी आ जाना भैया।
1: हाँ आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा।
0: चले गए। हाँ सोचती हूँ ये भी कैसी अजीब बात होगी, हाँ कि एक बिन ब्याही लड़की दूसरी बिन ब्याही लड़की के ब्याह की बात पक्की करेगी।
2: जी
0: लेकिन शोभा, जैसे तारीफ मैंने सतीश से सुनी थी, तुम्हें उससे भी कहीं बढ़ चढ़ कर पाया है। अब देखो ना, मुझे यहाँ आए चंद ही घंटे हुए हैं, और ऐसा लगता है जैसे हम दोनों बरसों की सहेलियां हों। शोभा
2: जी
0: ये मिठाई खाओ।
2: नहीं नहीं,
0: अरे खा ना।
2: जी ना, मैं आप ही खा लूंगी।
0: तुम तो फिर खा ही लोगी, मुझसे भी तो कुछ
2: नहीं ना, ना। लो ना।
0: शोभा कब तक आ जाएंगे तुम्हारे पिताजी?
2: आते ही होंगे, रोज तो इस वक्त तक आ जाते हैं।
0: अरे कोई बारात जा रही है शायद, आओ देखिए।
2: चलिए आइए, इधर से देखते हैं।

0: मेरी भी यही आरजू है कि सतीश जल्द से जल्द इसी तरह धूम धड़ाके से मेरी नन्नी मुन्नी भाभी को ब्याह लाए। माँ को सतीश के ब्याह का बड़ा अरमान था। मरते मरते भी उन्होंने मुझसे उसकी दुल्हन और ब्याह की ही बात की। अरे ये किसकी तस्वीर है
1: जी? मेरे पिताजी की।
0: किसकी?
1: पिताजी की।
0: क्या कह रहे हो तुम? ये जरा उतारना तो इसे।
1: ये लीजिए।
0: क्या कहा तुमने? ये किसकी तस्वीर है?
1: जी मेरे पिताजी की तस्वीर है।
0: तुम्हारे पिता की? तुम्हें तुम्हें यकीन है कि ये?
1: क्या हो गया है आपको? कितनी बार पूछेंगी आप? अरे बात क्या है? आप यहीं बैठ गई? तबीयत कैसी है आपकी निर्मला बहन? हाँ
0: ठीक है।
1: आपका तो चेहरा पीला पड़ता जा रहा है, क्या बात है बताइए ना।
0: शोभा
1: जी,
0: मैं इस तस्वीर को अच्छी तरह जानती हूँ।
1: जी
0: वही, बिल्कुल वही आंखें, वही मुझे, वही खम खाई हुई भवें, ये बाएं गाल पर जख्म के निशान।
1: आप पिताजी से मिल चुकी हैं?
0: हाँ मिल चुकी हूँ, खूब अच्छी तरह।
1: अच्छा, आपने पहले बताया नहीं। कहाँ मिल चुकी हैं आप पिताजी से?
0: कहाँ?
1: जी हाँ, पिताजी से आप कहाँ मिली?
0: जेल वार्ड में।
1: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ।
1: आपसे भूल हो रही है निर्मला बहन?
0: नहीं बिल्कुल नहीं, मैं इस शक्ल को नहीं भूल सकती, कभी नहीं भूल सकती।
1: ये मेरे पिताजी हैं।
0: ये एक कैदी है, सजा याफ्ता मुजरिम।
1: नहीं नहीं नहीं,
0: कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 5 बरस हुए होंगे। इलाहाबाद जेल के कैदी जिस बाग में काम करने के लिए आते थे, वो बाग हमारे ही घर के सामने था। खाने का घंटा बजने पर कमोबेश रोजाना ही इस आदमी से मुलाकात होती रही है। नाम तो नहीं जानती लेकिन नंबर जानती हूँ, 255।
1: तो सतीश भी?
0: नहीं, वो वाकिफ नहीं, और अगर उसे खबर होती तो शायद इस मुलाकात और बातचीत की नौबत ही ना आती।
1: मैं आपसे फिर कहूंगी, शायद आपसे कोई भूल हो रही है।
0: कोई और भूल जाए तो भूल जाए, मगर मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती। खाने के वक्फे में यही कैदी मुझे रोजाना जेल के बागीचे से सुर्ख गुलाब लाकर दिया करता था। घंटों इसने मुझसे अपने और अपनी लड़की के बारे में बातें की हैं
1: जी,
0: लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कैदी जिस बेटी के रूप में मुझे देख रहा है और मुझे देख देख कर उसे याद करता है, उसकी शादी की बातचीत मुझे अपने भाई के लिए करनी होगी।
1: ये सही है कि मैं बरसों अपने मामू की कर रही, मगर मुझे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं कि पिताजी ने कब कोई ऐसा जुर्म किया था जिसकी सजा उन्हें जेल में काटनी पड़ी। निर्मला बहन, मैं आपके भाई की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सतीश को पास बुलाना तो क्या उनकी तरफ देखने तक की हिम्मत न करती, कभी नहीं कभी नहीं।
0: मेरा भाई 100 साल जिए, मैं नहीं चाहती कोई उसके नाम की झूठी सच्ची कसमें खाए। मैं जा रही हूँ।
1: सुनिए निर्मला बहन,
0: मैंने कह दिया ना, अब मैं एक पल यहाँ नहीं रुक सकती, मैं जा रही हूँ।
2: आप नहीं जा सकती।
0: तुम?
2: हाँ, मैं 255। नमस्ते नहीं करोगे? खैर, सदा सुखी रहो, फलो फूलो। अभी अभी सतीश मुझसे मिले थे, उन्होंने बताया कि तुम यहाँ हमारे घर आई हो और
0: आई थी, मगर इससे आगे और कुछ कहने की जरूरत नहीं।
2: दो मिनट बैठो बेटा, 5 बरस बाद मिलना हुआ है, क्या आज सुर्ख गुलाब नहीं लोगे मुझसे?
1: पिताजी,
2: मैंने सब कुछ सुन लिया है बेटा।
1: पिताजी,
2: ये जो कुछ कह रही हैं वो सब सच है, हर्फ पर हर्फ सच है।
1: लेकिन आपने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा पिताजी।
2: हाँ, मैंने नहीं कहा, ये मेरी कमजोरी थी बेटा, बहुत बड़ी भूल। मुझे बता देना चाहिए था कि मेरी जिंदगी के कुछ साल किस तरह बीते हैं।
1: पिताजी,
2: कई बार मैंने इरादा किया, मगर बेटे, मैं अपने आप में इतनी हिम्मत नहीं कर सका कि तुमसे कुछ कह सकूं। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। निर्मला बेटी, बैठो। 5 साल पहले जेल वार्ड के बगीचे में तुमने कई बार मेरे जुर्म के बारे में मुझसे पूछा था, मगर मैंने इधर उधर की बातों से तुम्हें टाल दिया था।
0: अब इन बातों की जरूरत क्या है?
2: मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरे घर आई हो तो अपने भाई सतीश की बात मेरी बच्ची से पक्की करके ही जाओ। मैं ब्याह पर जोर नहीं दे रहा हूं, और ना ही मेरा ये मतलब है कि मैं अपनी बातों के जरिए तुम्हारा फैसला बदल दूं। मैं आज इस नई मुलाकात की खातिर नहीं, पिछली पुरानी पहचान के ताल्लुक से तुम्हें ठहरने के लिए कह रहा हूं।
1: निर्मला बहन,
2: आज से 9 साल पहले जबलपुर के सबसे बड़े सेठ राय मगनलाल के यहां से 20 लाख रुपए के बेशकीमत हीरे चोरी हो गए थे।

0: ये वारदात की थी कि पुलिस के बड़े बड़े अफसर भी जुर्म का कोई सुराग न लगा सके, लेकिन एक मामूली कांस्टेबल ने तिजोरी के पास पाए गए कदमों के निशान से चोर का सुराग निकाल लिया और ताकुब करके उसे गिरफ्तार कर लिया।
1: क्या वो मुजरिम?
0: जुर्म का इर्तकाब राय मगनलाल के उस नौकर ने किया था जिसके पैर की एक उंगली कटी हुई थी। उस कांस्टेबल की हिम्मत और काबिलियत के बड़े चर्चे हुए, तारीफों के पुल बांध दिए गए और उस कांस्टेबल को तरक्की देकर इंस्पेक्टर बना दिया गया।
2: हरिराम।
3: यस सर।
2: कंग्रेचुलेशंस हरिराम, जबलपुर डायमंड केस की कामयाबी के कारनामे में तुम्हें कांस्टेबल से इंस्पेक्टर बना दिया है। ये देखो आर्डर्स आ गए। बुध को एटाबाद पहुंचकर थानेदारी का चार्ज ले लो। मुबारक हो हरिराम।
0: थैंक यू सर।

0: भैया। ए भाई।
1: कौन?
0: भगवान के लिए मेरे हाल पर रहम करो, एक सिगरेट को तो दे दो। बुरी तरह तड़प रहा हूँ, उम्र भर तुम्हारा एहसान मानूंगा।
1: क्या है, आधी रात को क्यों चिल्लाते हो?
0: अरे भैया एक सिगरेट दे दो, सिर्फ एक सिगरेट।
1: ले।
0: खुदा तुम्हारा भला करे, जरा माचिस भी दिखा दो।
1: माचिस ये लो।
0: मजा आ गया, मैं तो मर चुका था सिगरेट के लिए, नई जिंदगी दे दी तुमने मुझे। बड़ी बुरी तलब है सुसरी, क्या करूं भैया, 8 बरस की उम्र से पीता आ रहा हूं, मगर एक बात है, तुम हो बड़े खुशकिस्मत।
1: खुशकिस्मत? कौन? मैं?
0: हाँ बहुत खुशकिस्मत, सारी उम्र मौज करो, अगर मेरी एक बात मान लो।
1: अब और कौन सी बात बाकी रह गई है?
0: कोई सुन ना ले, जरा पास आ जाओ।
1: यहाँ कोई नहीं है, बोलो, कोई नहीं सुनेगा।
0: किल्लू
1: अब कहता है या बकवासी करता रहेगा?
0: सारी उम्र ऐश करो, अगर तुम मुझे यहाँ से छोड़ दो।
1: क्या बकता है?
0: गुस्सा ना करो भैया, ये तो तुम जानते ही हो, मैंने 20 लाख रुपए की हीरों की चोरी की है। और ये हीरे अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं।
1: बहुत जल्द लग जाएंगे।
0: कभी नहीं, कभी नहीं, ये हीरे पुलिस के हाथ कभी नहीं आएंगे। मेरे सिवा कोई नहीं जानता कि ये हीरे कहाँ छुपे हैं।
1: ऐसी कौन सी जगह है जहां तुम्हारे सिवा कोई और नहीं पहुंच सकता?
0: मैं वो जगह तुम्हें बताने को तैयार हूँ।
1: मुझे?
0: वो सारे हीरे भी तुम्हें देने को तैयार हूँ।
1: मुझे?
0: हाँ, बस किसी तरह तुम मुझे यहाँ से निकल जाने दो।
1: तुम समझते हो ये मुमकिन है?
0: दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं भैया, तुम चाहो तो इसे मुमकिन बना सकते हो। सिर्फ तुम इस तंग तारीक वार्ड में, सिर्फ तुम हो और मैं
1: इंस्पेक्टर बना दिया गया हूं, बुध को मुझे थानेदारी का चार्ज लेना है।
0: थानेदार? 20 लाख रुपयों के हीरों के आगे तुम्हारी थानेदारी क्या चीज है? सोचो, 20 लाख रुपए थोड़े नहीं होते।
1: 20 लाख रुपए?
0: हाँ, कभी देखे हैं 20 लाख रुपए? 20 लाख रुपयों के ढेर और नोटों की गड्डियों का तुम ख्याल भी नहीं कर सकते।
1: 20 लाख रुपए?
0: बस अब और ज्यादा ना सोचो, मुझे एक मौका दे दो और अपनी जिंदगी बना लो।
1: 20 लाख तुम्हें

0: तुम्हें मौका दे दूं और मैं
1: ये मौका दोनों ही की जिंदगी सुधार देगा।
0: सुधार देगा या
1: कैसी बातें कर रहे हो हरिराम? तुम मेरे साथ चलोगे, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा, सारी उम्र मौज करोगे। क्या थानेदारी के चक्कर में पड़े हो, मैं सब जानता हूं। तुम्हारा यहां कोई नहीं है, बीवी अरसा हुआ मर गई, एक 9 बरस की लड़की है जो तुमसे हजारों मील दूर अपने मामू के यहां होशंगाबाद में रहती है। इस वक्त रात के 2 बजे, सुबह होने तक हम कहां से कहां पहुंच सकते हैं? सिर्फ 200 रुपए हमें ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जहां बड़े से बड़े सुराग रसां का जहर नहीं पहुंच सकता। बाकी 19,99,800 रुपए।
0: 19,99,800 रुपए?
1: हाँ, 19,99,800 रुपए। ये सारे के सारे रुपए तुम्हारे होंगे,
0: मेरी
1: सारी दौलत के तुम मालिक होगे।
0: मैं
1: अकेले तुम
0: मैं?
1: बच्चे ना बनो हरिराम, आओ जरा से हिम्मत कर लो, दरवाजा खोल दो, फिर देखो तुम्हारी किस्मत का दरवाजा किस तरह खुद ब खुद खुलता चला जाता है।
0: मैं वो
1: हरिराम, आओ जल्दी करो, जल्दी करो हरिराम, जल्दी करो।

0: हम तो इस जीने के हाथों मर चले।
1: और बेरौनक चेहरा, बिखरे बाल, पपड़ी जमे होठ, वहशत ज़दा आंखें लिए शोभा शोभा मेरे सामने आ खड़ी होती।
2: ये भाई तो हमेशा रोता रहता है। अरे लो, मैं एक नई बात बताऊं। शहर में नई तजवीज के तहत सारे दफ्तरों के हाथों की दीवारें छोटी की जा रही है।
0: हाँ, अक्सर व बेशतर दफ्तरों के कंपाउंड्स की दीवारें एक एक गज से ज्यादा ऊंची नहीं रहेंगी।
2: आए तो फिर यार, हम लोगों ने क्या किया है? अरे हम सबको मिलकर दरखास्त देनी चाहिए। हमने क्या बिगाड़ा है? जेल खाने के अहाते की दीवारें भी छोटी की जाए।
1: उस वक्त मैंने देखा एक लंबा सा आदमी बैग लिए हमारी तरफ आ रहा है। बाद में मालूम हुआ कि ये रिहाशुदा कैदियों की अंजुमन का वेलफेयर ऑफिसर था, जिसे सुपरिटेंडेंट साहब ने हमारे पास भेजा था।
3: देखिए, मैं सुपरिटेंडेंट साहब की इजाजत से आपके पास आया हूं कि आपको रिहाशुदा कैदियों की अंजुमन के बारे में कुछ बातें बताऊं।
0: कैसी अंजुमन भैया? क्या नाम बताया?
3: वो अंजुमन जो जेल से छूटने वाले कैदियों की हर तरह से मदद करती है।
2: लो भाई सुनो, हम कैदियों की भी अंजुमन बना डाली।
3: जी हाँ, इस अंजुमन का मकसद ये है कि जो कैदी अपनी सजा काट कर यहाँ से रिहा होते हैं, उन्हें फिर से बसाएं, आबाद करें, उनके लिए रोजगार फराहम करें, और फिर कैदियों को हर तरह बाइज्जत जिंदगी गुजारने की ज्यादा से ज्यादा सहूलतें फराहम करें।
0: मगर भाई, हम में से ना भी कोई यहाँ से जाने को तैयार है, ना हुकूमत किसी को छोड़ने को आमादा है।
3: ये फैसला तुम कैसे कर सकते हो भाई? हो सकता है हुकूमत ने किसी के अच्छे रवैये और अच्छे कैरेक्टर की बिना पर रिहाई के अहकाम सादिर कर दिए हों।
0: सुनिए, ये भाई 7 साल, वो भाई 4 साल, वो 6 साल, ये भाई 1.5 साल और बंदा 11 साल। अब फरमाइए।
3: हो सकता है तुम्हारा 1.5 साल वाला भाई रिहा हो जाए और दूसरे कैदियों की कैद की मुद्दत में भी कोई कमी कर दी जाए।
0: अरे वाह वाह वाह साहब, क्या खुशखबरी सुनाई आपने बैठे बैठे। लीजिए, बीड़ी पीजिए।
3: शुक्रिया भाई, मैं तंबाकू नहीं पीता। इस अंजुमन का असल मकसद ये है कि इत्तफाकिया जुर्म करने वालों को आदि मुजरिम बनने से रोका जाए और आदि मुजरिमों की जिंदगी बेहतर से बेहतर बनाने के लिए जद्दोजहद की जाए। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस अंजुमन को न सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि बड़े बड़े बिजनेसमैन, ताजिर, डॉक्टर्स और एडवोकेट्स सबकी हमदर्दियां और ताबुन हासिल।
0: अच्छा, अच्छा?
3: हाँ, बस जरूरत इस बात की है कि आप अपने आप में जल्द से जल्द तब्दीलियां लाएं जो आपको सबसे उम्दा इंसान का खिताब दिलाएं। ना सिर्फ खुद उम्दा जिंदगी गुजारें बल्कि दूसरों को भी बेहतर जिंदगी की तरगीब दें।
0: वाह,
3: अब आखिरी बात
0: वो क्या?
3: इसे आप अच्छी खबर समझें या बुरी, मैं आपके सबसे अजीज दोस्त हरिराम को अपने साथ शेल्टर ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि इनकी रिहाई की सुपरिटेंडेंट साहब ने पुरजोर सिफारिश की।
0: अच्छा,
3: और अब सारे कागजात मुकम्मल हो चुके हैं।
2: अच्छा, हरी राम जी मुबारक हो। हम तो यही है, तुम तो जाओ।
1: रिहा होकर मैं डिस्चार्ज प्रिजनर शेल्टर में आ गया। यहाँ और भी मेरी तरह रिहा किए गए कैदी मौजूद थे, उन्हें मुख्तलिफ काम सिखाए जा रहे थे। यहां मैंने 90 दिन गुजारे। उन दिनों में पूरी आजादी के साथ बाहर आता जाता था, सारे शेल्टर और अंजुमन के फराइज अंजाम दिया करता था। फिर उस अंजुमन की इमदाद से मैंने 100 रुपए के खर्च से एक चाट घर खोला। और आज मेरी मेहनत और दयानत की बदौलत वही चाट घर एक बड़े रेस्टोरेंट की सूरत अख्तियार कर चुका है।

0: बेटा बेटा सुनो,
1: ये दो प्लेट दही बड़ा
2: और एक प्लेट बर्फी और तीन कप कॉफी।
0: जल्दी अब भाई हमको दो कोल्ड ड्रिंक लाओ।
3: और हाजरीन नोश फरमाइए उसी रेस्टोरेंट के गुलाब जामुन।
4: सतीश
5: सतीश
6: सतीश
3: जी गुलाब जामुन हाजिर हैं।
6: निर्मला जी आपके भाई सतीश आ चुके हैं, अब आप जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं।
3: माफ कीजिए हम जाने के इरादे से नहीं आए हैं,
6: और
3: आपको और शोभा को अपने घर ले जाने का फैसला करके आए हैं। आओ शोभा चले।
6: लेकिन बेटा मैं
3: सब सुन चुका हूं, सब जान चुका हूं, अब आप मेरे पिता हैं। इजाजत दीजिए कि आपके पैर
6: छू। नहीं जीते रहो बेटा, जीते रहो, जुग जुग जियो बेटा, फलो फूलो।
4: अब मुझे माफ कर दीजिए हरिराम जी।
6: बेटा
4: बहुत शर्मिंदा हूं।
6: नहीं नहीं तुम तो मेरी प्यारी बेटी हो, लो मिठाई खाओ। खाओगी या नहीं, ये मेरे रेस्टोरेंट की है।
7: अभी आप सुन रहे थे जनाब अजहर अफसर का तहरीर करदा ड्रामा रिहाई के बाद, तर्तीब पेशकश अनवर खान की थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
8: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप फैसल खान से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ने स्कारबोरो रीफ में कुदरती हयात का महफूज इलाका कायम करने की चीन की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कहा कि इससे फिलिपाइन के माहीगीरों की अपने रिवायती माहीगीरी के इलाकों तक रसाई महदूद हो सकती है। अमरीका ने नए इमिग्रेशन मंसूबे के तहत H-1B वीजा पर काम करने वाले अफराद 60 दिन की मोहलत से महरूम हो सकते हैं। यूक्रेन ने अमरीका के साथ अपने फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की माहाना फराहमी के सिलसिले में माहिदा कर लिया है। और बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद उसत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तिजारत दिफा अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के आजम का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू होकर 17 अगस्त तक जारी रहेगी। इस पहल का मकसद शहरियों को हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और भारत के मालामाल विरसे का जश्न मनाने की सरगर्मियों में शिरकत करने और कौमी परचम को लहराने के लिए शहरियों की हौसला अफजाई करना है। इस मुहिम का आगाज आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के हिस्से के तौर पर 2022 में किया गया था। उस वक्त से अब तक ये मुल्क की सबसे बड़ी अवामी शिरकत की तहरीक के तौर पर उभरी है। गुज़श्ता बरसों में यह हकीकी तौर पर लोगों की तहरीक बन गई है जो मुल्क के सभी खित्तों और बिरादरियों को भारत के इत्तेहाद वकार और मजमूई कौमी शिनाख्त का जश्न मनाने के लिए तहरीक देती है। इस साल की हर घर तिरंगा

मुहिम खुसूसी अहमियत की हामिल है क्योंकि इस साल भारत के कौमी गीत वंदे मातरम की भी 150वीं सालगिरह मनाई जा रही है। कौमी गीत कौमी परचम का एक साथ होना हुब्बुल वतनी का मुनफरिद जश्न है। तकरीबात के हिस्से के तौर पर पूरे मुल्क में एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाये जाने का एहतमाम किया जाएगा। इसके अलावा योम आजादी की यादगार के तौर पर 14 अगस्त को मुल्क की तकसीम की हौलनाकियों को याद किया जाएगा ताकि मुल्क की तकसीम के बाइस होने वाली तकलीफों मसाइब और बेघर होने जैसे हौलनाक वाकयात को याद रखा जा सके। इस सिलसिले में पूरे मुल्क में खामोश मार्च निकाले जाएंगे। मुल्क की तकसीम से मुतालिक नुमाइशों का एहतमाम किया जाएगा। इसके साथ ही सकाफत की वजारत ने लोगों से कौमी परचम पर फख्र का इजहार करते हुए इसे लहराने और कौमी गीत वंदे मातरम को सीखने और गाने की हौसला अफजाई की है। बैरून मुल्क भारत के 200 से ज्यादा सिफारतखाने हाई कमिश्नर्स और कौंसिल खाने इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद करेंगे। इस साल की एक अहम तकरीब सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले है जिसमें 54 भारतीय मिशन शिरकत करेंगे। यह रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होगी और सैन फ्रांसिस्को में भारत के कौंसिल जनरल पर खत्म होगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने काकोरी ट्रेन एक्शन के अजीम मुजाहिद आजादी को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब शाह ने कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन भारत की आजादी की जद्दोजहद का एक नाकाबिले फरामोश बाब है जिसने बरतानवी हुकूमत के जुल्म जबर और नाइंसाफी के खिलाफ मुसल्लह इनकलाबी तहरीक को नई रफ्तार दी। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल की क्यादत में बहादुर मुजाहिदीन आजादी ने अपनी बेमिसाल जुरात और अज़्म के जरिए बरतानवी हुकूमत को यह पैगाम दिया कि मुल्क के वसाइल इसके अवाम की मिल्कियत हैं। जनाब शाह ने कहा कि मुल्क काकोरी ट्रेन एक्शन के तमाम अजीम मुजाहिदीन आजादी की हमेशा एहसानमंद रहेगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने स्कारबोरो रीफ में चीन की जानिब से कुदरती हयात का कौमी महफूज इलाका कायम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया। अमरीका का कहना है कि इस इकदाम से फिलिपाइन के माहीगीरों की अपनी रिवायती माहीगीरी के इलाकों तक रसाई महदूद हो सकती है जैसा कि 2016 के सालिसी फैसले में भी इसको उजागर किया गया है। अमरीकी महकमे खारजा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि चीन की जानिब से यह एक और एकतरफा कोशिश है जिसमें मशकूक माहौलियाती और कानूनी जवाब पेश करते हुए ताकत के इस्तेमाल के जरिए जुनूबी बहिरे चीन में अपने वसी इलाकाई और बहरी दावों को अपने पड़ोसी ममालिक की कीमत पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बयान में मजीद कहा गया कि अमरीका अपने इत्तेहादी फिलिपाइन के साथ खड़ा है और एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत करता है। यह बयान चीन की जानिब से मुतनाज़े इलाके के लिए नए इंतजामी इकदाम के ऐलान के बाद सामने आया है जिसे फिलिपाइन और बैन अल-अक़वामी कानूनी दस्तावेजात में स्कारबोरो शोल कहा जाता है। जुनूबी बहरे चीन से मुतालिक 2016 का सालिसी फैसला अक़वामे मुत्तहिदा के समुद्री कानून के कन्वेंशन UNCLOS के तहत कायम किए गए सालिसी ट्रिब्यूनल ने जारी किया था। फैसले में कहा गया था कि फिलिपाइन के खसूसी इकतसादी जोन EEZ में आने वाले समुद्री इलाकों के वसाइल पर चीन के तारीखी हकूक के दावे की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। ताहम चीन ने इस सालिसी फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका उस शिक को खत्म करने पर गौर कर रहा है जो कुछ गैर मुल्की कारकुनों को अपनी मुलाजमत खोने के बाद नई मुलाजमत तलाश करने के लिए 60 दिन तक का वक्त देता है। यह तजवीज फिलहाल बंदोबस्त और बजट से मुतालिक व्हाइट हाउस के दफ्तर OMB के जेर गौर है और इस सिलसिले में अभी तक कोई वसूल नहीं है। मुजवजा तब्दीलियों की तफसीलात मुकम्मल तौर पर अवामी तौर पर दस्तियाब नहीं है। इस तरह के इकदाम से H-1B हुनरमंद वर्करों और उनके जेर कफालत अफराद को तकरीबन फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। यूक्रेन ने पेट्रियट फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की माहाना फराहमी के लिए अमरीका के साथ एक माहिदा किया है।
بغداد میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اس بات کی تصدیق کی کہ واشنگٹن یوکرین کو ماہانہ بنیاد پر انٹرسیپٹر

और ये सुनिए साजन की सहेली फिल्म का नगमा मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में, नगमा निगार मजरू सुल्तानपुरी, मौसीकी उषा खन्ना की।

इस वक्त मेरा तुम्हारा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। अगली पेशकश साजन बिना सुहागन फिल्म का दुगाना, आवाजें यसुदास और अनुराधा पौडवाल की, नापानिगार इंदिवर, मौसीकी उषा खन्ना की।

फिल्म पे दिल आ गया। इस फिल्म का नगमा सुनिए लता मंगेशकर और कुमार सानू का गाया हुआ। मौसीकी तरतीब दी है आदेश श्रीवास्तव ने।

0: मेला फिल्म का ये नगमा सुन रहे थे लता मंगेशकर और मनमोहन सिंह की आवाजों में। इस नगमे के साथ ही मिले सुर मेरा तुम्हारा प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।
1: सुर्खियों में
2: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निशित कुमार।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया और जिसमें लगभग 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी डिग्रियां प्रदान की गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं का देश के लिए, खास करके विकसित भारत 2047 के लिए योगदान करने का आह्वान किया और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश। कार्यक्रम में बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका।
4: जी धन्यवाद।
3: सुरेश जी, जैसा कि हमने सुना, प्रधानमंत्री ने युवाओं का जैसा आह्वान किया है आज, खास करके क्यूरियोसिटी और कंटिन्यूअस लर्निंग की बात की उन्होंने और साइंस और टेक्नोलॉजी पर काफी बल दिया। हालांकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए ज्यादा जाना जाता है और उन्होंने बहुत ही एक, जिसे कहते हैं, एक सार्वभौमिक रूप से युवाओं का आह्वान किया है 2047 के विकसित भारत में अपना योगदान करने के लिए। आप कैसे देखते हैं इसे?
4: जी बिल्कुल, देखिए मुझे तो याद आ गया, हम लोगों ने सुना है कि किसी जमाने में अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनका एक अभिभाषण था जिसमें उन्होंने कहा था कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये एक ऐसा अभिभाषण था जहां प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि देश आपके लिए क्या कर रहा है और साथ में जो है यह भी बताया कि आपको भी अपने देश को जो है केंद्र में रखना चाहिए। और प्रधानमंत्री पहली बार नहीं है, चाहे वो एग्जाम की बात हो, चाहे वो पूरे देश भर में कहीं भी जाते हैं, युवाओं को और महिलाओं को उन्होंने हमेशा केंद्र में रखकर ही काम किया है। और चाहे वो उनकी योजनाएं हो, प्रधानमंत्री कौशल विकास से लेकर, स्टार्टअप से लेकर, स्टैंडअप इंडिया से लेकर, इतनी योजनाएं मुद्रा योजना से लेकर, किस तरीके से देश के युवा पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती है, उच्च शिक्षा में जितने IITs खोले गए, नए IIMs खोले गए, नए नए संस्थाएं खोली गई, तो मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के हमेशा जो है युवा पीढ़ी उनके जो है सबसे केंद्र बिंदु रहा है उनके सभी नीति निर्धारण में। और आज भी जब IIT में 3000 से ऊपर जब विद्यार्थियों को उन्होंने संबोधित किया और उनको जो IIT से जो निकले, यानी कि जो देश के बहुत ही हमारे एक तरह से बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिसमें देश के बेहतरीन इंजीनियर्स हैं, बेहतरीन जो हमारे विद्यार्थी हैं, उनको उन्होंने संबोधित किया, उनको प्रेरित करने का प्रयास किया, तो मैं समझता हूं कि ये उन्होंने आज अपनी मन की बात जो है उन विद्यार्थियों के साथ साझा किया जो देश के भविष्य हैं, जिनसे बहुत उम्मीद भी है और जिनको जो है प्रधानमंत्री जी ने उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी एहसास दिलाया और सरकार उनके लिए क्या कर रही है अलग अलग योजनाओं के तहत, अलग अलग पहल के तहत, इसके बारे में भी उनको सूचित कराया। तो एक तरह से इस IIT ग्रेजुएशन के बहाने मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने देश के हर युवक को स्पर्श करने का प्रयास किया और बहुत ही प्रेरणादायी उद्बोधन था उनका, जहां उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही जो निश्चित ही हमारे युवा पीढ़ी को प्रेरित करेगी।
3: सुरेश जी, तो उभरते हुए शोध के अवसर जो हैं, वो जो IIT जैसे संस्थान और भी जो अन्य ऐसे संस्थान हैं देश में, वो काफी अवसर ऐसा प्रदान करते हैं और इस दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र भी किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा।
5: प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है, अनुसंधान

0: यहां नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है।
1: सुरेश जी, आपने सुना प्रधानमंत्री ने उभरते हुए जो शोध के अवसर हैं उस पर उन्होंने काफी बल दिया है और खास करके भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान जैसे संस्थाओं के विद्यार्थियों का उन्होंने जो आह्वान किया कि अगले आने वाले 2 से 3 दशक हैं ये देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उनके कंधों पर और किस तरह से वो इसे एक दिशा और दशा देते हैं उससे बहुत कुछ निर्भर करेगा कि हमारा देश कैसे विकसित बनेगा 2047 में। कैसे देखते हैं इसे आप?
2: बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चाहे शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने शोध को जो है बहुत महत्व दिया और उन्होंने कहा कि अगर अन्य मुल्कों के विश्वविद्यालय अगर आगे हैं तो उसका एक बड़ा कारण उसका है कि उनका शोध पर जो जोर देना है। इसलिए जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी बनी तब उसमें जो है उन्होंने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की जो है कल्पना की थी और आज भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि ये जो भारतीय युवा हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है शोध अनुसंधान। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप की बात कही। उन्होंने कहा कि जो रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम जो भारत सरकार का है उसके बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात कही और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भारत का जो शोध का जो इकोसिस्टम है जो उस माहौल को जो है और उसमें जो है ज्यादा प्रतिबद्धता के साथ हमारे युवा जुड़े उसको आगे बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि विश्व में अगर हमें अपना स्थान बनाना है हमें अपने पेटेंट्स लाने हैं हमारे अपने शोध के क्षेत्र में जो है विश्व स्तरीय हमारा जो है उपलब्धियां अगर हमको हासिल करना है आईपीस लेने हैं तो मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे युवा जो है शोध पर जो है जोर दें और आज का उनका आह्वान बिल्कुल मैं समझता हूं कि समय के अनुकूल है और हमारे युवाओं के लिए एक प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
1: जी सुरेश जी, ऐसे कई विकासशील ऐसे क्षेत्र हैं जिनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में किया, खास करके ड्रोन टेक्नोलॉजी, स्पेस, ऐसे जो उभरते हुए जो क्षेत्र हैं उस पर उन्होंने युवाओं का खास आह्वान किया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में खास क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं।
0: आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए, आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है।
1: जी सुरेश जी, प्रधानमंत्री जी ने एक आत्मनिर्भरता की भी बात की, सेल्फ रिलायंस इन न्यू सेक्टर्स, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात थी, ड्रोन की बात है, स्पेस की बात है और भी कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि हमारे युवा जो हैं काफी उनकी भागीदारी हो सकती है। कैसे देखते हैं इसे?
2: देखिए, जो प्रौद्योगिकी का जो क्रांतिकारी प्रगति आज हो रहा है और उसमें युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे अवसर के दरवाजे खुल रहे हैं। चाहे आपने जैसे जिक्र किया स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कही, ड्रोन्स की बात कही, सेमीकंडक्टर्स की बात कही, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, डेटा सेंटर्स की बात कही, क्रिटिकल मिनरल्स की बात कही, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात कही, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो आज ईवी व्हीकल्स को हम इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं उसकी बात कही, एनर्जी स्टोरेज की बात कही। और उन्होंने कहा कि आज हमारे पुराने, हम देखते हैं कि कई जगह जो है पुरानी नौकरियां पुराने जो शैली की थी वो आज समाप्त हो रही है और नई नई चीजें उभर रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा कि पहले सवाल खड़े करते थे कि क्या भारत कभी सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आ सकते हैं क्या, और उन्होंने ये सूचना भी दी कि हमारे पहला सेमीकंडक्टर यूनिट में जो है हमने उत्पादन का कार्य शुरू कर लिया है। और उन्होंने बहुत खूबसूरत बात कही कि आपके हाथों से सब कुछ बनेगा, चिप से लेकर शिप्स तक। तो मैं समझता हूं कि उन्होंने हर तरह के विधाओं में युवाओं की जो हमारी प्रतिभा है उसको उजागर करने की बात कही और उनको नए चुनौतियों के बारे में बोला, नए अवसर के बारे में बताया और कहा कि आपको इन क्षेत्रों में जो है सक्रिय रूप से आपको प्रतिभागिता आपको करनी है, उसमें भाग लेना है।
1: जी सुरेश जी, और खास करके प्रधानमंत्री जी ने आज इन क्षेत्रों के अलावा सेमीकंडक्टर की बात आपने भी की। अभी सेमीकंडक्टर एक ऐसा एक सेक्टर है जहां पर कि अभी तक कुछ वक्त पहले तक हम विदेशों पे निर्भर करते थे, विदेश के कुछ ऐसे देश हैं जहां से वो हम इम्पोर्ट करते थे सेमीकंडक्टर, और आज के वक्त में अगर हम देखें तो भारत में भी इसका उत्पादन एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र भी किया, आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने।
0: सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।
1: जी, प्रधानमंत्री जी ने इस अवसर पर परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन किया, जो कि एआई पावर्ड हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी के लिए एक एडवांस्ड, जिसे कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, और आईआईटी दिल्ली जैसे संस्थाओं के साथ मिलकर इस चीज को आगे बढ़ाना, और खास करके आईआईटी दिल्ली के सोनीपत कैंपस जो है वहां पर एआई और डेटा साइंस को बूस्ट देने के लिए, उसके रिसर्च को शोध को बूस्ट देने के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम है। आप कैसे देखते हैं इसे?
2: बिल्कुल, देखिए आपको याद होगा बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम था जब हमने पहली बार जब परम बनाया
1: जी,
2: परम जो सुपर कंप्यूटर था वो भारत ने बनाया और पूरे विश्व को दिखा दिया था कि कंप्यूटिंग के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में हमारे कोई सानी नहीं है। और आज एक और कदम आगे बढ़ा के उसके बाद बहुत प्रौद्योगिकी में बदलाव आया और एआई बड़े पैमाने पर आया। और आपको याद होगा कि हमने कुछ ही समय पहले जो है भारत मंडपम में दिल्ली में जो है हमने एआई का समिट का भी आयोजन किया था, जहां विश्व के जो एआई के नेतृत्व है वो वहां जो है उनकी उपस्थिति हमने देखा। और उसी एआई को आज कटिंग एज टेक्नोलॉजी, हम इसको किस तरीके से एआई के क्षेत्र में हम वर्ल्ड लीडर, सॉफ्टवेयर में तो भारत ही है आज, चाहे वो सिलिकॉन वैली हो या बैंगलोर हो या साइबराबाद हो, आप देखेंगे कि हमारा विश्व में एक तरह से बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे भारतीयों ने खड़े किए हैं और भारतीयों का नेतृत्व है, भारतीय वहां कार्यरत है। और वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी हम किस तरीके से जो है न सिर्फ भारत की तरक्की के लिए, पूरे मानवता के लिए हम उसका कैसे सदुपयोग कर सकते हैं, और उसमें मात्र मुनाफे को देखकर नहीं विश्व कल्याण को केंद्र में रखकर हम एआई का किस तरीके से सदुपयोग कर सकते हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड जो है, इससे एआई को इस्तेमाल करते हुए ये सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी हमने जो है सोनीपत कैंपस में आईआईटी दिल्ली के इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं निश्चित ही समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा कदम है एआई के क्षेत्र में भी और सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भी।
1: जी जी जी, सुपर कंप्यूटिंग की बात की आपने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे बढ़कर के भी अब हम क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर भी हम जा रहे हैं, और विश्व कल्याण के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु पर बल दिया जिसमें कि नेशनल इंटरेस्ट की बात की, कि युवाओं को खास करके जो ऐसे युवा जो आईआईटी जैसे संस्थाओं से बाहर निकल रहे हैं, वहां से पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उन्हें नेशनल इंटरेस्ट केंद्र बिंदु में रखना चाहिए ताकि आने वाले 30 से 35 से 40 वर्षों में भारत एक सुपर पावर के रूप में एक उभर करके ऊपर आए। आपका क्या कहना है इस बारे में?
2: बिल्कुल, देखिए मैंने जैसे कहा कि देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो है उन्होंने याद दिलाया, क्योंकि अब हम 15 अगस्त भी जल्दी ही मनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने युवाओं को याद दिलाया कि देखिए हमने गुलामी का दौर भी हमने देखा है और हमारा एक ही लक्ष्य उस वक्त होता था कि हमारा देश स्वाधीन हो, और उन्होंने बहुत संघर्ष किया उस वक्त के युवाओं ने, और उन्हीं के कुर्बानियों के वजह से, बलिदानों के वजह से हम जो है आज एक स्वतंत्र देश में हम लोग रह रहे हैं। लेकिन अब हमारी चुनौतियां अलग हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी। तो उन्होंने कहा कि जो है आप अगले 25-30 वर्ष में जो भी करेंगे वो विकसित भारत, देखिए याद रखिए कि हमारा 2047 का जो है विकसित भारत का लक्ष्य है जो प्रधानमंत्री ने हम सबके सामने रखा है। तो उन्होंने युवाओं को कहा कि आप अपने आप से पूछिए कि मैं देश के लिए इस विकसित भारत बनने की दिशा में मैं क्या योगदान कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, ये विकसित भारत के जो मजबूत जो बुनियाद है उससे पता चलता है, और ये जो मजबूत बुनियाद विकसित भारत का है ये आपको बनाना है। तो ये मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी युवा पीढ़ी के कंधों में आपने रखा है कि ये जो विकसित भारत बनेगा उसका बुनियाद जो है हमारे आज के युवा तैयार करेंगे। ये जिम्मेदारी, ये दायित्व बोध प्रधानमंत्री जी ने जो है उनको दिया है।
1: जी जी जी, सुरेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और इस विषय पर आपने चर्चा की, धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे आईआईटी दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री के संबोधन पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक केजी सुरेश, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निशित कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: सुर्खियों में
5: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हवाई नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। दिन का एक बजा चाहता है, आपसे चंद लम्हों के बाद आप आलमी खबरें सुनेंगे।
6: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से आलमी खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ने स्कारबोरो रीफ में कुदरती हयात का महफूज इलाका कायम करने की चीन की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कहा कि इससे फिलिपाइन के माहीगीरों की अपने रिवायती माहीगीरी के इलाकों तक रसाई महदूद हो सकती है। अमरीका ने नए इमिग्रेशन मंसूबे के तहत H-1B वीजा पर काम करने वाले अफराद 60 दिन की मोहलत से महरूम हो सकते हैं। यूक्रेन ने अमरीका के साथ अपने फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की माहाना फराहमी के सिलसिले में मुहिदा कर लिया है। और बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को कल अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस की जानिब से फोन कॉल मौसूल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने अहम शोबों में भारत और अमरीका के दरमियान जामे आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने आला सतही रवाबित में मुसलसल पेशरफ्त का जिक्र किया और तजारत, दिफा, अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, तवानाई की यकीनी फराहमी और अहम मादनियात के शोबों में तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने जनाब वेंस और उनकी अहलिया उषा वेंस को बेटे की पैदाइश पर मुबारकबाद दी और पूरे खानदान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने उन मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जाबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आजादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आज़ादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। उमूर खारजा के वजीर ममलिकत कीर्ति वर्धन सिंह ने कल अबिजान में कोटे DIR के सदर अलासेन अट्टावरे से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने भारत और कोटे DIR के दरमियान बढ़ती हुई शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया और अफ्रीका के साथ मजबूत और गहरे रवाबित कायम करने के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाने के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरक अज़्म का इरादा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब सिंह ने कहा कि वो भारत और कोटे DIR के दरमियान तवील अरसे से जारी दोस्ती को मजीद मजबूत बनाने और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तआवुन को वसअत देने के ख्वाहां हैं। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। اس سال کی مہم خاص اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ملک کے قومی گیت وندے

मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। अमरीका ने इस्कार बोरो रीफ में चीन की जानिब से कुदरती हयात का कौमी महफूज इलाका कायम करने की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका का कहना है कि इस इकदाम से फिलिपाइन के माहीगीरों की अपने रिवायती माहीगीरी के इलाकों तक रसाई महदूद हो सकती है, जैसा कि 2016 के सालिसी फैसले में भी उसको उजागर किया गया है। अमरीकी महकमे खारजा ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि चीन की जानिब से ये एक और एक तरफा कोशिश है, जिसमें मशकूक माहौलियाती और कानूनी जवाब पेश करते हुए ताकत के इस्तेमाल के जरिए जनूबी बहरे चीन में अपने वसी इलाकाई और बहरी दावों को अपने पड़ोसी ममालिक की कीमत पर आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि अमरीका अपने इत्तेहादी फिलिपाइन के साथ खड़ा है और एक आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खित्ते की हिमायत करता है। अमरीका उस शिक को खत्म करने पर गौर कर रहा है जो कुछ गैर मुल्की कारकुनों को अपनी मुलाजमत खोने के बाद नई मुलाजमत तलाश करने के लिए 60 दिन तक का वक्त देता है। यह तजवीज फिलहाल बंदोबस्त और बजट से मुतालिक व्हाइट हाउस के दफ्तर ओएमबी के जेर गौर है और इस सिलसिले में अभी तक कोई उसूल नहीं है। मुजवजा तब्दीलियों की तफसीलात मुकम्मल तौर पर अवामी तौर पर दस्तयाब नहीं है। इस तरह के इकदाम से H-1B हुनरमंद वर्करों और उनके जेर किफालत अफराद को तकरीबन फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने की जरूरत पड़ सकती है। अगर जाब्ते को हतमी शक्ल दे दी जाती है तो ये कुछ वर्करों और उनके जेर किफालत अफराद के लिए मौजूदा 60 दिन की रियायती मुद्दत को खत्म कर देगा। ये तब्दीली अमरीका में भारतीय तारिकीन वतन बिरादरी के लिए खास अहमियत की हामिल हो सकती है। भारतीय शहरी तवील अरसे से H-1B हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम से सबसे ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन ने अमरीका की दिफाई सामान तैयार करने वाली कंपनियों को ये हुक्म दिया है कि वो हथियार बनाने और इनकी फराहमी के अमल में तेजी लाएं, क्योंकि ईरान के साथ जंग की वजह से अमरीका के अहम असलहा ज़खायर कम हो गए हैं। इत्तला के मुताबिक नायब वजीर दिफा स्टीव फेनबर्ग ने एक मुरासले में दिफाई सनत के रहनुमाओं से कहा है कि वो इस सिलसिले में अपने मनसूबे पेश करने के लिए उनके पास 21 दिन का वक्त है। पेंटागन ने दिफाई सामान की पैदावार को सद देने की खातिर दिफाई सामान तैयार करने वाले बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ फ्रेमवर्क समझौतों पर भी काम किया है, लेकिन इन मुआहदों पर अमल करना लाजमी नहीं है और इनका इन्हिसार अमरीकी कांग्रेस की तरफ से सरमाया फराहम करने पर है। ईरान के सदर मसूद पेजिश्कियान ने कहा है कि ईरान अमरीका के साथ हाल ही में दस्तखत किए गए मुफाहमत नामे के तहत अमन के रास्ते पर चलता रहेगा, बशर्ते कि अमरीका एतमाद का माहौल कायम करने में ताउन करे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब पेजिश्कियान ने कहा कि इत्तफाकी राय कायम करने का यह बेहतरीन मौका है, क्योंकि मुल्क में यगांगत कुव्वत और इत्तेहाद मौजूद है। ईरान के सदर ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात के ताल्लुक से कहा कि अगर अमरीका अपने वादों पर अमल करता है तो ईरान भी इस तरह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। इससे कबल जनाब मसूद पेजिश्कियान ने अपने हुकूक के तहफ्फुज के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर चलने के ईरान के अहद का इरादा किया था और इस बात पर जोर दिया था कि ईरान को झुकने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। यूक्रेन ने पैट्रियट फिजाई दिफाई निजाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की माहाना फराहमी के लिए अमरीका के साथ एक मुआहदा किया है। बेलग्राद में सहाफियों से बात करते हुए यूक्रेन के सदर व्लादिमीर जेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की कि वाशिंगटन यूक्रेन को माहाना बुनियाद पर इंटरसेप्टर मिसाइल सप्लाई करेगा। तहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तादाद मुल्क के फिजाई निजाम की जरूरत को पूरा करने के लिए काफी नहीं है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निमटने की गरज से शंघाई के दो हवाई अड्डों ने 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है।
बैडमिंटन में कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में भारत की अश्मिता चालिहा ने खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है।

0: अस्मिता ने चीन के खिलाड़ी हान चियानशी को हराया। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस ने अहम शोबों में जाने आलमी स्ट्रेटजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ने इस कारबोरो रीफ में कुदरती हयात का महफूज इलाका कायम करने की चीन की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कहा कि इससे फिलिपाइन के माहीगीरों की अपने रिवायती माहीगीरी के इलाकों तक रसाई महदूद हो सकती है। अमरीका में नए इमिग्रेशन मंसूबे के तहत H-1B वीजा पर काम करने वाले अफराद 60 दिन की मोहलत से महरूम हो सकते हैं। और बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही आलमी खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीका के नायब सदर जे डी वेंस ने अहम शोबों में जामे आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। अमरीका ने स्कारबरो रीफ में कुदरती हयात का महफूज इलाका कायम करने की चीन की कोशिश को मुस्तरद कर दिया है। अमरीका ने कहा है कि इससे फिलिपाइन के माहीगीरों की अपनी रिवायती माहीगीरी के इलाकों तक रसाई महदूद हो सकती है। अमरीका में नए इमिग्रेशन मंसूबे के तहत H-1B वीजा पर काम करने वाले अफराद 60 दिन की मोहलत से महरूम हो सकते हैं। यूक्रेन ने अमरीका के साथ अपने फजाई दिफाई निजाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की महाना फराहमी के सिलसिले में मुआहिदा कर लिया है। और बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में खवातीन सिंगल का खिताब जीत लिया है। ये थी अब तक की अहम खबरों की सुर्खियां। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं। हमारी पहली मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। सहपहर 3 बजे आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

0: भाई ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, कब दे क्या दे उसका हिसाब नहीं। क्या खूब संदेश देता है फिल्म अवतार का ये गीत, जो आज हमने ली है आज की फिल्म एक ही फिल्म से में। कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और आप हैं अपनी रेडियो दोस्त तृप्ति जौहरी के साथ, और आगे बात करते हैं फिल्म की कहानी के बारे में। साथियों, फिल्म अवतार रिश्तों, त्याग और आत्मसम्मान की कहानी है। अवतार एक मेहनती और जिम्मेदार इंसान है। उसका सबसे बड़ा सपना है अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना और उन्हें जिंदगी में सफल बनाना। वो अपनी पत्नी राधा के साथ मिलकर बच्चों के भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक हादसे के बाद अवतार की शारीरिक स्थिति खराब हो जाती है और उसका काम करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन एक पिता के लिए उसकी अपनी तकलीफ से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है उसके बच्चों का भविष्य। वो अपने दर्द को भूलकर बच्चों के लिए संघर्ष करता रहता है। यही अवतार की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें बताती है कि माता पिता बच्चों को सिर्फ जन्म नहीं देते, वो अपनी पूरी जिंदगी उनके भविष्य के नाम कर देते हैं। तो फिल्म पर बातें जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ, वाह दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: जानकारी के बाद आइए फिर बात करते हैं आज की फिल्म अवतार के बारे में। राजेश खन्ना को हिंदी सिनेमा में लंबे समय तक रोमांटिक हीरो के रूप में याद किया गया, लेकिन अवतार में उन्होंने एक उम्रदराज संघर्षशील और भावुक पिता की भूमिका निभाई। उनकी आंखों में दर्द है, चेहरे पर मजबूरी है, लेकिन भीतर आत्मसम्मान अभी भी जिंदा है। अवतार का किरदार हमें ये महसूस कराता है कि उम्र बढ़ने के साथ इंसान की जरूरतें भले ही कम हो जाएं, लेकिन उसका सम्मान, अपनेपन की चाह कभी कम नहीं होती। और राधा के किरदार में शबाना आजमी ने भी बेहद संवेदनशील अभिनय किया। राधा अपने पति की सिर्फ पत्नी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।

साथियों, वक्त सचमुच गुजरता जाता है। बच्चे बड़े होते हैं, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं और माता पिता धीरे धीरे उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें अपने बच्चों की जरूरत सबसे ज्यादा होती है। अवतार और राधा ने अपने बच्चों के लिए जो कुछ किया था उसका उन्हें कोई हिसाब नहीं चाहिए था। वो बस चाहते थे थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान और अपनों का साथ। लेकिन परिस्थितियां बदलती हैं, बच्चों की अपनी दुनिया बन जाती है और एक दिन अवतार और राधा को महसूस होता है कि जिस परिवार के लिए उन्होंने अपना जीवन लगा दिया उसी परिवार में उनके लिए जगह कम पड़ रही है। ये फिल्म का सबसे दर्दनाक हिस्सा है क्योंकि सवाल सिर्फ घर से निकलने का नहीं है, सवाल है क्या अपने ही घर में माता पिता अपनेपन के लिए तरस सकते हैं। अवतार की सबसे बड़ी ताकत है उसका आत्मसम्मान। वो परिस्थितियों से लड़ता है लेकिन अपनी इज्जत से समझौता नहीं करता। यही फिल्म को एक अलग ऊंचाई देता है। अवतार हमें बताती है कि किसी इंसान की उम्र बढ़ जाने से उसका महत्व कम नहीं हो जाता, बल्कि शायद उस समय उसे हमारे साथ की जरूरत और ज्यादा हो जाती है।

साथियों, आज की फिल्म अवतार की हम आज बात कर रहे हैं एक ही फिल्म से कार्यक्रम में। फिल्म के संगीत को याद किए बिना अवतार की चर्चा अधूरी है। संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और गीत लिखे थे आनंद बख्शी ने। फिल्म के गीत कहानी के भावों को और भी गहरा करते हैं। खासकर गीत चलो बुलावा आया है, ये गीत आज भी सुनने वालों के मन में एक अलग भाव पैदा करता है। और गीत ऊपर वाले तेरा जवाब नहीं, किशोर कुमार की आवाज और आनंद बख्शी के सरल शब्द इस गीत को बेहद यादगार बना देते हैं। तो आपको इस फिल्म से जुड़े और कौन कौन से गीत अच्छे लगे और फिल्म की कहानी की कौन कौन सी रोचक बातें अच्छी लगी, हमें बताइए IP Radio Delhi@gmail.com पर।

और देखते ही देखते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुकी हैं बहुत सारी ईमेल। तो चलिए नाम ले लेते हैं हम अपने उन श्रोताओं का जिन्होंने भेजे हैं बहुत सारे मैसेजेस। तो बहुत सारे श्रोताओं ने रिपीट मैसेजेस भी भेजे हैं जिनके कारण शायद हम कुछ श्रोताओं के नाम ना ले पाए, तो मैं अभी से माफी मांगती हूँ उन सभी से। तो हमारे साथी हैं स्वर्ण सिंह, फारूक अली खान, संदीप मक्कड़, अनिल मोहन, संजय ढींगिया, भागवत वर्मा और जुड़े हैं बिट्टू गगनेजा, राजकुमार डूडी, धर्मेंद्र छिप्पा, सुदर्शन मुखी, राधेश्याम देवांगन, कमलकांत गुप्ता, आर कुमार, धर्मेंद्र छिप्पा और हैं प्रवीण। ये सभी साथी हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं। आप सभी ने ये कार्यक्रम सुना और अपनी प्रतिक्रिया भेजी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।

साथियों, 1983 की अवतार सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये माता पिता के त्याग की कहानी है, ये पति पत्नी के साथ की कहानी है, ये बदलते पारिवारिक रिश्तों की कहानी है और सबसे बढ़कर आत्मसम्मान के साथ जीने की कहानी है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम से अपनी दोस्त तृप्ति जौहरी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार। आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो तीन नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकेकार के जरिए मुकर्रर वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को दीगर मुकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वर्से का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों के हौसला अफजाई करना है। आजादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल की मुहिम खास अहमियत की हामिल है क्योंकि मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली में मजकूरा मुहिम के तहत लोकसभा से बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी सुराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलांजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी सुराज ने कहा कि इस बार का यौम आजादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आजादी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया है, जिसके दौरान पार्टी के ओहदेदार और कारकुन मुल्क के जाबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने उन मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जाबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आजादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधा कृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाइसे तहरीक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आजादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती।

0: उन्होंने आजादी के मौके पर मध्य प्रदेश में 124 कैदियों की सजा में नरमी की जाएगी। इनमें से उम्र कैद की सजा काटने वाले 118 कैदियों को जल्द रिहा कर दिया जाएगा, जबकि 6 दीगर कैदियों को खसूसी रियायत दी जाएगी। इन कैदियों के अच्छे तर्ज अमल और जाब्तों के मुताबिक काम करने के उनके रवैये की बुनियाद पर यह रियायत दी जा रही है। सरकार ने कहा है कि इस कदम से अच्छा तर्ज अमल इख्तियार करने के लिए दीगर कैदियों की भी हौसला अफजाई होगी। इसके अलावा रिहा किए गए कैदियों को माशरे के असल धारे में वापस आने का मौका मिलेगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के कवानीन की जगह मोदी सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं वो 3 अहम सुतूनों टेक्नोलॉजी, वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गौर रेमिडो में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही।
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मस्कूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एनआईए ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में जलाका और भद्रक में बैतरानी और सलांदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है, जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, आसाम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निमटने की गरज से शंघाई के 2 हवाई अड्डों ने 1300 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3,00,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। कल ये शदीद तूफान ताइवान की राजधानी ताइपे समेत मुल्क के शिमाली हिस्सों में पहुंचा था, जिसके सबब वहां तेज बारिश हुई। ताइवान की बाज हवाई कंपनियों ने भी चीन जाने वाली अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा ने आज सुह कोरिया मास्टर्स 2026 के खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन के खिलाड़ी हांग चियांगशी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर यह बावकार खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ ही आसाम की इस खिलाड़ी ने अपना पहला बीडब्ल्यूएफ टाइटल जीता। अश्मिता चलिहा ने 2024 की एशियाई टीम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया था। खास खबरें एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकेकार के जरिए मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला PWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय विद द मिड डे न्यूज। द हेडलाइंस, हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस विद मल्टीपल इवेंट्स अक्रॉस द कंट्री टू सेलिब्रेट पेट्रियोटिज्म एंड नेशनल यूनिटी। Prime Minister Amit Shah says three new criminal laws introduced by government are aimed at providing time-bound justice through technology-driven mechanism. NIA arrests one were accused in connection with seizure of huge consignment of illegal explosives in Mallappuram, Kerala. Fresh rains revive flood concerns in Odisha, with water level rising in several rivers. Alert issued for very heavy rainfall of Uttarakhand and Chhattisgarh today. In China, more than 1,300 flights cancelled and over 3 lakh people relocated ahead of Typhoon Dolphin. And in badminton, Ashmita Chaliha clinches her first BWF World Tour title at the Korea Masters 2026. The Har Ghar Tiranga campaign has been celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage. The campaign marks the fifth year of the Har Ghar Tiranga initiative, which began in 2022 and has since evolved into one of the country's largest public participation movements. The initiative is aimed at encouraging citizens to hoist the national flag and participate in activities celebrating patriotism, national unity and India's cultural heritage. This year's campaign holds special significance as it coincides with the 150th anniversary of India's national song Vande Mataram, bringing together the national flag and the national song in a unique celebration of patriotism. As part of the celebrations, mass singing of Vande Mataram will be organized across the country. Vice President C.P. Radhakrishnan today hoisted the national flag at the flag point in Sri Vijayapuram, the capital of the Andaman and Nicobar Islands, as part of the Har Ghar Tiranga campaign. On the occasion, he paid tribute to the brave freedom fighters. The Vice President also attended the state function, Tiranga Concert on Vande Mataram, held at the auditorium of Dr. B.R. Ambedkar Institute of Technology. In his address, the Vice President recalled the glorious history of the Andaman and Nicobar Islands associated with India's freedom struggle. He said this is the very land where freedom fighters endured severe torture and unimaginable hardships for the country's independence.
3: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Devas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
2: Mr. Radhakrishnan is on a two-day visit to the Andaman and Nicobar Islands. In Jammu and Kashmir, the spirit of patriotism will resonate across the Union Territory from today as all 20 districts launch a week-long series of programs under Har Ghar Tiranga Campaign 2026. The programs will continue till August 17th. Mass singing of Vande Mataram, Tiranga rallies, exhibitions, cultural programs and competitions will be organized across the Union Territory. Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi today paid tributes to all those who participated in the Quit India movement. In a social media post, Mr. Radhakrishnan said that they united the nation in the struggle for freedom, taking inspiration from Mahatma Gandhi's clarion call of do or die. In a social media post, the Prime Minister said, inspired by the leadership of Mahatma Gandhi, the clarion call of Quit India infused new energy into India's freedom struggle and reflected the unwavering determination of the people to break free from colonial rule. UN Home Minister Amit Shah said that the three new criminal laws introduced by the Modi government, replacing the colonial era laws, are based on three important pillars: technology, timeline and trust. He said this while participating in the presentation ceremony of the President's Police Colour to the Puducherry Police at the Police Training School ground in Garimedu.
1: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
4: अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिप्लेस द कॉलोनियल एरा पिनल कोड विद 3 न्यू भारतीय न्याय संहिताज रादर देन बीइंग पनिशमेंट ओरिएंटेड दिस न्यू लीगल कोड्स आर डिजाइन टू डिलीवर जस्टिस टू सिटीजंस व्हाइल रिमेनिंग टेक्नोलॉजिकली कैपेबल एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड अल्टीमेटली दिस 3 कोड्स रेस्ट अपॉन 3 कोर पिलर्स टेक्नोलॉजी टाइमलाइन एंड ट्रस्ट
1: टेक्नोलॉजी टाइमलाइन एंड ट्रस्ट ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है.
2: The National Investigation Agency NIA has arrested another accused in connection with the seizure of a huge consignment of illegal explosives in Mallapuram, Kerala. The agency informed that the accused was arrested yesterday from Manjeri in Mallapuram district. NIA said that the accused is a main conspirator and was involved in the illegal procurement of the explosives seized in the case. The latest arrest comes a day after the NIA arrested 3 more accused in the Vijayapura in Karnataka on Friday, taking the total number of arrests in the case to 10. The deadlock over alleged irregularities in the JPSC and the JSSC recruitment examinations continues in Jharkhand, with the third round of talks between the government and protesting student organizations underway in Ranchi. We have a report.
5: The third round of talks between the state government and protesting student representatives has begun at the state guest house in Ranchi. A four-member ministerial team is holding discussions with the students on their demands following 2 earlier rounds of talks. Meanwhile, JKLM MLA Jairam Mehto has begun a one-day hunger strike in support of the protesting students. He demanded a CBI inquiry into the alleged irregularities and said the chief minister should hold direct talks with the students. Ranchi MP and Union Minister Sanjay Seth also met the protesting students at the Jaipal Singh Munda Stadium and expressed support for their demands. He called for a CBI and ED inquiry, cancellation of the JPSC and JSSC examinations and compensation of 1 crore rupees each to the families of the 19 youths who died during the police constable physical test. The students, meanwhile, continue to press for concrete action and reforms in the recruitment examination system. Meanwhile, a medical team is also monitoring the health of students who have been on hunger strike during the prolonged agitation. All eyes are now on the outcome of the third round of talks and tomorrow's proposed assembly gherao. Mahesh Rahman, Akashwani News, Ranchi.
2: On the occasion of Independence Day, 124 eligible prisoners in Madhya Pradesh will get a reduction in their sentences. Of these, 118 prisoners serving life sentences will be released early. 6 other eligible prisoners will get special remission. The benefit will be given based on good conduct, disciplined behavior, and the prescribed rules. The government said this step will encourage other prisoners to maintain good behavior. It will also give released prisoners an opportunity to return to the mainstream of society. The Senate has agreed to lift 18 lakh metric tons of old grain stock lying in Punjab mandis by the 20th of next month to clear storage space for the state's expected bumper paddy crop. A correspondent reports that Punjab is expected to supply 170 lakh metric tons of good quality rice in the central pool this year. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall over Uttarakhand and Chhattisgarh for the day. Heavy rainfall is also expected over Rajasthan, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Assam and Meghalaya till tomorrow. The Met Department predicted that thunderstorms and lightning conditions will continue over Andhra Pradesh, Bihar, Jammu and Kashmir, Odisha and Andaman and Nicobar Islands during the next 2 days. Furthermore, the weather agency has forecast a spell of light rainfall towards evening in Delhi today. Flash rains have renewed flood concerns in Odisha, with several rivers rising again, even as many areas are yet to fully recover from the previous deluge. The Jalaka in Balasore and Betrani and Sarandi in Bhadrak are rising, while floodwater has been released through 12 gates of the Hirakud Dam in Sambalpur. With more rainfall forecast, authorities are closely monitoring river levels and vulnerable low-lying areas across the state. We have more from a correspondent.
6: Fresh incessant rainfall has renewed flood concerns in Odisha, with several flood affected areas facing the threat of further inundation. In Baleswar, the situation in Basta has again turned serious as the Jalaka river rises following heavy rain in its upper catchment areas of Mayurbhanj. Rain in Rasagovindapur, Suliapada, Morada and Chitrada has swollen the Jalaka river.

0: Korea Masters 2026. And with that, we end the Midday News.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए तीन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर 1300 से अधिक उड़ाने रद्द, 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और भारत की अश्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान आज से 17 अगस्त तक चलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी से हर घर तिरंगा अभियान यात्रा रवाना की। अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, रथ घर तिरंगा।
3: तिरंगा अभियान पूरे देश में देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने और भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जा रहा है। यह अभियान हर घर तिरंगा पहल का 5वां वर्ष है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी और तब से यह देश के सबसे बड़े जन भागीदारी आंदोलनों में से एक बन गया है। इस पहल का उद्देश्य देशवासियों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने और देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता तथा भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाने वाली गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ होने के कारण इस वर्ष का अभियान विशेष महत्व रखता है। यह अभियान देशभक्ति के एक अनूठे उत्सव में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गीत को एक साथ लाता है। उत्सव के हिस्से के रूप में पूरे देश में सामूहिक रूप से वंदे मातरम का गायन आयोजित किया जाएगा। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम स्थित फ्लैग पॉइंट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति ने डॉ बीआर आम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान के सभागार में आयोजित राजकीय समारोह वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी भाग लिया। अपने संबोधन में उपराष्ट्रपति ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के गौरवशाली इतिहास को स्मरण किया। उन्होंने 30 दिसंबर 1943 के उस ऐतिहासिक दिन को भी याद किया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पोर्ट ब्लेयर में तिरंगा फहराया था।
4: Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन 2 दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
5: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक जितने भी हमारे शहीद स्मारक है वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोकल RWAs MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृहमंत्री ने गोरेमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
6: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित पब्लिक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी टाइमलाइन और ट्रस्ट के 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
6: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन पोस्ट के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने यह बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
7: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। नवीश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से 4 उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री

0: पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अधिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चाचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियांग प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चाचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्यभर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
2: ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बास्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्तरा में बारिश से जलका नदी उफान पर है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता जबकि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। सामनी और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ विश्व

0: और खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक दोपहर के 2:30:20 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।
2: सोमो, वो कहानी सुना हो ना, और तुमने कहा था
3: कहानी।
2: हाँ,
3: कौन सी कहानी?
2: ओ, जब हरिप्रसाद किचड़ में गिर पड़ा था।
3: हाँ।
2: कहानी था ओ, ओ, लोमड़ी की क्या
3: लोमड़ी क्या वो वो लोमड़ी नहीं, गीदड़ की कहानी है वो।
2: ओ, सुना हो ना।
3: उतरो, उतर बैठ।
2: सुनाओ ना। मारते क्यों रहते हो हर वक्त?
3: और क्या, पैर नीचे रख, रख नहीं। कहानी सुननी या कि नहीं? तो ये दिया बंद करो। गीदड़ की कहानी। कौन सी कहानी?
1: सुनाओ ना। किस तरह से इस चुलबुली आवाज को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज की हमारी कलाकार हैं जानी मानी अभिनेत्री, और अपने अदाओं से, अपने अभिनय कला से हम सबका दिल जीतने वाली श्रीदेवी आज की हमारी हैं कलाकार। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अवनीश द्विवेदी का नमस्कार। जंगल

0: ये जो आप सुन रहे हैं श्रीदेवी और कमल हासन साहब की आवाज में, ये उनकी एक बहुत ही प्यारी सी दिल को छू जाने वाली फिल्म आई थी सदमा, उससे जुड़ा हुआ ये नगमा आप सुन रहे हैं।
1: किसने हुआ? चिंता नहीं बालिका। अच्छा कहानी कहाँ तक पहुंची?
2: सोमू गिर पड़ा।
1: सोमू नहीं,

0: कीचड़, सब कीचड़।
1: कुत्ते जब भौंक के भाग गए, कीदड़ की हांडी से निकले और धूप चढ़े जंगल पहुंचे, ऊपर से नीचे तक नीले।
2: अच्छा
1: हाँ, सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है।
2: मुझे पता है।
1: क्या पता है?
2: गीदड़।
1: चुप बुद्धू। कहाँ से आ गए? सब जानवर देखे डरने लगे, ये कौन है, कैसा जानवर है, दिखने में नीला दिखता है, अंदर से लाल भुचक्कड़ है। गीदड़ ने भी चालाकी की।
2: क्या किया?
1: मोटी आवाज में गुर्राया,
3: मैं राजा हूँ।
4: दोस्तों, श्रीदेवी ने अपने करियर की शुरुआत बचपन से ही कर दी थी। जी हाँ, बाल कलाकार के रूप में उन्होंने 1967 में एक तमिल फिल्म

शुरुआत की थी। और बॉलीवुड की अगर बात करें तो हिंदी फिल्मों में उन्होंने 1978 से एक फिल्म आई थी सोलहवां सावन। उस फिल्म के जरिए श्रीदेवी ने मुख्य अभिनेत्री के रूप में हिंदी सिनेमा में डेब्यू किया, लेकिन उन्हें असली जो पहचान मिली वो मिली 1983 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म हिम्मत वाला से, और इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। तो आगे बढ़ने से पहले क्यों ना इसी फिल्म से, यानी हिम्मत वाला फिल्म से किशोर कुमार साहब की आवाज में सुनाते हैं ये प्यारा सा नगमा।

देवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को शिव काशी तमिलनाडु में हुआ था। उनके बचपन का नाम श्री अम्मा यंगर अयप्पन था और उनके पिता अयप्पन जो कि वकील थे और उनकी माँ का नाम राजेश्वरी था।

अपने फिल्म करियर की शुरुआत उन्होंने केवल 4 वर्ष की उम्र से ही एक बाल कलाकार के रूप में किया था और नन्ही श्रीदेवी को मलयालम फिल्म पूर्ण बत्ता जो कि 1977 में रिलीज हुई थी और इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए केरला स्टेट फिल्म अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था।

जो कि अपने बेहतरीन डांस और शानदार अदाओं के माध्यम से दर्शकों के दिलो दिमाग पर जादू कर देती हैं। उन्होंने तोहफा, मिस्टर इंडिया, हिम्मत वाला, खुदा गवाह, चालबाज, नगीना और लम्हे जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। और सिर्फ हिंदी फिल्मों में ही क्यों, उन्होंने तो तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ जैसी बहुत सी भाषाओं की फिल्मों में काम किया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं लम्हे फिल्म में एक बहुत ही प्यारा सा ये गीत है, जो कि अनिल कपूर भी इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ थे, कभी मैं कहूं।

और ऐसे बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं और ये एक संदेश आया है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत निरंजन सौम्या और अविरल सिंह का। इन्होंने लिखा है कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है जो कि आप श्रीदेवी के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं और गीत तो हमारे दिलों को छू रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

अपने करियर में बहुत सारी सफलता हासिल की। उन्होंने इज्जत, दौलत और शोहरत बहुत सारा कमाया और कुछ तो ऐसे मकाम हासिल किए जिन्हें हासिल कर पाना आजकल की अभिनेत्रियों के लिए एक सपना सा है। और ऐसी ही दिग्गज अभिनेत्री का नाम था श्रीदेवी। उन्होंने हिंदी सिनेमा से लेकर के साउथ के सिनेमा तक कई भाषाओं में काम किया। लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीदेवी ने महज 15 साल की उम्र में अपने से लगभग 3 गुना ज्यादा उम्र वाले एक्टर के साथ पर्दे पर रोमांस किया था। जी हाँ, 55 साल के हीरो एनटी रामाराव थे जो कि साउथ फिल्मों के सुपरस्टार थे और उनके साथ हीरोइन का रोल प्ले कर रही थी श्रीदेवी और तब उनकी उम्र थी महज 15 साल की और अपने से लगभग 40 साल बड़े हीरो के साथ उन्होंने उस फिल्म में काम किया था। और मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ वो है 1979 में आई तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म वेटा गाडू। और इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ एनटीआर थे। लेकिन जो चर्चा सबसे ज्यादा हुई थी इस फिल्म के एक गाने को लेकर जिसमें श्रीदेवी ने अपने से 3 गुना बड़े सुपरस्टार एनटीआर के साथ एक गाने में रोमांस किया था। वहीं अगर हिंदी फिल्मों की बात करें तो हिंदी फिल्मों में भी श्रीदेवी ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया और एक फिल्म आई थी चांदनी जो कि अपने जमाने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी। और इस फिल्म का एक गाना मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं आज भी दर्शकों के दिलों को छू जाता है। तो आइए सुनते हैं इसी गाने को लता मंगेशकर की आवाज में।

0: बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं, दिलचस्प किस्से भी सुना रहे हैं और साथ ही दिल को भा जाने वाले गाने भी सुना रहे हैं। आपको उत्तम प्रस्तुतिकरण के लिए कोटि कोटि धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक और मैसेज आया है गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाले से, सोन सिंह, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह का। और इसके अलावा बहुत सारे मैसेज हमारे पास लगातार आ रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि कार्यक्रम का समय सीमित है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं कुछ और मैसेज आपके इस कार्यक्रम में शामिल करूं, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम का सिलसिला यूं ही रहेगा जारी। लेते हैं एक छोटा सा अल्प विराम।
1: आज तो पार्टी चाहिए, चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे,
2: आइडिया, यही करते हैं पार्टी,
1: पिज्जा पार्टी, ये चल अपना कार्ड और पिन दे।
2: मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें।
1: बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है, सुना नहीं, नो शेयरिंग।
2: आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम चल रहा है एक ही फिल्म से और एक ही कलाकार, माफ कीजिएगा, और आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी, और आज की हमारी कलाकार है श्री देवी। और श्री देवी की करियर की यादगार फिल्मों की अगर बात करें तो सदमा, मिस्टर इंडिया, नगीना, चालबाज, चांदनी और लम्हे हैं। इसके अलावा 1996 में उन्होंने फिल्म निर्माता बोनी कपूर से शादी कर ली थी और उसके बाद फिल्मों से एक लंबा ब्रेक ले लिया था। और फिर साल 2012 आया जब उन्होंने फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से पर्दे पर धमाकेदार और सफल शुरुआत की। और आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनाते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ये हवा हवाई सॉन्ग।

अवनीश भाई नमस्कार, कैसे हैं आप जी? मैं बहुत ही अच्छा हूं और उम्मीद है कि आप भी बहुत अच्छे होंगे। और ये संदेश आया है मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर का। इन्होंने लिखा है कि श्रीदेवी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है, आप उनके बारे में बहुत ही

इसी बीच एक और संदेश आया है हमारे रेगुलर लिसनर हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बेहद पसंद आ रहा है और बहुत बहुत आपको बधाई इतना शानदार कार्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए और साथ ही बहुत ही प्यारे से गाने सुनवाने के लिए। और एक और संदेश जल्दी से ले लेते हैं, ये आया है हमारे पास ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके समस्त परिवार के लोग। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं श्री देवी के बारे में और श्री देवी के अगर सम्मान की बात करें तो सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था और उनकी आखिरी फिल्म मॉम 2017 में आई थी और मरणोपरांत इस फिल्म में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार यानी नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला था। और उनके पारिवारिक जीवन की बात करें तो उनकी दो बेटियां हैं जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर। जाह्नवी कपूर भी एक अभिनेत्री है और उनकी कई फिल्में आजकल आ रही हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

श्रीदेवी को भारत की पहली महिला सुपरस्टार भी माना जाता है। उन्होंने मिस्टर इंडिया, चांदनी, सदमा, इंग्लिश विंग्लिश, मॉम, खुदा गवाह जैसी कई फिल्मों में यादगार अभिनय किया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा, उनके चेहरे की चमक और पर्दे पर मौजूदगी पीढ़ियों तक सराही जाएगी। फरवरी 2018 में उनका अचानक निधन हो गया, जिससे उनके फैंस के साथ साथ पूरे फिल्म जगत में बेहद लोगों को झटका लगा। उनकी विरासत आज भी आज के दौर के अभिनेताओं और अभिनेत्रियों को प्रेरित करती है।

0: दोस्तों,
1: इसी के साथ घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना होगा। तो अब अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत और आखिरी में सबना फिल्म से एक प्यारा सा नगमा आपको आपके लिए छोड़े जाते हैं। तो स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी का नमस्कार।

अभी आप एक हिंदी कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे अरुणेश द्विवेदी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366

मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है।

हुआ है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को दीगर मकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से। हर घर तिरंगा मुहिम आज से शुरू हो रही है और ये इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती विरसे का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आजादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है। इससे मुख्तलिफ खितों और तबकों के लोगों को भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरकीब मिलती है। दिल्ली में मस्कुरा मुहिम के तहत लोकसभा से बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के मेमोरियल पर अकीदत के फूल नजर किए और इसके बाद पिलांजी विलेज से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा बांसुरी स्वराज ने कहा कि इस बार का यौम आजादी खास तौर पर अहमियत का हामिल है क्योंकि ये भारत का 80वां यौम आजादी होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज से एक हफ्ता तवील मुहिम का आगाज किया है जिसके दौरान पार्टी के अहदेदार और कारकुन मुल्क के जांबाजों और शहीदों के मेमोरियल पर जाएंगे। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत मरकज के जेर इंतजाम इलाके के सभी 20 जिलों में हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो रहा है। इस साल की मुहिम खास अहमियत की हामिल है क्योंकि मुल्क के कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल भी मुकम्मल हो रहे हैं। इस तरह कौमी परचम और कौमी गीत के साथ हुब्बुल वतनी का एक मुनफरिद जश्न मनाया जा रहा है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने उन मुजाहिदीन आजादी को खिराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जाबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आजादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खिराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाइसे तहरीक रहेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आजादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौ आबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की अब एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया कि मस्कुरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाका खेज मादों को गैर कानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविज था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एनआईए ने जुमे को कर्नाटक में विजयपुरा से 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा अगले चंद रोज तक पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से मुअत्तल रहेगी। हालिया बारिश, यात्रा के रास्ते पर बहाली के काम और खराब मौसम की पेशगोई के तनाजुर में यह यात्रा आरजी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। ये खबरें आकाशवाणी से नष्ट की जा रही हैं। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए हैं। बालासोर में जलाका और भद्रक में बैतारानी और सलांदी दरियाओं में पानी चल रहा है जबकि संबलपुर में हीराकुट डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। रियासत में मजीद बारिश की पेशगोई के पेश नजर हुक्काम इंतहाई चौकसी बरत रहे हैं और सूरत हाल पर कड़ी नजर रखे हुए हैं।

0: पंजाब में आज सुबह सरन जीटी रोड पर एक कार से टकरा जाने के नतीजे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गए। ये कांवड़िये उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा वापस जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निपटने की गरज से शंघाई के दो हवाई अड्डों ने अपनी 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि हुकाम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया है। कल ये शदीद तूफान ताइवान की राजधानी ताइपेई के समेत मुल्क के शुमाली हिस्सों में पहुंचा था जिसके सबब वहां तेज बारिश हुई। ताइवान की बाज़ हवाई कंपनियों ने भी चीन जाने वाली अपनी परवाजें मनसूख कर दी हैं। अमरीकी महकमा दिफा पंटागन ने अमरीका की दिफाई सामान तैयार करने वाली कंपनियों को यह हुक्म दिया है कि वो हथियार बनाने और इनकी फरामी के अमल में तेजी लाएं, क्योंकि ईरान के साथ जंग की वजह से अमरीका के अहम असलाह जखायर कम हो गए हैं। इतलात के मुताबिक नायब वजीर दिफा स्टीव फिनबर्ग ने एक मुरासले में दिफाई सनअत के रहनुमाओं से कहा है कि इस सिलसिले में अपने मनसूबे पेश करने के लिए उनके पास 21 दिन का वक्त है। पेंटागन ने दिफाई सामान की पैदावार को वसत देने की खातिर दिफाई सामान तैयार करने वाले बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के साथ फ्रेमवर्क समझौतों पर भी काम किया है, लेकिन उन वायदों पर अमल करना लाजमी नहीं है और इनका इन्हिसार अमरीकी कांग्रेस की तरफ से सरमाए फराहम करने पर है। ईरान आबनय हुरमुज खोलने से पहले अमरीका से रियायतों का मुतालबा कर रहा है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाकर जुलकद्र ने अमरीका के लिए मुतालबात की एक फहरिस्त जारी की है जिसे पूरा करने के बाद ही ईरान आबनाए हुरमुज को दोबारा खोलेगा। सरकारी मीडिया के मुताबिक इस फहरिस्त में अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म करना, अमरीकी फोर्सेस को वापस बुलाना और जंग को पूरी तरह खत्म करना शामिल है। कौमी सलामती के सरबराह ने अमरीका से लड़ाई के बायस ईरान को होने वाले नुकसान का मुआवजा देने और ईरानी साजिश जारी करने का भी मुतालबा किया है। यूक्रेन ने पैट्रियट फजाई दिफाई निजाम के लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की महाना फरामी के लिए अमरीका के साथ एक मुआहदा किया है। बेलग्रेड में साफियों से बात करते हुए यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर जेलेंस्की ने इस बात की तस्दीक की है कि अमरीका यूक्रेन को महाना बुनियाद पर इंटरसेप्टर मिसाइल सप्लाई करेगा। तहम उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह तादाद मुल्क के फजाई दिफाई निजाम की जरूरत पूरा करने के लिए काफी नहीं है। जनरल जेलेंस्की ने कहा कि 2026 में यूक्रेन को मिलने वाले इंटरसेप्टर मिसाइलों की तादाद साल 2025 के मुकाबले काफी कम होने का इम्कान है। अलबत्ता उन्होंने इस मखसूस तादाद के बारे में नहीं बताया। यूक्रेन के सदर ने कल सर्बिया का एक तारीखी और पहला दौरा किया ताकि उसके साथ तआवुन को वसत दी जा सके। सर्बिया के रहनुमा हालिया वर्षों में रूस के साथ अपने पहले से करीबी ताल्लुकात को महदूद करते जा रही हैं। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिया ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी हान शियान छी को 14-21, 21-14, 21-14 से हराकर ये बावकार खिताब हासिल किया। अश्मिता चलिया ने 2024 की एशियाई टीम चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया था। इसके अलावा उन्होंने 2019 के जनूबी एशियाई खेलों में भी खवातीन सिंगल्स और टीम मुकाबलों में सोने के तमगे जीते थे। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को दीगर मकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिया ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। मेरी पसंद सुन लीजिए। इस प्रोग्राम में कुछ फिल्में अपनी समाप्त कीजिए।

गारो, आपने इस फिल्म का नगमा सुना सुमन कल्याणपुर की आवाज में? मुसिकार थे एस एन त्रिपाठी। आप सुनिए फिल्म जिद्दी से ये नगमा, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: किया जाए, और यही वजह है कि उनके ड्रामे हर एतबार से सही, माकूल और कसे बंधे हुए होते हैं।
1: हश्र के किरदार बड़े सरकश और जाबाज होते हैं। परेशानी, दुख, तकलीफ और मुसीबतों से वो घबराते नहीं, बल्कि इन हादसात से उनके हौसले और भी बुलंद होते हैं और वो चट्टान की तरह मजबूत हो जाते हैं। वो जमाने के सामने कभी घुटने नहीं टेकते, बल्कि जमाने की गर्दिशों का आखिरी दम तक मुकाबला करते रहते हैं और सख्त जुल्मों तकलीफ की हालत में भी चिरागे उम्मीद रोशन किए रहते हैं।
0: उनके ड्रामे खूबसूरत बला में तौफीक का किरदार मिसाल के तौर पर पेश किया जा सकता है। वो मजबूर और बेबस है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता, दबता नहीं, क्योंकि उसे मालूम है कि वो सही रास्ते पर है। वो निडर होकर गरजता है,
2: जिल्लत की पुतली, तुझे कौन औरत कहता है? औरत वो है जिसमें रहम हो, शर्म हो, सच्चाई हो, बावफाई हो, पारसाई हो, जिसने फरिश्तों की तीनत और हूर की असमत पाई हो। तू कभी औरत नहीं हो सकती। जिस तरह तूने मासूम शहजादी का दगा से हक छीना है, उसी तरह औरत के नाम पर भी जबरदस्ती कब्जा कर लिया है।
0: बात आगे बढ़ने पर वो कहता है,
2: दिल का जोश ऐसे डरावे से कहीं घटता नहीं, मोम से पंजाए फौलाद कहीं दबता नहीं। मत समझ दिल से मेरे जहरे दगा निकलेगा, चीर कर देख शराफत से भरा निकलेगा। रोए रोए के जुबान पर ये सुखन जारी है, जान प्यारी नहीं दुनिया में, वफा प्यारी है।
0: आपने सुना कितना बाहिम्मत और बाहौसला किरदार था तौफीक का। जंजीरों में जकड़ा हुआ है, मौत उसके सामने है, बेबस है, मजबूर है, लेकिन बुजदिली नहीं दिखाता, जालिम से डरता नहीं, अपनी नेकी की कुव्वत से सर बुलंद किए खड़ा रहता है। और बजाय इसके कि वो शमसा की बात को मान ले और गुनाह की दलदल में फंसे, खुद शमसा को ही नेकी की राह की तरफ मुड़ने के लिए समझाता है।
1: इस ड्रामे के एक और किरदार ताहिरा को देखिए। ताहिरा तौफीक की बीवी है। वो औरत है, लेकिन अपने अंदर मर्द से कम हिम्मत नहीं रखती। वो भी तौफीक के साथ सारे मसाइल का सामना करती है, यहां तक कि तौफीक के मर जाने के बाद भी उसके हौसले पस्त नहीं होते, बल्कि वो तनहा तमाम मुसीबतों को झेलती है और उन मुश्किलों से निकलने के लिए जतन करती रहती है।
3: अरे तू क्या, तमाम दुनिया के शैतान मिलकर आए तो भी सुहेल तो क्या, उसका एक नाखून भी यहाँ से न ले जाने पाए।
1: फिर वो आगे कहती है,
3: अरे कोड़े क्या, तू मौत के शिकंजे में खिंचवा दे, सर तन से उड़ा दे, जला दे, मिटा दे, सर कटा दे, नहीं मुमकिन जबा उसका पता दे।
1: आगा हश्र से पहले जो ड्रामे लिखे जाते थे वो सिवाय बनावटी किस्सों के और कुछ नहीं होते थे, लेकिन हश्र ने एक बड़ा काम ये किया कि ड्रामे को जिंदगी से करीब कर दिया। उनके शुरू के ड्रामे तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन बाद के ड्रामे और खास तौर से आजादी के बाद के ड्रामे तो जिंदगी और समाज के मसाइल की भरपूर अक्कासी करते हैं।
0: मसाइल के ड्रामे के साथ हश्र ने एहसासात के ड्रामे भी लिखे हैं, जिनमें किरदार मोहब्बत, नफरत, एतमाद की कमी और आला मकसदियत जैसी चीजों में उलझा हुआ नजर आता है। मिसाल के तौर पर उनके ड्रामे सिल्वर किंग और तुर्की हूर के किरदार अफजल और आरिफ दोनों एतमाद की कमी का शिकार हैं और अपनी बीवी की वफा पर शक करते हैं।
4: मैयार में खड़े होकर तुम्हारी और अफसर की गुफ्तगू का एक एक हर्फ सुना और हर हर्फ पर उसके लिए मेरी जबान से अफसोस और तुम्हारे लिए आंखों से आंसू टपक पड़े।
5: भाई मुनीर, माफ करना, अफजल के हुक्म के बगैर मैं तुम्हारी हमदर्दी का शुक्रिया अदा करने के सिवा और कोई गुफ्तगू नहीं कर सकती।
4: आह परवीन, तो इस कदर नाशनाज आदमी से डरती है। ये अफसर जो शादी से पहले तुझे जान देता था और अब परवाह भी नहीं करता, उसका इस कदर खौफ करती है। अफसोस, कैसी नेक बीवी और कैसा बुरा शौहर।
5: बस मुनीर, मेरे कानों को गुनहगार ना करो। मैं ऐसा कोई भी लफ्ज जिससे मेरे अफजल की हतक हो कभी नहीं सुन सकती। हमारे दर्द का दरमा, हमारे दुख का

0: चारा है, भला है तो हमारा है, बुरा है तो हमारा है।
1: परवीन, मेरे अल्फाज जो हमदर्दी के जोश में मेरी जबान से निकल गए, अगर तुम्हारे रंज का वायस हुए हैं तो तुम्हें माफी मांगता हूँ।
0: बहन अपने आली हौसला भाई की माजरत का शुक्रिया अदा करती है।
1: ये क्या मनीर और परवीन, मेरा पुराना रकीब और मेरी बीवी खूब मेरे अदाला के सामने शराय मलाल कर रहा है, फरार शरी के आगे अर्ज हाल कर रहा है।
2: वाह मनीर, वाह
3: भाई,
2: बहुत खूब।
3: मुझे माफ करना कि तुम्हारी गैर हाजिरी में।
2: माफ मेरे दोस्त, माफी मांगने की क्या जरूरत है, इजहार नदामत बेकार है। तुम जैसे शरीफों को हर एक औरत के बहकाने का इख्तियार है, जो कुछ हो रहा है होने दो होने दो।
0: मेरे सरताज, ये क्या कहते हो? मुनीर तो मुझसे इस तरह बातें कर रहा था जिस तरह एक भाई बहन से गुफ्तगू।
2: मैं तुम्हारे भाई को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, आज से नहीं बल्कि मुद्दतों से पहचानता हूँ।
3: अफजल, पहले बात को तोलो फिर बोलो, तुम इन लफ्जों से मेरी शराफत पर हमला कर रहे हो।
2: शराफत? तेरे जैसा पाजी और शराफत।
3: अफजल,
2: एक वक्त था जबकि तुम, मैं और असद, ये तीन शख्स इसकी पसंद को जीतने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें मैंने फतह पाई और तुम दोनों ने शिकस्त खाई। अब उस शिकस्त का बदला इस तरह लेना चाहता है कि मेरी घर हाजिरी में मेरी बीवी को मेरी तरफ से बहका।
3: शराब ने तुम्हें आधा पागल तो पहले ही बना रखा था, अब पूरा पागल साबित करना चाहती है।
2: बस हराम जादे कमीने, बगैर एक लफ्ज बोले यहाँ से चला जाओ।
3: वरना क्या होगा?
2: वरना इसका जवाब मेरी लाते होंगी।
3: तो इसका जवाब मेरे घूसे देंगे।
2: इसका जवाब ये पिस्तौल देगा।
3: जा जा पागल कुत्ते, किसको डराता है?
2: ये पिस्तौल अभी तुझे मजा चखाता है।
4: आगा हश्र कश्मीरी ने अपने ड्रामों में जो किरदार पेश किए हैं, वो चाहे समाज के जिस तबके से ताल्लुक रखने वाले हों, मगर अपने अंदर भरपूर खसूसियतें रखते हैं। सफेद खून में खाकान अपनी साफ गो बेटी को आख करके अपनी सारी जायदाद दो खुशामद परस्त और रियाकार बेटियों में तकसीम कर देते हैं, और बाद में जब दोनों उनके साथ गलत सलूक करती हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो पछताते हैं। इस पछतावे के शदीद जज्बे को खाकान के किरदार में बहुत ही खूबी से ढाला गया है। अपनी बेटियों से धोखा खाने के बाद वो शदीद नफरत के लहजे में उनसे मुखातिब होते हैं।
5: जबरदस्ती, अस्तग़फिरुल्लाह, लाओ लाओ हमारे घोड़े लाओ, कुल खादमाने दरगाह को बुलाओ, जा ए नाशुदनी दूर हो, मैंने तुझे आग किया, तू मेरा खून नहीं बल्कि वो जंग है जो लोहे के दिल में बैठकर उसके जिगर को काटता है। तू मेरी औलाद नहीं बल्कि वो सांप है जो सबसे पहले अपने पालने वाले को काटता है। क्या नमक हलालों को जहर खिला दूं, गरीबों को सजा दूं? क्यों, किस लिए? क्या इन जर्रो जवाहर के लिए जो भूख के वक्त खाकर तेरा पेट नहीं भर सकते? क्या इन जरी के चीथड़ों के लिए जो बाद मरने के तेरे कफन के काम भी नहीं आ सकते?
4: इसके बाद के मुकालमों को देखिए।
5: हाय जरा, हाय जरा, जरा से कसूर पर, सिर्फ इतने ही कसूर पर कि वो सच बात क्यों बोली? मुझ कम वक्त ने रास्त बाज जरा का हक छीन लिया और इस नाखलफ और झूठ की पुतली पर कुर्बान कर डाला। ओ बारी ताला, अगर तेरा यही इरादा है कि ये कमबख्त फूले फले, तो अपने बंदे पर रहम कर और इस मगरूर मरूना को कारों की तरह इस मकान में गाड़ दे।

0: जहर उगलते हुए कितनी खूंखार नजर आ रही है। वो कहती है,
1: ये कामी प्रकाश कितने झूठे और निर्लज्ज हैं। अखबारों में, लेक्चरों में, समाज में, सिनेमा में, थिएटर में, सब जगह हम वेश्याओं को बाजार की घृणित कुतिया कहते हैं और फिर एक झूठी मुस्कुराहट के लिए इस कुतिया को हृदयेश्वरी और सुंदरी कहकर अपना थूका हुआ आग चाटते हैं। ज्यों ज्यों ग्लास भरता जाता है, बोतल खाली होती जाती है। जुगल ठहर जा, मैं इस बोतल की तरह तेरे घर को भी धन और सुख से खाली कर दूंगी।
0: आगा हश का ख्याल है कि तवायफ सिर्फ तवायफ नहीं होती बल्कि एक औरत भी होती है जो उसके अंदर कहीं पर छुपी होती है। एक तवायफ सिर्फ बेहयाई और जलालत की पुतली नहीं होती बल्कि उसके अंदर मोहब्बत, नेकी और निस्वानियत का भी जज्बा होता है जो दिखाई नहीं देता। उन्होंने अपने ड्रामे बिलवा मंगल में तवायफ के एक ऐसे ही किरदार को पेश किया है जिसे सुन या देखकर उससे नफरत नहीं बल्कि उसके लिए प्यार और हमदर्दी का जज्बा उभरता है, क्योंकि वो उन औरतों और मर्दों से कहीं ज्यादा अजीम नजर आती है जिन्हें समाज में ऊंचा मर्तबा हासिल होता है। तवायफ चिंतामणि अपने जाल में फंसे हुए बिलवा से फायदा नहीं उठाती बल्कि उसे समझा बुझाकर घर भेजने की कोशिश करती है।
1: बिलवा मंगल, सोचो और इंसाफ करो। एक हिंदू अबला जो खाविंद के घर को अपना मंदिर और खाविंद की मोहब्बत को अपनी पूजा और खाविंद की खिदमत करते करते मर जाना अपनी मुक्ति समझती है, ऐसी मोहब्बत वाली पतिव्रता बीवी को अंधेरे घर में रोते बिलबिलाते छोड़कर उस कुत्ते की तरह जो लजीज नेमते छोड़कर एक हड्डी की तरफ दौड़ता है, अंधेरी रातों में हम रंडियों के पीछे चोर और डाकू की तरह फटकते फिरना क्या बुरा काम नहीं? क्या खाविंद का बीवी पर हक है और बीवी का खाविंद पर कोई हक नहीं?
0: आपने सुना, तवायफ होकर भी चिंतामणि अपने अंदर कैसा दर्दमंद दिल रखती है। आगा हश्र काश्मीरी मजहबी ख्यालात के आदमी थे, चुनाचे उन्होंने अपने ड्रामे में भी ऐसे किरदार पेश किए हैं जो अपने मजहब पर ऐसे अटल है जैसे कोई चट्टान।
2: कौन है बेअदब?
3: तेरी मौत ना फरजाम, क्या नहीं सुना रुस्तम जंग का नाम?
2: कौन? रुस्तम जंग?
3: हाँ, क्या हूं? क्या ख्याल आया जो बदन थर्राया?
2: तो क्या मेरी जान लेगा?
3: अगर एक बात मेरे जी में ना आती तो तेरी नींद रोजे हश तक न खुलने पाती। वो बुलबुल है जो सोतों पे वार करते हैं, जो शेर हैं वो जगाकर शिकार करते हैं।
2: हैरत, ताज्जुब, रहम, दुश्मन पर रहम।
3: हैरत का कौन सा मुकाम है? रहम तो बहादुरों का एक अदना काम है। ईमान यही, आन यही, शान यही है। दुनिया में जवामल की पहचान यही है।
2: हैं? जब कत्ल करना नामंजूर था तो फिर यहाँ आना क्या जरूर था?
3: मैं जो तलवार या छुरी से मारने नहीं आया था बल्कि तेरे हल्क में नसीहत का जहर उतारने आया था।
2: मगर नसीहत से मुल्क को दौलत हुसूल हो तो एक बार नहीं बल्कि हजार बार कबूल हो, वरना जब तक रहे इंसानों में मक्कार रहे उसी की इज्जत है जो इस दहर में जरदार रहे।
3: दानाइयत से है सनोसाल से नहीं, जरदार दिल से होता है कुछ माल से नहीं।
2: खैर, जब माने ही नहीं हम तो मनाने से फायदा, सीखते ही नहीं हम तो सिखाने से फायदा। जान मेरी तुमने बख्शी है, जिक्र इसका अब करो, मांगो जो मांगना है, जो चाहो तलब करो।
3: मैं तुझसे दो चीजें मांगता हूँ, जुल्म से इंसाफ, रहम और इंसाफ।
2: इन फूलों की इस बाग में बुबास नहीं, इन दोनों में से कोई भी मेरे पास नहीं।
0: यहूदी की लड़की में उन्होंने अजरा नाम के एक ऐसे किरदार को पेश किया है जिसमें मजहबियत कूट कूट कर भरी हुई है और खुदा और मजहब पर पुख्ता यकीन की वजह से उसका दिल निडर है और हौसला बुलंद है।
4: कसम खाओ और साफ साफ बताओ, तुम नजर आते हो अक्सर मुझको घबराए हुए, फिक्र के बादल है तुम पर इस कदर छाए हुए।
5: प्यारी, मैंने भी तुम्हें इसीलिए यहाँ आने की तकलीफ दी है कि खुले लफ्जों में अपनी हकीकत आश्कारा कर दूं। मेरे होठों पे शहद और जहर कातिल का छुपा दे में तुम्हारा रूई में हो जिस तरह यूं थी तगा दिल में, हकीकत को नजाहिर आज तक होने दिया मैंने।

0: मेलिचा, माफ करना तो कह तुमको ठगा मैं।
1: ओ खुदा, क्या तुमने मुझे ठगा, धोखा दिया, मुझे दामी मोहब्बत में फंसाया?
0: हाँ प्यारी, हकीकत यह है, मेरा गुमान अलग है, मेरा यकीन अलग है, तेरा दीन अलग और मेरा दीन अलग।
1: तो क्या तुम हमारे हम मजहब नहीं हो?
0: नहीं, मैं तुम्हारे दुश्मनों की डाली हुई बुनियाद हूँ, रोमन खून और रोमन बात की औलाद हूँ।
1: तुम यहूदी नहीं हो?
0: नहीं।
1: तो तुम यहूदी बनने को किसने कहा?
0: तुम्हारी दिल फरेब सूरत ने।
1: तुम एक यहूदी लड़की से मोहब्बत करने की जुर्रत किसने दिलाई?
0: तुम्हारी मोहब्बत
1: नूर मीनार, शरबत में कफे मार, जहरीला सांप और गले का हार, क्यों उलझता अपना दामन गरना फंसती फूल में, मुझको क्या मालूम था कांटा छुपा है फूल में।
0: धोखा नहीं प्यारी राहिल, धोखा तो उस वक्त होता जब मैं तुम्हारे खूबसूरत होने से इनकार कर देता या तुम्हें छोड़कर किसी और को प्यार करता। यहूदी हूँ कि रोमन हूँ, मैं नूरी हूँ कि नारी हूँ, कोई हूँ कुछ भी हूँ, पर तेरी सूरत का पुजारी हूँ।
1: मगर अब तुम इस सूरत की तरफ देखने का कोई हक नहीं रखते।
0: क्यों, आखिर किस वजह से इनकार है, किस लिए जी बेजार है?
1: इस दिल पर मेरा कब्जा है, लेकिन इस हाथ पर मेरे बाप का इख्तियार है।
0: मगर तुम्हारा बाप तो मुतासिब यहूदी है, क्यों कर अपनी लड़की का हाथ एक रोमन के हाथ में लेने को तैयार होगा? ऐसी मोहब्बत और ऐसी शादी का कैसे रवादार होगा?
1: फिर मैं क्या कर सकती हूँ?
0: प्यारी राहिल, तुम चाहो तो सब कुछ कर सकती हो। मेरी जान के लिए अपने बाप को छोड़कर मेरे साथ निकल चलो, हम दूसरे शहर में पहुँच कर निकाह पढ़ा ले और फिर वापस आ जाएंगे। मरीज इश्क की इस तरह ईद हो जाए, तमाम उम्र को राहत नसीब हो जाए।

0: राही, अगर तुम्हारा बाप तुम्हें बचाने के लिए तुमसे कोई दरख्वास्त करे तो क्या तुम मंजूर करोगी?
1: दिलो जान से।
0: अजरा, तुम अपनी लड़की को मौत के पंजे से बचाना चाहते हो?
2: जी, दिल और ईमान से।
0: तो इसे इजाजत दो कि ये अपना मजहब छोड़कर हमारे मजहब में शामिल हो और इसके साथ तुम भी हमारे दीन में दाखिल हो।
3: हरगिज नहीं, अपनी बच्ची के बचाने को और सब कुछ करने को तैयार हूँ, मगर अपना प्यारा मजहब छोड़ने से लाचार हूँ।
0: कम समझ, अपनी घर जान है तो सब कुछ है,
3: अपना ईमान है तो सब कुछ है,
0: अपना इम्कान है तो सब कुछ है,
3: अपना यजदान है तो सब कुछ।
0: अजरा अजरा, ये मेरी मेहरबानी है कि मैं इस वक्त तेरी जान बचाने को तैयार हूँ, वरना तू जानता है कि मैं यहूदियों की सूरत तक से बेजार हूँ।
3: और ये उसी बेजारी और नफरत का नतीजा है कि कुदरत ने तुम्हारा गुरूर तोड़ दिया है, तुम्हारा घर बार बीवी बच्चे सब कुछ तुमसे छीन कर तुम्हें इस दुनिया में तनहा जलने और कुड़ने के लिए छोड़ दिया है।
2: मेरी पिछली जिंदगी के वाकयात तू कैसे जानता है?
3: बेदर्द रामन, अदराज से नहीं तुझे 16 बरस से पहचानता है।
0: मैंने तेरी कौम के साथ जो सुलूक किया वो उसकी मुस्तहक थी, मगर इस वक्त मेरी मेहरबानियों को देख तो मैं तुझे सरासर मुजरिम पाता हूँ और फिर भी तेरी जान बचाता हूँ।
3: मुझे अब जान की परवाह नहीं, अलबत्ता आरज़ू है कि मरने से पहले एक पुरफन कातिल रोमन का सारा कस्बा निकाल दूं, उसके पत्थर जैसे कलेजे में चुटकियां ले लेकर छाले डाल दूं, मैं हंसता और कलेजा थाम कर रोता हुआ तू हो। मेरी आंखों में नफरत और तेरी आंखों में आंसू हो।
0: मैं तुझे सख्त बेवकूफ पाता हूँ।
3: मैं तुझे आज से 16 बरस पेश तक का वाकया याद दिलाता हूँ, जब शाहीरों के हुक्म से तमाम रोमा में हसरफात भड़की थी। उस वक्त तेरे घर में एक खूबसूरत बीवी और बीवी की गोद में 6 महीने की लड़की थी।
0: इस बात के याद दिलाने से तेरी क्या मुराद?
3: मैं पूछता हूँ कि उन दोनों के आग में चलने का वाकया तो तुझे खूब याद है?
4: मैं उस दिन को जब मौत ने मेरी बीवी और मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया कभी नहीं भूल सकता। अभी तक गम से कुड़ता है, अभी तक याद करता है, मेरा टूटा हुआ दिल लाज तक फरियाद करता है।
3: तुम्हारी बीवी जरूर इस आग में जलकर मर गई, मगर बच्ची
5: तो क्या वो जिंदा है? उसे किसने बचाया?
3: खुदा के कुदरत ने।
5: किसने आग से निकाला?
3: एक रहम दिल यहूदी के हाथ में।
5: वो कौन है?
3: नहीं बता सकता।
5: उसका नाम?
3: नहीं बता सकता।
5: उसका ठिकाना?
3: नहीं बता सकता।
5: नहीं नहीं जसरा, तुझे बताना होगा।
3: हरगिज नहीं, ये मेरा राज है जो जिंदगी का तमसाज है।
5: नहीं अजरा, बता दे अजरा, मुझ पर रहम कर।
3: रहम, आज पहला रोज है कि रहम का लफ्ज तुम्हारी जबान पर आया। अब तुम्हें मालूम हुआ कि रहम की जरूरत मजलूम यहूदियों को नहीं जालिम रोमनों को भी हुआ करती है। हाँ, जाओ जाओ, रहम मांग कर लाओ अपनी कौम से, अपने बादशाह से। क्या किया है उम्र भर जो रहम की सौगात आए, बीज ही बोया नहीं तो फल कहां से हाथ आए।
5: बता दे अजरा, बता दे, मैं तुझसे अपने पिछले कसूरों की माफी चाहता हूँ।
3: क्यों? कैसा झटका लगा जब अपनी मुसीबत आई तो कितनी जल्दी गर्दन झुकाई। जब तुमने तर्स खाने से इनकार किया था, अब मैं रहम करने से इनकार करता हूँ।
0: तो क्या इनकार?
3: 1000 बार
0: नहीं बताएगा?
3: नहीं।
0: नहीं रहम करेगा?
3: नहीं नहीं नहीं।
0: अच्छा, नहीं तो ना सही, अब मैं भी जबरदस्ती तेरे सीने से ये राज निकलवाऊंगा, तेरी एक एक बोटी का कीमा बनवा कर अपने कुत्तों को खिलाऊंगा। जाओ ले जाओ, जला दो, फूंक दो, झगड़ा ही सारा पाक कर डालो, सदर के साथ ही इस का समर भी खाक कर डालू, रखो इसे भी वही जिस जगह पे आप रहे, अभी जमीन पर बैठी रहे न बाप रहे। ले जाओ इनको उठाकर तेल के खौलते हुए कढ़ाओ में डाल दो।
5: चंद मिनट बता राहील, तू दुनिया और दीन दोनों में से किस चीज को पसंद करती है बेटा?
1: अब्बा जान,
5: बेटा
1: दीन को।
5: हाँ शाबाश शाबाश मेरी नूरुलैन, शाबाश। ये आग तेरे वास्ते बागे खलील हो, ये मौज नार तेरे लिए मौज नील हो।
6: आगा हश्र कश्मीरी अपने अहद के अजीम तरीन ड्रामा निगार थे। अपने फन और फिक्री गहराई की वजह से उन्होंने बहुत कम वक्त में ड्रामे की दुनिया में अपना बुलंद मकाम बना लिया था। चूंकि वो सिर्फ मसाइल के ही नहीं बल्कि एहसासात और नफ्सियात के भी ड्रामा निगार हैं, इसलिए वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं और आने वाले दिनों में भी जिंदा रहेंगे। और उनके ड्रामे हर अहद में दुनिया के लोगों के लिए एक सबक की हैसियत रखेंगे।

हरिहरन को आपने फिल्म रोजा में सुना, और जब सुने लता मंगेशकर, उदित नारायण और अभिषेक की आवाजों में फिल्म दिलगी से ये नगमा।

आसान और अलका याग्निक का गाया ये नगमा आपने सुना फिल्म मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी से। नगमा निगार थे राहत इंदौरी, मुसकार अनु मलिक। और जी आप सुनिए एसपी बाला सुब्रमण्यम और उदित नारायण की आवाजों में ये नगमा। फिल्म है हमसे है मुकाबला।

ये पेश है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से मरहूमा, आवाज है अलका वागनी की। नामानिगार हैं समीर और उसे कार नदीम श्रवण।

लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाजों में आपने नगमा सुना फिल्म। गुलामी से और अब सुनिए बम्बई का बाबू फिल्म से ये नगमा। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

una cosa es suelgarse a base de desprender nerola o solo ni

0: प्रोग्रामों के साथ ही फिल्म मौसीकी का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 4:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकेकार के जरिए मुकर्रा वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी NIA ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाका खेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत तेज बारिश के इम्कान के मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। चीन में शदीद तूफान डॉल्फिन के इम्कान के तनाजुर में 1300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं और 3 लाख से ज्यादा लोगों को दीगर मुकामात पर पहुंचाया गया है। और बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता है। अब खबरें तफसील से।

आज से शुरू हो रही है और ये इस महीने की 17 तारीख तक जारी रहेगी। इसका मकसद कौमी परचम लहराने और हुब्बुल वतनी, कौमी इत्तेहाद और भारत के सकाफती वरसे का जश्न मनाते हुए मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करना है। आजादी के अमृत महोत्सव तकरीबात के हिस्से के तौर पर साल 2022 में हर घर तिरंगा मुहिम का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद से ये अवामी शमूलियत की मुल्क की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। इस तरह ये मुहिम हकीकी माना में अवाम की तहरीक बन गई है, जिससे मुख्तलिफ खित्तों और तबकों के लोगों को बहुत भारत के इत्तेहाद, अजमत और इज्तिमाई कौमी शनाख्त की अलामत के तौर पर तिरंगे का जश्न मनाने की तरगीब मिलती है। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने आज हर घर तिरंगा मुहिम के तहत अंडमान और निकोबार जजायर की राजधानी श्री विजयपुरम में फ्लैग प्वाइंट पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश किया। नायब सदर जमहूरिया ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के ऑडिटोरियम में मुनदा तकरीब में वंदे मातरम से मुतालिक तिरंगा कंसर्ट में भी शिरकत की। अपने खिताब में नायब सदर जमहूरिया ने भारत की जद्दोजहद आजादी से वाबस्ता अंडमान और निकोबार जजायर की शानदार तारीख का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वही सरजमीन है जहां मुजाहिदीन आजादी ने मुल्क की आजादी के लिए शदीद अज़ियत और नाकाबिले तसव्वुर मुश्किलात बर्दाश्त की। नायब सदर जमहूरिया अंडमान और निकोबार जजायर के दो रोजा दौरे पर हैं। नायब सदर जमहूरिया सी पी राधाकृष्णन ने उन मुजाहिदीन आजादी को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लिया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन जांबाजों ने करो या मरो की महात्मा गांधी की अपील से तरगीब हासिल करते हुए जद्दोजहद आजादी में मुल्क को मुत्तहिद करने में अहम रोल अदा किया। जनाब राधाकृष्णन ने कहा कि उनकी दिलेरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी से आने वाली नस्लों को तहरीक मिलती रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी भारत छोड़ो तहरीक में हिस्सा लेने वालों को खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि उनकी बहादुरी और दिलेरी हर भारतीय शहरी के लिए हमेशा बाइस तहरीक रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी की क़यादत से तरगीब हासिल करते हुए भारत छोड़ो की अपील से मुल्क की जद्दोजहद आजादी में एक नया जोश और वलवला पैदा हुआ और इससे नौआबादियाती राज से छुटकारा हासिल करने के अवाम के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि नौआबादियाती दौर के कवानीन की जगह मोदी सरकार ने जो तीन नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं वो तीन अहम सुतूनों टेक्नोलॉजी, वक्त की हद और भरोसे पर मबनी हैं। उन्होंने गोरीनेटू में पुलिस ट्रेनिंग स्कूल ग्राउंड पर पुदुचेरी पुलिस के अहलकारों को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम पेश करने की तकरीब में शिरकत करते हुए ये बात कही। जनाब अमित शाह पुदुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा का आगाज भी कर रहे हैं। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम के मल्लापुरम में गैरकानूनी धमाकाखेज मादों की एक बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बताया है कि मजकूरा मुलजिम साजिश रचने वाला असल कारिंदा है और वो इस केस में जब्त किए गए धमाकाखेज मादों को गैरकानूनी तरीके से हासिल करने में मुलविस था। इस गिरफ्तारी से एक दिन पहले एनआईए ने जुए को कर्नाटक में विजयपुरा से तीन मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। इस तरह इस केस में अब तक 10 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब में आज सुबह सरहिंद जीटी रोड पर एक कार से टकरा जाने के नतीजे में तीन कांवड़ियों की मौत हो गई जबकि एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये कांवड़िये उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकपुरा वापस जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार होने वाले ड्राइवर की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में सालाना अमरनाथ यात्रा अगले चंद रोज तक पहलगाम और बालतल दोनों रास्तों से मुअत्तल रहेगी। हालिया बारिश, यात्रा के रास्ते पर बहाली के काम और खराब मौसम की पेशगोई के तनाजुर में यह यात्रा आरजी तौर पर रोकने का फैसला किया गया है। जम्मू कश्मीर में रेल कनेक्टिविटी को मुस्तहकम बनाने के लिए अहम इकदाम किए जा रहे हैं। पूंछ के साथ जम्मू रियासी को जोड़ने वाली एक कैदी नई लाइन समेत रेलवे के अहम प्रोजेक्टों के लिए मुतालिका हतमी सर्वे की मंजूरी दी गई है। आकाशवाणी जम्मू के नामा निगार ने बताया है कि तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 190 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के लिए फील्ड सर्वे का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं।

0: ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में फिर से पानी की सतह में इजाफा हो रहा है, जबकि सैलाब की गुज़िश्ता लहर से कई इलाके अभी पूरी तरह बाहर भी नहीं निकल पाए थे। बालासोर में, जलका और भद्रक में बैतरणी और सलंदी दरियाओं में पानी चढ़ रहा है, जबकि संबलपुर में हीराकुंड डैम के 12 फाटकों से सैलाब का पानी छोड़ा जा रहा है। ओडिशा में फिर से बारिश होने के सबब सैलाब का खतरा पैदा हो गया है, जबकि सैलाब से मुतासरा बहुत से इलाकों के जेरे आब होने का अंदेशा है। आसाम में सैलाब की सूरत हाल अब भी संगीन बनी हुई है। एक और शख्स की मौत के बाद हलाकतों की तादाद 99 हो गई है, जबकि 1,47,000 से ज्यादा अफराद अब भी मुतासिर हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। चीन में शदीद आंधी तूफान डॉल्फिन से निपटने की गरज से शंघाई के 2 हवाई अड्डों ने 1,300 से ज्यादा परवाजें मनसूख कर दी हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में रहने वाले 3,00,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया है। कनाडा के मगरबी सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग की वजह से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस आग में कई मकान तबाह हो गए और 20,000 से ज्यादा अफराद अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। बैडमिंटन में भारत की अश्मिता चलिहा ने आज सुबह कोरिया मास्टर्स 2026 के खवातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया। अश्मिता ने चीन की खिलाड़ी हान चियान शी को 14-21, 21-14 से हराकर यह बावकार खिताब हासिल किया। इस जीत के साथ ही आसाम की इस खिलाड़ी ने अपना पहला बीडब्ल्यूएफ टाइटल जीता। खास खबरें एक बार फिर। हुब्बुल वतनी और कौमी इत्तेहाद का जश्न मनाने के लिए पूरे मुल्क में कई तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हो रही है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने जो 3 नए फौजदारी कवानीन मुरतब किए हैं, उनका मकसद टेक्नोलॉजी पर मबनी तरीकेकार के जरिए मुकर्र वक्त के अंदर इंसाफ फराहम करना है। कौमी जांच एजेंसी एनआईए ने केरलम में मल्लापुरम में गैर कानूनी धमाकाखेज मादों की बड़ी खेप जब्त किए जाने के सिलसिले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। ओडिशा में फिर से बारिश होने से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। कई दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। और बैडमिंटन में अश्मिता चलिहा ने कोरिया मास्टर्स टूर्नामेंट में अपना पहला बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर टाइटल जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात खत्म होती है। रात 9:15 पर तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।
2: शेरी ज़बान सरायकी दे प्रोग्राम जोक माही दिनाल
3: ਸਾਤੂ ਹਾਕੂ ਕਵੀ ਗੋਸ਼ਠੀ ਸੁਣਵੇਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਖਿੰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਧੀ ਤੇ ਰਾਮ ਚੰਦ ਵਰਮਾ। ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਚੰਦ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ।
4: ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜੇ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦੜੀ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੰਦੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਿੱਚਾ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਦ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਕਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗਜ਼ਲ ਜਿੰਦੜੀ। ਆਪਣੀ ਗੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਕੂ ਬਿਲਾ ਜਿੰਦੜੀ, ਆਪਣੀ ਗੋਡੀ ਵਿੱਚ ਮੇਕੂ ਬਿਲਾ ਜਿੰਦੜੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਜਿੰਦੜੀ। ਹੁਕਮ ਆਖ ਆਪਣਾ ਪੱਲੋ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ, ਹੁਕਮ ਆਖ ਆਪਣਾ ਪੱਲੋ ਉਹ ਦੇਖੇ ਜ਼ਰਾ, ਗਲਤ ਜਾਏਗੀ ਤੇਕੂ ਆਖਿਆ ਜਿੰਦੜੀ, ਜੈਵੀ ਸਮਝਾ ਗਲਤ ਤੇਕੂ ਆਪ ਰੇ ਗਲਤ, ਜੈਵੀ ਸਮਝਾ ਗਲਤ ਤੇਕੂ ਆਪ ਰੇ ਗਲਤ, ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਾ ਤੇਰਾ ਫਲਸਫਾ ਜਿੰਦੜੀ। ਆਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇਕੂ ਤਰੀਕਾ ਹੁਕਮ, ਆਗੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜੇਕੂ ਤਰੀਕਾ ਹੁਕਮ, ਜਿੰਦੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪਈ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿੰਦੜੀ। ਸ਼ਖਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਗਫਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ, ਸ਼ਖਸ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਗਫਲਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ, ਤੇਕੂ ਆਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜ਼ਾ ਜਿੰਦੜੀ। ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਖੇ ਤੇਕੂ ਅਸਾਂ ਗਫਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ,

0: 바람을 해서 내 읍대 뼈뼈 북한 알 김에 론다베 마을 구이비 혼데 고니 마피고 실라 혼데 받든 누가 그런데 편 마즈두리 कौन हूं चुप करे सी हुकू कौन सहारा बण सी हूं अमन को असा आवेंदे असा गाली में घर खूं लेकिन तीजा सीन वस्ती दे झुग्गे विच देखो पता नहीं किवें भा लगी है वस्ती दे झुग्गे विच देखो पता नहीं किवें भा लगी है एक एक शहर सड़दी वेंदी नंगे नंगे छोटे बच्चे सिर्फ नजर पे आंदे उत्थां घर दे वड्डे काम ते गए पिन घर दे वड्डे काम ते गए पिन रात को तवा ताही तपसी जिन्हों ओडू पैसे घन ओसिन भाव इस वावण को हुण ॾसो कौन थई हुण ओसी यारो आवण को असा आवेंदे असा गाली विच घर खऊं लेकिन एक बड़ा सीन देखो नाल दी वस्ती विच दरिया दा पानी वधदा वधदा वेंदे नाल दी वस्ती विच दरिया दा पानी वधदा वधदा वेंदे सारे जनावर बंदे को भी एक एक करके निकली वेंदे तेज हवा है बारिश भी है लोग बेचारे रोंदे पिटदे मदद वाला कोई हथ पे मंगदन मदद ते कई नहीं कर सकदा पिया जे तोड़ी मदद आउंदी है बाहरों कौन करे हुण मदद हुणे दी आवण को असा आवेंदे असा गाली विच घर खऊं लेकिन एक बड़ा सीन देखो जा जाते हुण थिन धमाके जा जाते हुण थिन धमाके धुएं नाल भरी है वस्ती शहर दे हर चौराहे उत्ते लुक लुक के बदमाश हुण बैठे ढेर लगे पिन मुर्दे दे हुण लाल लाल हैं गली मोहल्ले जिथा देखो रोवण पिटण हर एक दे हुण डरिया डरिया हर एक है हुण डरिया डरिया शुद्ध करण वाला नहीं कोई भी कौन हिने दी शुद्ध करे सी आवण को असा आवेंदे असा गाली विच घर खऊं लेकिन आखिरी बार पुछदा मैं हुने को जेकर इवें तुसा गाली विच गर्क हमेशा रासो हरदम जेकर इवें तुसा गाली विच गर्क हमेशा रासो हरदम एक निहाणा होसी एझा कोई ना मदद करे सी कहंदी मरे कोई या कोई फिर जीवे मरे कोई या कोई फिर जीवे कोई ना फिक्र करे सी कहंदी इसे विच हुण दसो साकू कौन सहारा बण सी कहंदा कौन दिलासा आके देसी सुन गिनसू ए गाल भी तुहाडी सुन गिनसू ए गाल भी तुहाडी असा गाली विच घर खऊं लेकिन वेंदे वेंदे आखिर विच एक नज़म 15 अगस्त ते भी पेश करंदा पिया सुनो 15 अगस्त को नमस्कार 15 अगस्त को नमस्कार ए देश प्रेम दा है निशान करो एक असा दिल नाल प्यार 15 अगस्त को नमस्कार त्योहार नवे सूरज दा है ते नवी फिजा दा है त्योहार यह त्योहार बहादुरी दा अते है जीत दा भी त्योहार असा सिर उच्चा कर चलू अज बागीची विच फुलें दे हार 15 अगस्त को नमस्कार भारत माता अपनी देवी भारत माता अपनी देवी ते धर्म है अपना राष्ट्र धर्म ही मुल्क दे वास्ते सिर्फ करूं जेड़ा भी असा करूं कर्म अवतारेंदी है माता ही धरती दे विच भरिया प्यार 15 अगस्त को नमस्कार आजादी दा इतिहास है क्या आजादी दा इतिहास है क्या नवी नस्लें को समझाऊं असा किस्से हुने वीर शहीदें दे हिन्ने को हुण दसूं असा दुश्मन दे नाल किवें लड़े दुश्मन दे नाल किवें लड़े किवें कीते हुण हनहने वार 15 अगस्त को नमस्कार एक नवा मुल्क बनावण को एक नवा मुल्क बनावण को हर दुख त्याग मंजूर करूं पक्का इरादा रख दिल दे विच जो भी करने वो जरूर करूं ही भारत मां दे दिल दे नाल साडे भी दिल दे जुड़न तार 15 अगस्त को नमस्कार आखिरी बंद है सांझे परिवार दे वांगू है रावे सारा सदा प्रजातंत्र सांझे परिवार दे वांगू है रावे साडा सदा प्रजातंत्र नानक गौतम ते गांधी ते आदर्श दा होवे लोकतंत्र नानक गौतम ते गांधी ते आदर्श दा होवे लोकतंत्र हर साल मनू सारे मिलके खुशी दे नाल ही ए त्योहार 15 अगस्त को नमस्कार 15 अगस्त को नमस्कार
1: कवितावां तुसां रामचंद्र वर्मा कोलों सुनदे पए हई हुण कुछ कवितावां

पर सच्चे बोल दुश्मन बन गए यार सब जो हां दे हन कोल दुश्मन बन गए यार सब जो दिल दे हन कोल जो हां दे हन कोल ना पक्के निकले बेली जो हां दे हन कोल ना पक्के निकले बेली चप्पल तक पा गए ना मोड़न मासा देली चप्पल तक पा गए ना मोड़न मासा देली तेरी क्या हुन लोड़ जो हाथ हुना दे सोखे तेरी क्या हुन लोड़ जो हाथ हुना दे सोखे मिलदे पैसन शेर असा हां डाडे ओके मिलदे पैसन शोर असा हां डाडे ओके अगली कुंडिया पेशन हुन राजे नाल एक कुंडी लिखने की कोशिश की है उम्मीद है पसंद आई सारे को बरसाती मौसम थिया सावन पावे शोर बरसाती मौसम थिया सावन पावे शोर किरमिन दे विच याद कर ओ बचपन दा दौर किरमिन दे विच याद कर ओ बचपन दा दौर ओ बचपन दा दौर भला मुड़ किवें आवे ओ बचपन दा दौर भला मुड़ किवें आवे करा शरारत ढेर ना कोई अख दिखावे करा शरारत ढेर ना कोई अख दिखावे कागल रखेम कोल मरेंदा हूं ते जाती कागल रखेम कोल मरेंदा हूं ते जाती करनी कश्ती त्यार थया मौसम बरसाती करनी कश्ती त्यार थया मौसम बरसाती ये छंद दी एक बहुत ही खास गल है कि जेड़े अखर तो जेड़े वर्ड तो शुरू थिंदे हुण ते इना एंड करना पौंदे एक बुराई नहीं छंद ये ही कुंडलियां छंद मैं सुनाने की कोशिश करना चंगा लगे तो कमेंट जरूर लिख के दसना ताकि अगू वास्ते भी असा तुहाडे वास्ते भी नवे नवे छंद गिन के आ सकूं पेश है जी चुभदी सच्चाई इवें जीवे तिखी मेख चुभदी सच्चाई इवें जीवे तिखी मेख अजमाइश दी लोड़ जे छेती करके देख चुभदी सच्चाई वे जीवे तिखी मेख अजमाइश दी लोड़ जे छेती करके देख छेती करके देख वला वी थी सी देरी छेती करके देख वला वी थी सी देरी निबदी ओखी ढेर जिथा है मेरी तेरी निबदी ओखी ढेर जिथा है मेरी तेरी अजमाश छेती करके देख वला वी थी सी देरी निबदी ओखी ढेर जिथा है मेरी तेरी भुलदी कैनी गाल तीर बन दिल विच खुबदी ओ भुलदी कैनी गाल तीर बन दिल विच खुबदी सीना छिलदी रोज सच्चाई में चुभदी सीना छिलदी रोज सच्चाई में खुबदी सच्चाई में छुबदी बहुत शुक्रिया जी पेश करे साज में एक बहुत ही बढ़िया कविता जो कि भैन भरावां से लिखी है क्योंकि रखड़ी का त्योहार भी नेड़े तक ही है तो मैं एक संदेश लेना चाहना आप सबको सोशल मीडिया के राही उम्मीद है सारे जरूर पसंद करे सो एक भैन अपने भरा को क्या एक अर्जोई कर दी हुई है कि कभी भी मेरे विवाह थी रहने जिमें मेरी मां दिल करे मिलन वास्ते तो कभी मना ना करी कभी भी मना ना करी ताकि मेरे को आके मिल सके आके मेरे को मिल सके

0: रखड़ी मदेसा मैं सोने मेरे वीर को मां को रोकी ना मिलन पिछों धीर को रखड़ी मदेसा मैं सोने मेरे वीर को पिछे सदा प्यार रखी वीरे मोना वटावी सदा प्यार रखी मेरे मोना वटावी मैं भी आवा तेरे घर तू भी मेरे आवी मैं भी आवा तेरे घर तू भी मेरे आवी रख याद तू दिलू वगे नीर को रख याद तू दिलों वगे नीर को मां को रोकी ना मिलन पिछों धीर को रखड़ी बदेसा मैं सोने मेरे वीर को मां को रोकी ना मिलन पिछों धीर को रखड़ी बदेसा मैं सोने मेरे वीर को
1: इसके नागलन
0: दिला दिया गाली वंडी बाबी कोल बैके दिला दिया गाली वंडी बाबी कोल बैके नाले नाल लावी मोड़ा सदा नाल रहके लाले नाल लावी मोड़ा सदा नाल रहके देखी आवे ना गल कोई वंडीर दी देखी आवे ना गल कोई वंडीर दी बाबी को तू रोकी ना मिलन पिछों धीर को रखड़ी बदे सा मैं सोने मेरे वीर को रखड़ी बदे सा मैं सोने मेरे वीर को मां को रोकी ना मिलन पिछों धीर को बाबी को तू रोकी ना मिलन पिछों धीर को मां को रोकी ना मिलन पिछों धीर को रखड़ी बदेसा मैं सोने मेरे वीर को
1: एक बया तो गाल रखड़ी सही है एक बया सब नहीं रखड़ी एक कविता सुनावा जासा उम्मीद हुई आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आसी रखड़ी तो हर एक बहुत बड़ा ब्याह नवा त्यार होंगे मैं अपने आप को रोक नहीं सकिया इतनी कविता सुनावन तो अंत कहना पा
0: आ गया रखड़ी दा त्योहार आओ घिनो देवो बधाइया रखड़ी दा त्योहार आओ घिनो देवो बधाइया भैरा कूजो खुश कर देसो भैरा कूजो खुश कर देसो वदसन बहु कमाइया अजहे रखड़ी दा त्योहार आओ घिनो देवो बधाइया रखड़ी दा त्योहार आओ घिनो देवो बधाइया
1: अगली लाइन ते गौर कमावा
0: देन बरावां दा रिश्ता दुनिया विच बड़ा अनोखा देन बिरावां दा रिश्ता दुनिया विच बहु अनोखा जिम्मेवारी समझ के चलू लगदा ना कुछ औखा जिम्मेवारी समझ के चलू लग से ना कुछ औखा रब अगू अर जाइयो सबको रब अगू अर जाई सब दा बनया रवे प्यार अजहे आ गया रखड़ी दा त्योहार आओ घिनो देवो बधाइया रखड़ी दा त्योहार आओ घिनो देवो बधाइया कच्चा धागा समझ के नाही रिश्ते तू मुंह मोड़ो कच्चा धागा समझ के नाही रिश्ते तू मुंह मोड़ो
1: ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜੋ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੋ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜੋੜਾ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਜ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਓ ਗਿਨੋ ਦੇਵੋ ਵਧਾਈਆਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਓ ਗਿਨੋ ਦੇਵੋ ਵਧਾਈਆਂ ਅੱਜ ਬੈਣਾ ਕੋ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੋ ਬੈਣਾ ਕੋ ਜੋ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਸੋ ਵੱਧ ਸਿਨ ਬਹੁ ਕਮਾਈਆਂ ਆ ਗਿਆ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਓ ਗਿਨੋ ਦੇਵੋ ਵਧਾਈਆਂ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆਓ ਗਿਨੋ ਦੇਵੋ ਵਧਾਈਆਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ
2: ਕਵੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹਵੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਹਨ ਰਾਮ ਚੰਦ ਵਰਮਾ ਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸਿੰਧੀ
3: ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ 103.6 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੇਂਦਰ ਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਵਰਲਡ ਸਰਵਿਸ 3 ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਾ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ

0: रीमा सोलर पैनल लगा ले, सोलर पैनल लगा ले। कदों तो मेरे सारे दोस्त बोलते सन, पर मैं उदो मनिया जदों प्रधानमंत्री जी ने कहा
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: मैं प्रधानमंत्री जी के कहने पे सोलर पैनल लगवाया, हम मेरा बिजली का बिल जीरो आया, तुसी भी लगवा लो।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करो, PM सूर्य घर .gov.in।
3: सूर्य घर
0: कहानी है एक नर्स अपने ओदे अंतरमन दी। आगे दमका नवे चुमके पहला बचत पहला चुमके। सुनो हर महीने थोड़ा बचाओ थोड़ा निवेश करो एक कुछ एमरजेंसी दिलाई भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री। और चुमके ताकि जान दिया जा लावा टीका
2: और भी कहता है
0: वित्तीय समझदारी खुशहाल नारी।
2: Forex trading? एक ट्रेड विच सिक्सर अटकिया सिद्ध।

साक्षी अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्य पथ तिरंगा डिजिटल रैली भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र शामिल होंगे। ये रैली 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गृहमंत्री अमित शाह ने पुद्दुचेरी से हर घर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोग इस यात्रा में तिरंगे के साथ शामिल हुए। इससे पहले गृहमंत्री पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृहमंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी के मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय

0: पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई है। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई दुर्घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलटों की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: भाई हेमंत भाई
2: जी,
0: आज कल हम देख रहे हैं कि बारिश की आंख में चोली चल रही है, कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश होती है, और बारिश का ही मौसम है ज्यादातर। जो इस समय हमें अपनी फसलों को ये ध्यान रखना है कि पानी की निकासी का प्रबंध जरूर करें अगर कहीं पे पानी भरता है, क्योंकि बेल वाली सब्जियां भी इस समय है, ज्यादा नुकसान उनको हो सकता है, और धान की फसल भी है उसमें पानी ज्यादा चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो भी धान को नुकसान कर सकता है। पानी की निकासी का प्रबंध जरूर रखें ताकि जो हवा का आवागमन उनकी जड़ों में है वो भी हो सके। इसके साथ साथ जो इस मौसम के हिसाब से कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि धान की हमारी मुख्य फसल इस समय है, अगर उसमें पौधों का रंग पीला पड़ गया हो तो समझ सकते हैं कि जिंक की कमी हो सकती है, और इसके लिए 6 किलोग्राम मात्रा ले सकते हैं आप जिंक सल्फेट की, और इसे 300 लीटर पानी में घोल बना करके स्प्रे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम जानते हैं कि चाहे कोई सी भी फसल है, चाहे वो गन्ना है, चाहे आपकी ज्वार है, बाजरा है, धान है, मक्का है, या दाल वाली फसल है, सब में बड़ी मात्रा में खरपतवार हमारे खेतों में आ जाते हैं, तो खरपतवारों का नियंत्रण लगातार रखें, क्योंकि खरपतवार न केवल हमारे दूसरी फसलों के पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं बल्कि नमी को भी सोखते हैं और कई रोगों के वाहक भी होते हैं, इसीलिए इनका नियंत्रण जरूरी है। और कोशिश करें कि बारिश का मौसम है, हाथ से उखाड़ के अगर उनको निकालें तो अच्छा है, रसायनों का प्रयोग ना करना पड़े। और जो ज्वार बाजरा उसकी बिजाई का समय इस समय है, जिन किसान भाइयों के अभी बिजाई की जगह है तो वो कर सकते हैं। इसके लिए जो टमाटर है, बैंगन है, मिर्च है, इनकी जो रोपाई है उनका भी समय है। अगेती फूलगोभी की पौध अगर तैयार हो गई है तो उसे भी, अगस्त का महीना आ गया है, उसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि जुलाई से ही शुरू कर देते हैं हमारे भाई।

0: और
1: उसे
0: वहीं
1: लगा सकते हैं।
0: किसान वर्षाकालीन प्याज की पौध की रोपाई इस समय कर सकते हैं। जल निकास का बार बार कह रहे हैं कि जल निकास का जो है उचित प्रबंध करें किसान भाई।
1: बिल्कुल। और स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जो है ये मक्का की ही किस्में हैं और इनको आप लगा सकते हैं। इस समय अच्छी आपको आमदनी मिलती है। अगर स्वीट कॉर्न की बात करें तो माधुरी है, बिन ओरेंज है, और बेबी कॉर्न की MHM4 किस्म को आप इस समय चुन सकते हैं। और बहुत जरूरी बात हम बताना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को, जो कद्दू वर्गीय है, जितनी भी सब्जियां हैं ना, उनमें परागण के लिए बहुत जरूरी होता है मधुमक्खियों का होना। इसलिए मधुमक्खी पालन की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मधुमक्खी आपके परागण में बहुत मदद करती हैं। और इसके साथ साथ आप अगर हॉर्टिकल्चर की बात करें, उद्यान में जो फूल हैं उनकी किस्में लगा सकते हैं। और इसमें बहुत जरूरी बात इस समय जो है, जैसे कि गेंदे की अगर हम बात करें, गेंदा इन दिनों में काफी आता है, तो गेंदे में आपको ध्यान ये रखना है कि गेंदे की उन किस्मों को शामिल करना है जो इस मौसम की किस्में हैं। भाई गलती कर देते हैं कई बार कि अगर जाड़े में होने वाले गेंदे को इस समय लगा देंगे तो उससे फूल नहीं ले पाएंगे। इस समय का जो गेंदा है उसकी बिजाई करें। और अब बात यह आएगी कि कौन सा गेंदा लगा जाना चाहिए, तो पूसा नारंगी किस्म इस समय हमारे भाई लगा सकते हैं। और पौध तैयार करें, उसके बाद उसकी रोपाई करें, वो अच्छे से चलेगी। और जो फल हैं उनमें बहुत अच्छा मौसम है बागानों को चलाने के लिए, चाहे आम है, नींबू है, अमरूद है, कोई भी इस समय जो फल वाले पेड़ हैं उनको लगा सकते हैं, वो बहुत अच्छे चलेंगे। और ये देखें कि एक तो भरोसे की जगह से आपको किस्म को लेना है, कलमी लेना है, और उसके साथ साथ उसमें ये देखना है कि पानी की अगर बहुत ज्यादा मात्रा है तो निकासी का प्रबंध जरूर होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा पानी अगर आ जाता है।
0: और एक चीज और निरंकर भाई देखी गई है कि जैसे किसान भाई हमारे गमले लगाते हैं या तो गमले में क्या नीचे जो छेद है वो नहीं करते, क्या होता है अत्यधिक पानी भर जाने की वजह से जो जड़ें जो है गल जाती हैं, तो इस चीज का भी विशेष ध्यान रखना कि गमले के अंदर एक छेद भी रखना है ताकि अत्यधिक जो पानी है वो रिश्ता रहे और निकलता रहे उसमें से।
1: क्योंकि बहुत ज्यादा नमी की मात्रा भी पौधों में बहुत सारी बीमारियां लाने का भी काम करती हैं, तो बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई इस समय जितने भी फूल हैं उनको भी ध्यान रखना है। बारिश हो रही है लगातार और पौधे नाजुक होते हैं, उनमें भी निकासी का प्रबंध जरूर रखना है। और जहां बारिश नहीं हो रही है, कई जगह ऐसी है कि बारिश कम है, तो वहां पर हल्की सिंचाई उसमें करते रहना है जिससे कि वो पौधे ठीक से चल सकें। सब्जियों को, फूलों को, खासतौर पर बेल वाली इस समय सब्जियां होती हैं, बार बार यही हम कहते हैं कार्यक्रम के माध्यम से कि जहां बारिश ज्यादा होती है तो पानी की निकासी का प्रबंध वहां पर जरूर होना चाहिए। और जो हमारे किसान भाई हैं वो जानते हैं, हम कुछ जनरल बातें भी कई बार अपने किसान भाइयों को कहते हैं कि इस समय चाहे वो नए फल वृक्ष लगा रहे हैं या कोई किस्म बो रहे हैं, कोई सब्जी लगा रहे हैं, उसमें भरोसे की जगह से पौधे लेने हैं। और बागवानी की वाली फसलों पर हम खास तौर पर कहते हैं, क्योंकि जैसे कि मिसाल के तौर पर आप आम लगाना चाहते हैं और आपने दशहरी चुना है लेकिन वहां पर वो कोई देसी वैरायटी आपको मिल गई, तो फिर वो कई साल बाद आपको पता लगेगा कि ये किस्म क्या है और वो फिर किसानों को नुकसान हो सकता है। इसलिए भरोसे की जगह से ही पौधे खरीदना है ताकि जो आप लगाना चाहते हैं किस्म उसी को ही आप ले पाएं।
0: बिल्कुल।
1: और अब देखो सावन का महीना चल रहा है हेमंत भाई, कई भाई कावड़ लेने गए हुए हैं, भगवान शिव के भजन लगातार चल रहे हैं और शिव की वंदना में सब शामिल हैं, तो क्यों ना सुन ले एक बमलहरी
0: सुभाष नाथ और साथियों की आवाज में। और इसके लिए फरमाइश भी हमारे पास आई है निरंकर भाई,
1: नाम पढ़ देते हैं जो बचे हैं सारे।
0: बिल्कुल। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश आई है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गवाह मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं अगली फरमाइश हमारे तक पहुंची है डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बीबी अनिष्का और तन्वय गजभिये की। इसी क्रम में अगली फरमाइश बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की। वहीं डुमरा बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी और उनके परिवार के सदस्यों की।
1: दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, ये हैं। हांडी खेड़ा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और इनका परिवार, ये हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन।

0: टिल्लू नायक, मधु नायक, और ये हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नीरीन अंसारी और इनका परिवार। ये हैं दादा बाबू रोड गिड़ी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज और इनका परिवार।
1: अगली फरमाइश ब्रज बिहार कॉलोनी मुरादनगर गाजियाबाद से करमबीर सिंह ढिलौड और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश चौधरीवास हिसार से राजू अग्रवाल, केशव, प्रियांशी और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश जो हम तक आई है छत्तीसगढ़ से आई है, ये देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: जवानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और ये हैं संदीप मकड़, ज्योति मकड़, मन्नत मकड़, भरत सानी, ये हैं गोराया जालंधर से।
1: वहीं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनव गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी, निमित आहूजा की फरमाइश भी हम तक आई है। इसी क्रम में अगली फरमाइश आई है हमारे पास, ये आई है गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा की।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा और इनका परिवार। जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ बठेना पाटन जिला से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा और इनका परिवार।
1: खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो, कोयल मल्होत्रा, पापाजी, नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डिग्गू सिक्का और उनके परिवार के सदस्य। इसी क्रम में अगली फरमाइश गांव नलोई तहसील सिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा।
0: भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार और यह गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युवत कड़वासरा।
1: अगली फरमाइश है ये दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्रमणि वर्मा और उनके परिवार के सदस्यों की। इसी क्रम में अगली फरमाइश संबलपुर कांकेर से भागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। एक और फरमाइश निरंकार भाई हम तक आई है गांव लोहगढ़ ठोकरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजीव सिंह, गुरलाल सिंह और उनके परिवार के सदस्यों की।
0: तो सुनते हैं ये बमलहरी सुभाष नाथ और उनके साथी से।

0: जय बम भोले की।
1: जय बम भोले।
0: तो बहुत बढ़िया बम लहरी सुनी हमारे साथियों ने, हमारे दोस्तों ने। और देखिए, भोले बाबा तो इतने भोले हैं कि थोड़ी सी पूजा में ही मान जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और अब जो हम देख रहे हैं सड़कों पर, हरिद्वार से लोग कावड़ ला रहे हैं और सब बाबा की धुन में मस्त हैं।
1: जी।
0: और अब चलते चलते मौसम की जानकारी दे दें। अगले 48 घंटों में दिल्ली और उसके आसपास मौसम सुहावना रहने की संभावना है। मध्यम से भारी बारिश कुछ स्थानों पर हो सकती है दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और ऐसे में हमारे किसान भाई ध्यान रखें कि अगर जल भराव की स्थिति होती है तो निकासी का प्रबंध जरूर करना है। और ठंडी हवाएं और बादल बने रहेंगे पूरे समय परसों तक, ये मौसम विभाग की तरफ से सूचना है।
1: तो शंकर भाई, समय हो चुका है कार्यक्रम समापन की तरफ और घड़ी की सुइयां कर रही है इशारा कि हमें जल्दी से अपने कार्यक्रम को समाप्त करना चाहिए।
0: तो सारे बहन भाइयों को
1: राम
0: राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर,
1: संयोजक शिव नंदन लाल।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और लीजिए प्रस्तुत है गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम। आरंभ करते हैं जगजीत सिंह की गाई इस गजल के साथ।

0: और श्रोताओं, इसी प्रस्तुति के साथ आज का गजल और कव्वाली से सजा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डॉक्टर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पापा, ये सब
5: ये चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो, उन्हें हटा देना चाहिए।
4: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
5: अरे ये कैसे रह गया?
4: पैसे गए?
5: नहीं, उपाय है, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
4: दादू ये
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सही कह रहा है।
8: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

0: नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का दोबारा संकल्प लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा देश का गौरव है और देश के लिए हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा देता है। दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलंजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि यह स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
1: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
0: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा के नेतृत्व में शुरू हुए इस अभियान के अंतर्गत सभी जिलों और कई मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी। जनकपुरी ढोली पियाऊ से तिलकनगर तक निकाली गई तिरंगा बाइक रैली में दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद और मनिंदर सिंह सिरसा सहित अन्य भाजपा नेता तथा कार्यकर्ता शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि इस रैली का उद्देश्य हर घर तिरंगे को पहुंचाना है।
2: 15 अगस्त और 26 जनवरी नेशनल इम्पोर्टेंस के फेस्टिवल्स हैं, ये कोई एक्सटेंडेड वीकेंड नहीं है। ऐसी भावना उत्पन्न करने का और देश में देशभक्ति के ज्वार को खड़ा करने का एक ये अभियान है। यहाँ तिरंगा यात्रा निकल रही है, बाइक रैली निकलेगी, एक जन सहभागिता और जन आंदोलन के रूप में हर घर पे तिरंगे को लगाकर देश के शहीदों और वीरों को नमन करने का समय है।
0: दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज पूर्ववर्ती सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए। उन्होंने दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रस्तुत पेश की गई 24वीं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आरोप लगाए। नई दिल्ली स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में श्री सिंह ने बताया कि 7 अगस्त को सामने आई 31 मार्च 2023 तक के रिपोर्ट में करीब 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं।
3: CAG रिपोर्ट केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार का रिटर्न डॉक्यूमेंट है। केजरीवाल सरकार में ऑडिट नहीं होता था कामों का। 1.5 साल के अंदर में हमारी सरकार के आती 24 रिपोर्ट आ चुकी। हर रिपोर्ट में सैकड़ों हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हमारे सामने आया है। जो परसों रिपोर्ट आई, इसमें भी 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताएं CAG ने हमारे सामने इस डॉक्यूमेंट में पेश करी है।
0: श्री सिंह ने कहा कि CAG की रिपोर्ट में टैक्स बकाया, GST पंजीकरण, ई-वे बिल, बिजली सब्सिडी और मैनुअल टेंडर से जुड़ी कई अनियमितताओं का उल्लेख हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार इन मामलों की जांच कराएगी। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के अनुसार वर्तमान वर्ष में दिल्ली मेट्रो 99.95% समय से चली। DMRC ने रेल परिचालन की समयबद्धता और विश्वसनीयता के मामले में हांगकांग, पेरिस और न्यूयॉर्क जैसी विश्व की प्रमुख मेट्रो प्रणालियों के बीच खुद को सबसे प्रतिष्ठित मेट्रो प्रणाली के रूप में स्थापित किया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली मेट्रो के करीब 23 वर्षों के परिचालन के दौरान नेटवर्क के लगातार विस्तार के बावजूद उच्च परिचालन दक्षता कायम रही है। वहीं शुरुआती वर्षों में दिल्ली मेट्रो के ट्रेनों के बीच लगभग 7 मिनट अंतराल घटकर आज सबसे व्यस्त कॉरिडोर पर मात्र 2 मिनट 18 सेकंड रह गया है। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो 12 लाइनों और 303 स्टेशनों के साथ 416 से अधिक किलोमीटर के नेटवर्क पर संचालित हो रही है। वहीं दिल्ली मेट्रो करीब 29% नेटवर्क पर ड्राइवरलेस मेट्रो सेवा के साथ भारत का सबसे बड़ा ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क बन गया है। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह उपलब्धियां तकनीकी नवाचार, बेहतर रखरखाव और परिचालन उत्कृष्टता के निरंतर प्रयासों का परिणाम है तथा इसके लिए DMRC को हाल के वर्षों में कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सौम्या शरण।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर

0: सिंह विधूड़ी ने आज देवली विधानसभा के संगम विहार ए वार्ड में और देवली वार्ड में 37 करोड़ रूपये के विकास कार्यों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। आवंटित इस धनराशि के अंतर्गत लगभग 4 किलोमीटर लंबा डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा मार्ग बनाया जाएगा और क्षेत्र में 2 बारातघर का निर्माण किया जाएगा। दिल्ली नगर निगम ने आज शिवाजी महाराज मार्ग करमपुरा औद्योगिक क्षेत्र मोतीनगर में राहगीरी दिवस का आयोजन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों के बीच सड़क सुरक्षा, स्वच्छता और कचरा पृथककरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। एक रिपोर्ट।
1: कार्यक्रम में 300 से अधिक नागरिकों ने हिस्सा लिया। इसमें लगभग 150 स्कूली छात्र शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा, स्वच्छता, सूखा और गीला कचरा अलग करने और जिम्मेदार कचरा प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने पर विशेष बल दिया गया। निगम ने नागरिकों से कचरे के स्रोत पर ही अलग अलग करने और सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ रखने की अपील की। साथ ही युवाओं और छात्रों को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ दिल्ली के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया गया। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार लिए वीरेंद्र कौशिक।
0: दिल्ली के खाद्य और आपूर्ति विभाग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी द्वारा की गई प्रेस वार्ता के दौरान उनके विभाग पर लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और इस पर आपत्ति जताई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने उनके खिलाफ बेबुनियाद, झूठी और मानहानिकारक आरोप लगाए हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को 24 घंटे के भीतर आरोप वापस लेकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की और ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। दिल्ली के पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज बताया कि मॉडल टाउन स्थित नैनी लेक के कायाकल्प और सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया जा रहा है, जो सांस्कृतिक धरोहरों को सहेजने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मिश्रा ने कहा कि नैनी लेक के पुनर्विकास की योजना में झील के आसपास के क्षेत्र को बेहतर बनाने के साथ पर्यटन और मनोरंजन सुविधाओं जैसे एक अच्छा रेस्टोरेंट खोलने के विस्तार पर भी बल दिया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इस योजना के दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। नई दिल्ली में केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक में आवासन और शहरी कार्य सचिव सत्येंद्र सिंह की अध्यक्षता में दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए 2,09,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी गई। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज दिल्ली स्थित राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय परीक्षण वकालत प्रतियोगिता के समापन समारोह में शामिल हुई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुप्ता ने कहा कि भारत की न्याय परंपरा ने सदैव तर्क को शक्ति, संविधान को मर्यादा और न्याय को सर्वोच्च स्थान दिया है। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने बताया है कि मॉनसून की बारिश के बावजूद मायापुरी चौक पर यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और सड़कें बिना किसी जलभराव के साफ हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में विभाग ने कहा कि उनके बेहतर जल निकासी प्रबंधन और समय पर की गई तैयारियों के कारण लोग सुरक्षित और बिना किसी परेशानी के आवाजाही कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में बारिश के बाद लोगों को आज दिनभर तेज धूप और उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। आज का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग ने बताया कि कल बादल छाए रहने के साथ कुछ जगहों पर हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान मिथक

0: अपना जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉ अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉ राजेश सिन्हा भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पूर्ववर्ती सरकार पर लगभग 3,500 करोड़ रुपए की अनियमितताओं का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो का परिचालन इस वर्ष अब तक 99.95% समय से रहा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और इसके दूसरे चरण के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी। और भारत ने गैर जीवाश्म स्रोतों से बिजली उत्पादन की स्थापित क्षमता में 300 मेगावाट का आंकड़ा पार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: इसका सब प्रॉपर चलता है।
2: अगर उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है?
1: इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना।
3: टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं।
4: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि हैं डॉक्टर जय सिंह आर्य, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सरिता जैन और डॉक्टर नवोदिता शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं डॉक्टर नवोदिता शर्मा।
5: नमस्कार सभी श्रोताओं को, डॉक्टर निवेदिता शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन का महीना आ चुका है, कांवड़िए कांवड़ लेकर शिवजी पर गंगा जल चढ़ाने निकल चुके हैं। राहें बम बम भोले के स्वरों से गूंज रही हैं। वही हमारे गौरव का दिन स्वतंत्रता दिवस भी आने वाला है। ऐसा लगता है पूरा वातावरण ही आध्यात्म और देशभक्ति के भावों से भर गया है। आकाश में काले काले मेघ जैसे देश प्रेम और आध्यात्म का संदेश ला रहे हैं। माटी से सौंधी सुगंध उठ रही है, वर्षा की रिमझिम बूंदें बम भोले के स्वरों में अपना संगीत मिला रही हैं। ऐसे सुहाने मौसम में हम लेकर आए हैं खूबसूरत गजलों और शानदार कविताओं का ये सुंदर सा कार्यक्रम, जहाँ भाव है, संवेदनाएं हैं, स्वर हैं। आज की काव्य गोष्ठी सावन की फुहारों जैसी है, जहाँ शब्द बरसेंगे, भाव महकेंगे और रस की वर्षा होगी। वक्त के पाव अनायास ठहर जाएंगे, गौर से देखोगे तो कुछ और नजर आएंगे। डूबकर हमको जो सुनोगे रफ्ता रफ्ता, कान से होके हौले से दिल में उतर आएंगे। आज हमारे बीच देश के जाने माने गीतकार और गजलकार उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारे बीच जो उपस्थित हैं आदरणीय अशोक सम्राट जी, जो भारत सरकार में प्रथम श्रेणी के अधिकारी भी हैं। हिंदी अकादमी दिल्ली से 2 बार नवोदित लेखक सम्मान, राष्ट्रीय भाषा गौरव सम्मान जैसे अनेक सम्मान उनको मिल चुके हैं और अब तक उनकी लगभग 10 पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं। देश के विभिन्न राज्यों में उनके कार्यक्रम होते ही रहते हैं, तो आइए उनको सुनते हैं। मैं उनको आमंत्रित कर रही हूँ इन 4 पंक्तियों के द्वारा। प्यार का रंग नहीं मगर आता है, दिल से उठता हर शब्द बोल जाता है। तर्क के पर्दे चाहे लाख इस पे डालो भी, रंग चाहत का चेहरे पे नजर आता है। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय अशोक सम्राट जी का।
6: धन्यवाद मैडम। और मैं सीधे सीधे अपनी कविता पर आता हूँ। कविता क्या, ये एक गीत है एक सजनी का अपने सजना के लिए। एक सजना उनके जो सुरक्षा में तैनात हैं, तो वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन सावन के महीने में सजनी उनको याद कर रही है कि आप घर क्यों नहीं आ रहे हो।
5: स्वागत है।
6: कि जब से दूर गए हो मुझसे,

सभी एक से लगते हैं अब मुझको संध्या भोर, कब आओगे मुझे बताओ ओ मेरे चित चोर, जब से दूर गए हो मुझसे। चारों तरफ है हरियाली पर मन में मेरे उदासी, हर दम राह देखती हैं ये मेरी अखियां प्यास।

0: हो मुझसे,
1: क्या बात है।
0: कैसे तुमको मैं बतलाऊं, वक्त बिताऊं कैसे, तुम बिन साजन मैं कोई त्योहार मनाऊं कैसे, कब तक।

मुझसे जब भी जाऊं पनघट पर तो होती हैं ये बतियां, कब आएगा साजन तेरा पूछे सा

0: चित चोर, जब से दूर गए हो मुझसे मन में उठे हिलोर, कब आओगे मुझे बताओ ओ मेरे चित चोर।
1: बहुत
2: सुंदर,
1: बहुत सुंदर।
3: एक छोटी सी गजल पेश है कि उनको हम इतने जाने पहचाने लगे, वो हमें बातें दिल की बताने लगे, और पल में ही आज वो बात वो कह गए जिसको कहने में हमको जमाने लगे। और आज उनको न जाने है क्या हो गया, वो कभी भी न इतने दीवाने लगे, अपने दिल का बयां हाल मैं क्या करूं, मेरे सपनों में वो आने जाने लगे।
1: वा, वा, वा, वा।
3: और प्यार का उनके अंदाज तो देख लो, अब तो वो मेरी कस्में भी खाने लगे। एक छोटी सी गजल और है कि बात मेरी अगर सुनी होती खत्म ऐसे न दोस्ती होती, हम किसी और के नहीं होते, तुम किसी और की नहीं होती, और काश मैं ही अगर गलत होता, काश तुम ही अगर सही होती, और टूटता ना भरोसा तो फिर ये कुछ और जिंदगी होती, और भूल सम्राट जाओ बातों को, ऐसी बातें कहाँ नहीं होती। एक छोटी सी गजल और पेश है इसी बहर में है कि मैंने दुनियादारी देखी घूम घूम कर सारी देखी, कुछ मतलब के यार भी देखे, कुछ में जिम्मेदारी देखी, और संबंधों की ताकत अक्सर देकर रकम उधारी देखी, नर को देखा पड़ा नशे में बोझ उठाती नारी देखी, आग लगेगी अंदेशा है उठती एक चिंगारी देखी, और यूं ही पसरा मौन नहीं है इसमें एक लाचारी देखी।
1: वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गजल,
2: क्या कहने,
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आदरणीय अशोक सम्राट जी की, जैसा नाम है उनका सम्राट, वैसे ही खूबसूरत सा गीत उन्होंने आज हमको सुनाया। और अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मधुर स्वरों की मलिका सरिता जैन जी को, जिन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपनी गजलों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। गजल महज दो मिसरों का सिलसिला नहीं होती, ये खामोश दिल की जुबां होती है। सरिता जी को मैं इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। दिल ने जिनको रचा भाव से प्रीत के स्वर रखे मिलेंगे।

0: सबके मन पर लिखे हमारे ढाई अक्षर रखे मिलेंगे। आज गढ़ा है हमने खुद को रेशम जैसे एहसासों से, कल बनकर गीत प्यार के अधर अधर पर रखे मिलेंगे, अधर अधर पर रखे मिलेंगे। बहुत बहुत स्वागत सरिता जी।
1: स्वागत है।
2: बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी। मैं एक मतला एक शेर से अपनी बात का आगाज करती हूँ कि दिल का दरिया कटाव करता रहा, दिल का दरिया कटाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा। और एक ताजिर से हो गया था इश्क, व्यापारी से, एक ताजिर से हो गया था इश्क, उम्र भर मोल भाव करता रहा।
0: वाह वाह।
2: उम्र भर मोल भाव करता रहा कि जैसे अब इश्क के जो पैमाने हैं वो बदल गए हैं। एक जमाना था कि इश्क विरह में रोया जाता था, अब नए पैमाने गढ़े गए हैं। तब मैं चार मिसरे कहती हूँ कि बदलेंगे रोने धोने के हम ये रिवाजे इश्क, बदलेंगे रोने धोने के हम ये रिवाजे इश्क, अब कह कहो के साथ करेंगे इलाजे इश्क। अब कह कहो के साथ करेंगे इलाजे इश्क। और लैला के हिस्से आती हैं रुसवाइयां तमाम, लैला के हिस्से आती हैं रुसवाइयां तमाम, मजनू के सर पे रख दिया जाता है ताजे इश्क। कि मजनू के सर पे रख दिया जाता है ताजे इश्क। इसी सिलसिले में देखिएगा कि तेरे ख्याल से दिल पर दबाव बढ़ने लगा, तेरे ख्याल से दिल पर दबाव बढ़ने लगा, अजीब बात है मरहम से घाव बढ़ने लगा। अजीब बात है मरहम से घाव बढ़ने लगा। और कहा है जब से किसी ने कि अच्छी लगती हो, कहा है जब से किसी ने कि अच्छी लगती हो, हमारा अपने लिए रख रखाव बढ़ने लगा, हमारा अपने लिए रख रखाव बढ़ने लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि बताएं क्या तुम्हें गुजरी है क्या जनाब के बाद, बताएं क्या तुम्हें गुजरी है क्या जनाब के बाद, कहीं के भी ना रहे इश्क के अजाब के बाद, कहीं के भी ना रहे इश्क के अजाब के बाद। और अंधेरा जिद पे है अपनी तो वो इतना करे, अंधेरा जिद पे है अगर अपनी तो वो इतना करे, बुझाए मेरे चरागों को आफताब के बाद, बुझाए मेरे चरागों को आफताब के बाद। और उजालो अपनी चमक का हिसाब मत मांगो, उजालो अपनी चमक का हिसाब मत मांगो, हमारी छिन गई बिनाई एक ख्वाब के बाद, हमारी छिन गई बिनाई एक ख्वाब के बाद। और हिसाबे इश्क में इतना ही मेरे हिस्से आया, हिसाबे इश्क में इतना ही मेरे हिस्से आया, तमाम उम्र चुने कांटे एक गुलाब के बाद, तमाम उम्र चुने कांटे एक गुलाब के बाद। और कुछ शेर और देखिए कि सांस की जब तक हिस्सेदारी रहती है, जंग हमारी खुद से जारी रहती है। और इश्क अगर एक बार किसी से हो जाए, मरते दम तक ये बीमारी रहती है।
0: वाह वाह वाह।
2: और तेरी आंखें बेशक तेरी आंखें हैं, लेकिन इनमें शक्ल हमारी रहती है।
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
2: अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, अजब जिंदगी में तमाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है, हमें इश्क फिर बेतहाशा हुआ है। और इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, इसी बुत ने हमको कहीं का न छोड़ा, यही बुत हमारा तराशा हुआ है, यही बुत हमारा तराशा हुआ है। और नहीं बुझा सका जब तिश्नगी को पानी से, एक मतलब उसे दे, नहीं बुझा सका जब तिश्नगी को पानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से, उलझने आ गया दरिया मेरी रवानी से। और पसंद आ गया जब उसको दूसरा किरदार, पसंद आ गया जब उसको दूसरा किरदार, हमारा रोल अलग कर दिया कहानी से, हमारा रोल अलग कर दिया कहानी से। एक गजल के चंद शेर देखिए कि सर से पां तक एक उदासी छाई है तन्हाई है, सर से पां तक एक उदासी छाई है तन्हाई है, बीनाई हर मंजर से उकताई है तन्हाई है, बीनाई हर मंजर से उकताई है तन्हाई है। और जाने क्या

0: जिसकी खातिर सब मंजूर किया मैंने, जाने क्या था जिसकी खातिर सब मंजूर किया मैंने, वरना इश्क में जिल्लत है रुसवाई है तन्हाई है।
1: वाह वाह वाह।
0: वरना इश्क में जिल्लत है रुसवाई है तन्हाई है, और दीवारों से लिपटी बेलें कब से देख रही हूँ मैं, दीवारों से लिपटी बेलें कब से देख रही हूँ मैं, शाम ढले जब याद तुम्हारी आई है तन्हाई है, तन्हाई है कि खुली किताबें भीगा तकिया सिमटी चादर बिखरी मैं, खुली किताबें भीगा तकिया सिमटी चादर बिखरी मैं, कमरे की हर शय से जो टकराई है तन्हाई है, कमरे की हर शय से जो टकराई है तन्हाई है, और यूं तो दुनिया भी मेरी वहशत से घबराती है, यूं तो ये दुनिया भी मेरी वहशत से घबराती है, पर मेरी वहशत जिससे घबराई है तन्हाई है, पर मेरी वहशत जिससे घबराई है तन्हाई है, अपने सारे रूठ गए हैं सपने सारे टूट गए हैं, मेरी कब्र तलक जो चलकर आई है तन्हाई है, बात तुम्हारे दिल ऊब गया था दुनिया की रौनक से, बात तुम्हारे दिल ऊब गया था दुनिया की रौनक से, मेरे खालीपन की जो भरपाई है तन्हाई है, तन्हाई है।
2: बेहतरीन रचना प्रस्तुत की सरिता जी ने, और अब मैं आपके सम्मुख देश की ऐसी गीतकारा को आमंत्रित कर रहा हूँ जो काव्य आकाश से श्रावणी माह में अपने गीतों की फुहार से आप सबको नहलाने के लिए आ रही हैं। एक माहिया कहना चाहता हूँ निवेदिता शर्मा जी के लिए,

0: स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। एक मुक्तक के साथ अपनी बात शुरू करती हूँ।
2: स्वागत।
1: हम चले जाएंगे, कहानियाँ रह जाएंगी।
0: क्या बात है।
1: इस जहाँ में मेरी निशानियाँ रह जाएंगी।

धनुषे रंग नभ में खिल रहे हैं, वाण मधु करके सभी पर चल रहे हैं। मन

0: जाते हैं, वाह वाह वाह वाह, क्या बेहतरीन बात।
1: और अब मैं जिनको आमंत्रित कर रही हूँ वो है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध गीतकार। बहुत ही सम्मान के साथ मैं बताना चाहूंगी कि लगभग 50 वर्षों से वो अपनी कविताओं के माध्यम से साहित्य की साधना कर रहे हैं। दोहा, गीत, गजल, माहिया, काव्य की हर विधा में वो पारंगत हैं। देश का शायद ही कोई राज्य हो जहां उन्होंने अपने गीत ना पढ़े हों। मैं दुष्यंत जी की इन पंक्तियों के साथ आदरणीय जयसिंह आर्य जी को आमंत्रित कर रही हूँ। गीत गाकर चेतना को वर दिया मैंने, आंसुओं से दर्द को आदर दिया मैंने, प्रीत मेरी आत्मा की भूख थी सहकर, जिंदगी के चित्र को पूरा कर दिया मैंने, जिंदगी के चित्र को पूरा कर दिया मैंने। आदरणीय जयशंकर
0: आर्य, सावन की बेहतरीन रचना प्रस्तुत की आपने, मैं भी सावन पर कुछ माहिये कहना चाहता हूँ।
1: स्वागत है सर।
0: क्योंकि गर्मी का जितना तांडव जनमानस ने झेला, उस सुकून की बूंदें पड़ी हैं सावन में। देखें।

वाह। और देखें बचपन में हमने कागज की नाव चलाई पानी के अंदर, एक भैया देखे बहुत छोटा चंद है, दूसरे से भी छोटा चंद, मस्ती के पल चूमी, मस्ती के

बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सावन पर गीत सुनाया आदरणीय जयसिंह आर्य जी ने। और सावन पर इतने सुंदर गीत और इतनी अच्छी गजलों के साथ ही हमारे कार्यक्रम अब समाप्त होता है, लेकिन मैं चार पंक्तियां जाते जाते कहना चाहूंगी कि अगर बुलंदियां हासिल करनी है तो हमें क्या करना हो?

0: होगा कि सूरज सा दमकना है तो जलना सीखना होगा, और चंदा सा चमकना है तो जगना सीखना होगा। यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, यूं ही हासिल नहीं होते मकाम बुलंदी के, राहों पर गिर गिर कर संभलना सीखना होगा, संभलना सीखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे। प्रतिभागी कवि थे डॉक्टर जय सिंह आर्य, डॉक्टर अशोक कुमार, डॉक्टर सरिता जैन और डॉक्टर नवोदिता शर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी डॉक्टर नवोदिता शर्मा। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मेणा।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत, प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा, जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3 लाख लोग विस्थापित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4थे स्थान पर था। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।

वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की

0: launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएनआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
1: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.com

0: www.jiovi.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की। लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों

बस ये आकाशवाणी है। अब सर्विस की आज की तीसरी मंजिल की नशरियात का आगाज होता है। आप हमारी नशरियात मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और डीडी फ्री डिश पर सुन रहे हैं।

पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और पीएमवाईयू 2.2 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है। नज़्म-ए- मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1 करोड़ मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक़िदा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए पीएमएवाईयू 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई थी। इनमें आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शदीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पर पहुंच गया, जिससे जेजियांग और फुजान सूबे मुतासिर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुक्काम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर रहा है, अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान सालिसों के तवस्सुत से पैगामात का तबादला किया जा रहा है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जब अराग़ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वजा करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ईरान अमरीका के साथ उस वक्त तक दोबारा बातचीत शुरू नहीं करेगा जब तक अमरीका उस 14 निकाती मुफाहमतनामे की खिलाफ वर्जी खत्म नहीं करता, जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान जून में दस्तखत किए गए थे। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलगोरोड इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक, जबकि दीगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही हैं। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया है। यह वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया, जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईओडी 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जनूबी बहरी कमान में मुनक़िद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी तआवुन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और मगरबी मध्य प्रदेश में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, मशरकी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी अगले 2 दिनों में भारी बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वज़ीर दफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी शहर ओरेगन में हुई 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले भारतीय बहरिया के एथलीटों वसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया के एक पोस्ट में वज़ीर दफा ने इसे आलमी सतह पर भारतीय खेलों के लिए फख्र का लम्हा करार दिया। जनाब सिंह ने कहा कि उनकी कारकर्दगी मुल्क के हर नौजवान खिलाड़ी के लिए मशाल राह है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें।
ملک بھر میں مختلف تقریبات کے ساتھ ہر گھر ترنگا مہم کا آغاز ہو گیا ہے۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس تحریک میں شرکت کر کے وکست بھارت کے

0: पुरस्कारें अदा करें। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की अशरियात। मेरा पेश है प्रोग्राम हेल्थ टिप्स।
2: मलेरिया जो है एक मच्छर जनित बीमारी है, और मच्छर जो है जब बरसात के टाइम में होते हैं, और ये मच्छर जनित बीमारी जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया और जैसे जीका, बहुत सारे नई नई बीमारियां आजकल देखने को पा रहे हैं कि मलेरिया ये एक सीरियस बीमारी है। और डेंगू, चिकनगुनिया और जीका और फाइलेरिया, बट इसमें जानलेवा जो है सबसे ज्यादा है मलेरिया है, और कुछ डेंगू में भी होते हैं, चिकनगुनिया में कम है, जीका में कम है, कॉम्प्लिकेशन कम है। सिम्टम्स जो है इसका कैसे हम जाने कि ये डेंगू है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, टाइफाइड है। अब जो डेंगू है ये आपको अचानक तेजी से बुखार होता है, और एक खास बात है इसमें आपको हेडेक भी होगा थोड़ा बहुत, और बदन में दर्द और चकत्ती जो है लालपन बॉडी में आपको शरीर में दिखाई देता है। और इसमें एक खास बात है कि जब तीन दिन के बाद इसमें तीन चार दिन बुखार रहता है हाई ग्रेड, उसके बाद पूरा बुखार ठीक हो जाता है। तीन फेजेज होते हैं इसमें, एक बुखार का फेज, एक हम बोलते हैं जो क्रिटिकल फेज, और एक रिकवरी फेज। क्रिटिकल फेज में क्या होता है कि तीन दिन के बाद बुखार नहीं होता है, बट पेशेंट सीरियस हो जाते हैं। सीरियस का मतलब ये है कि आपको उल्टियां, पेट में दर्द और आपको ब्लड प्रेशर सबसे कम हो जाता है, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान देना है। बेसिकली जो मेन है डेंगू, आपको हाई ग्रेड फीवर, और चिकनगुनिया में आपको जोड़ों में दर्द, और मलेरिया में आपको जैसे बुखार है वो एक दिन दो दिन छोड़ के आपको बुखार होगा, और ये डेंगू चिकनगुनिया लगातार आपको 24 घंटे बुखार रहता है, तो ये एक आपको ध्यान देना है। और डेंगू में आपको ध्यान देना है कि कहीं पे माइनर ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, जैसे आपका यूरिन में हो सकता है खांसी के साथ, कभी आईज में लालपन, और कभी कभी आपको जैसे उल्टी, खून की उल्टी, ये सब थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो पहले ही आपको ये सब थोड़ा सा वार्निंग साइन बोलते हैं जिसको, ये पेट में दर्द, उल्टियां, ब्लड प्रेशर कम, डिहाइड्रेशन, खाना पीना थोड़ा सा कम हो जाना, ये जब अगर कुछ होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मलेरिया एक पैरासाइट है, और डेंगू, चिकनगुनिया और जीका एक वायरल डिजीज है। तो पैरासाइट और वायरस में यह डिफरेंस है, इसमें क्या होता है कि मच्छर काटने के बाद ये पैरासाइट दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद साइकिल रिपीट होता है, दो चार घंटा के, पांच छह घंटा दिन में बुखार होगा, उसके बाद बुखार ठीक हो जाएगा, दो तीन दिन तक बुखार नहीं होगा। कभी कभी होता है कि डेली बुखार हो उसमें, बट मलेरिया का एक कैरेक्टरिस्टिक है जो लक्षण है वो आपका जैसे ठंड लग के बुखार होना।
3: अच्छा।
2: बुखार के साथ आपको तेजी से बुखार चढ़ता है, और उसके साथ ठंड भी लगता है, और थोड़ा सा बदन में दर्द, और दवाई आप लेते हैं तो इमीडिएट ठीक हो जाता है, और फिर दो दिन तीन दिन के बाद फिर चढ़ता है। तो ये हाँ, ये और डेंगू में अब बिना दवाई से कम नहीं होगा, चिकनगुनिया में बिना मेडिसिन से आपका बुखार कम नहीं होगा, बट मलेरिया में बिना दवाई से दो चार घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाता है। तो मैं कहूंगा कि जो मच्छर से बचे आप पहले तो, और कहीं पे भी मच्छर आप देखे तो उसको अटैक करिए, पनपने ना दे, और बचिए कि कैसे आप मच्छर से, मच्छर काटने से बचे कि अपनी प्लेट यूज करिए, फुल ड्रेस जो है कवर करके चलिए, ये मच्छर दानी में आप रहे, और बहुत सारे जो अभी प्रकार से हम मच्छर से फाइट करते हैं तो ये आप ध्यान रखिए। और दूसरी बात ये है कि जब हम जब किसी को चिकनगुनिया अगर हो गया, जैसे हड्डी में दर्द, कमजोरी यार, तो ये तो एक ट्रीटमेंट का पद्धति है, ये तो स्टेप्स है, तो इसमें आपको पहले तो देखना होगा डॉक्टर इसको स्टेज बताएंगे कि क्या है, सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है। अगर सीवियर है तो पहले से आपको एक अच्छे डॉक्टर जो आर्थराइटिस है जो ट्रीटमेंट करते हैं एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, और पहले से आप अगर ट्रीटमेंट ले ठीक ठाक दवाई ले तो इसका

0: कॉम्प्लिकेशन पे हम इसको कम कर सकते हैं, रोध कर सकते हैं ताकि ये साल दो साल तक ना चले। तो ये है आपका डोमेन। और आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन जैसे बीच बीच में थोड़ा सा ये होता है, दो तीन हफ्ते और मे बी टू थ्री मंथ्स बाद भी आपको ये फॉलोअप करना होता है।
1: समय आप सुन रहे थे प्रोग्राम हेल्थ टिप्स, यह आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। ये समय ना पेश है प्रोग्राम मार्केट मंत्रा।
2: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: Good evening, listeners, and welcome to Market Mantra. Today, being Sunday, we'll be taking calls on your mutual fund related queries. But do remember that we do not address fund specific queries. You can call us on 2331 4444 2331 0481 and 2371 7106, and of course do prefix the code 011. Along with my co-anchor Sonu Sood, I am Sarabjeet Kaur.
1: धन्यवाद सरब जी. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके प्रश्न इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे. सवाल पूछने के लिए आप इन नंबरों पर हमें फोन कर सकते हैं 2331-4444 2371-0481 और 2371-7106. श्रोताओं, इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. आज की खबरों पर चर्चा करने और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट आशुतोष गुप्ता. आशुतोष, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है.
2: जी, धन्यवाद.
1: और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ सरबजीत कौर.
0: फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 12,900 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टंबल लास्ट वीक एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स टू फोकस ऑन इन्फ्लेशन डेटा, कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स फोक्यूज्ड नेक्स्ट वीक.
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने अगस्त के पहले सप्ताह के दौरान भारतीय शेयर बाजार में 12,900 करोड़ रुपए से अधिक का किया निवेश. कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में पिछले सप्ताह आई गिरावट और घरेलू निवेशकों का ध्यान अगले सप्ताह संकेतों के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़ों, कंपनी आमदनी से जुड़े नतीजों और भू राजनीतिक गतिविधियों पर केंद्रित रहेगा.
0: Before we go any further in the program, may we once again remind our listeners, views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We also advise our listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सरब जी.
0: जी,
1: विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों एफपीआई अगस्त के पहले हफ्ते में भारतीय शेयर बाजार में शुद्ध खरीदार बने रहे. ताजा डिपॉजिटरी आंकड़ों के अनुसार एफपीआई ने इस महीने अभी तक घरेलू शेयर बाजार में 12,921 करोड़ रुपए का निवेश किया है. जुलाई में खरीदारी में आई गति अगस्त में भी जारी रही है. ये तेजी घरेलू आर्थिक आंकड़े और कंपनियों की तिमाही आमदनी मजबूत रहने के बल पर आई है. इस बीच ऋण बाजार में निवेश का रुख मिला जुला रहा है. अभी तक अगस्त में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जनरल लिमिट की श्रेणी में ऋण प्रतिभूतियों में 622 करोड़ रुपए निवेश किए हैं. हालांकि फुली एक्सेसिबल और वॉलंटरी रिटेंशन श्रेणियों से आलोच्य अवधि के दौरान 350 करोड़ रुपए से अधिक की निकासी हुई है. और अब आज के हमारे पहले श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से काशीनाथ. आपका स्वागत है मार्केट मंत्र में. सवाल पूछें.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्रा जी.
1: जी, गुड इवनिंग.
3: मेरा सवाल है, मेरे पास दो फ्लेक्सी कैप फंड है. जैसे कि फ्लेक्सी कैप और जो फ्लेक्सी कैप, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए. फंड अच्छा है कि बुरा है? धन्यवाद
2: जी. देखिए, कोई भी फ्लेक्सी कैप फंड काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं. फंड मैनेजर के पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो किस टाइप के मार्केट सेगमेंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप. और किसी भी फंड को अच्छे या बुरे आकलन के लिए आप बहुत छोटे अवधि के रिटर्न्स के ऊपर उस पर अपनी कोई भी धारणा ना बनाएं. थोड़ा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को देखें, और अगर फंड थोड़ा हाल फिलहाल में अंडर परफॉर्म करता भी है तो उससे बहुत ज्यादा हताश ना हो, उसको थोड़ा टाइम दें. तो आप इन दोनों फंड्स का आकलन करें, थोड़ा 3 साल 5 साल के रिटर्न्स देखें कि अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कैटेगरी में बाकी पीयर्स के अगेंस्ट कैसे कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अपना निर्णय लें. बहुत जल्दी ना करें बेचने की, क्योंकि अब इक्विटी में भी टैक्स लगता है, तो अगर आप कोई भी जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं फंड स्विच करने का तो आपके लिए एक टैक्स का बड़ा कॉस्ट उसमें इन्वॉल्व होता है, तो डोंट बी इन अ हरी।
1: सो आशुतोष जी, सेबी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें कुछ तथ्य आए हैं जिन पर हम आपकी टिप्पणी चाहेंगे। उसमें कहा गया है कि एसआईपी को ज्यादा से ज्यादा जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो एडॉप्ट कर रहे हैं, और जो अकाउंट्स हैं वो भी बड़े हैं, और जो वैल्यू है अगर हम पिछले वित्त वर्ष में देखें तो 40 लाख अकाउंट एड हुए टोटल नंबर में, और एवरेज नेट मंथली एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी 25.8% बढ़ी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, ये क्या भारतीय म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भरोसा बढ़ रहा है निवेशकों का?
2: जी बिल्कुल, मेरी राय में म्यूचुअल फंड एक रिटेल इन्वेस्टर के इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने का, ब्रॉडली इक्विटी और डेट मार्केट्स में पार्टिसिपेट करने का एक बेहतरीन साधन है। वेल रेगुलेटेड, वेरी ट्रांसपेरेंट और रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ये फंड्स आते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स की अच्छे से यहाँ पे प्रोटेक्शन की व्यवस्था है, तो ओवरऑल काफी अच्छा सेटअप है। म्यूचुअल फंड्स एक काफी रिलायबल और रोबस्ट वेल रेगुलेटेड प्रोडक्ट है, और इनमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ना हाल फिलहाल के सालों में ये एक अच्छा संकेत है। और एसआईपी और भी अच्छा ट्रेंड है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो अगर इन्वेस्टर्स एक साथ अपना पैसा ना लगाकर रेगुलर डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वो मार्केट के उतार चढ़ाव से बहुत जल्दी निराश या परेशान नहीं होते। तो एसआईपी एक बेहतरीन साधन है मार्केट्स में इन्वेस्ट करने का। दूसरा ये भी होता है कि जब भी मार्केट गिरते हैं एसआईपी निवेशक आमतौर पर देखा गया कि बहुत जल्दी मार्केट से भाग नहीं खड़े होते
1: जी
2: मार्केट फॉल में, और ये लंबे समय में इक्विटी मार्केट से रिटर्न बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप डाउन मार्केट में सब कुछ बेचकर भाग ना जाएं। तो एसआईपी उसमें भी काफी हेल्प करता है रिटेल इन्वेस्टर्स की बने रहने में मार्केट के उतार चढ़ाव के माहौल में। तो बहुत अच्छे ट्रेंड्स हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है अगर ये बरकरार रहता है तो भारतीय निवेशकों रिटेल आम निवेशक के लिए ये काफी लाभदायक हो जाने में सक्षम है।
0: आशुतोष, वी कम बैक टू यू ऑन दैट। मीनवाइल वी कनेक्ट विद आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम मुंबई। अमित जी प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
4: नमस्ते मैडम, मैं अमित बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र बारामती से।
0: जी
4: मेरा सवाल है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा का एनएफओ न्यू फंड ऑफर एक म्यूचुअल फंड है, उसमें मैंने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो अच्छा है या नहीं जरा बताइए। और दूसरा सवाल, अब मैं इंडिया फर्स्ट के बारे में पूछ सकता हूँ क्या मैडम?
0: सॉरी,
4: हेलो, इंडिया फर्स्ट में भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया है 5 साल के लिए, हर साल मैंने 1-1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूँ, और 5 साल तक वो पैसे भरना है, 7 साल के बाद मुझे मिलेगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट अच्छा है या नहीं ये भी बताइए। थैंक यू।
1: आशुतोष जी, श्रेणी के हिसाब से आप बता सकते हैं।
2: जी तो देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की आपने एनएफओ की बात करी, देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आमतौर पर आप एनएफओ में निवेश करने से बचें। अभी आपने लगा दिया है तो देखिए नए फंड के बारे में कुछ भी जानकारी देना कहना मुश्किल होता है जब तक कि उसका कुछ ट्रैक रिकॉर्ड नहीं बिल्ड होता कि फंड मैनेजर किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, किस टाइप के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्या उनका पोर्टफोलियो बनाने का स्ट्रेटजी रहता है। तो नए फंड के बारे में कुछ भी टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आमतौर पर मैं आपको ये सलाह दूंगा कि बहुत सारे अच्छे रनिंग वेल रनिंग फंड्स, लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स उपलब्ध हैं आपके पास। प्रेफर करिए कि नया फंड अगर कुछ ऐसा खास नहीं

0: दे रहा है जो कि एग्जिस्टिंग फंड से आपको जो इन्वेस्टमेंट नीड पूरी नहीं हो रही है, तो ही आप एनएफओ की तरफ जाएं, अदरवाइज आप लॉन्ग स्टैंडिंग फंड्स में ही अपना निवेश करें। बहरहाल इस फंड में क्योंकि आप निवेश अभी कर चुके हैं तो अब आप इसको देखिए, थोड़ा धैर्य से फंड मैनेजर को पोर्टफोलियो बनाने दीजिए किस टाइप का वो परफॉर्म करता है। कम से कम साल डेढ़ साल बाद आप सोचिएगा इस बारे में कि ये फंड का क्या करना है।
1: दिल्ली से हमारे अगले श्रोता के मदन जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछे।
2: नमस्कार, मार्केट मंत्रा से
1: आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आप यदि अपना स्थान चेंज करें। थोड़ी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है, अगर आप दोबारा हमें फिर फोन कर सकें फिर से।
2: हाँ
1: जी, बताइए बताइए बताइए।
2: एक क्वेश्चन ये है कि मैंने दो तीन में शिफ्ट किया होगा पांच पांच हजार के, मैं सीनियर सिटीजन हूँ, तो उसमें एच डी एफ सी मिड कैप ऑपर्चुनिटी फंड, मिड मल्टी कैप फंड, उनसे तो मैं सेटिस्फाई हूँ, लेकिन एक्सिस लार्ज कैप फंड उसमें मेरा सी ए जी आर सिर्फ 7% 8% आ रहा है, तो पिछले चार साल से मेरा शिफ्ट चल रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूँ या डिसकंटिन्यू कर दूंगा, मेरा ये प्रश्न।
0: जी देखिए, पहली बात तो आपका ओवरऑल आपने आपकी स्ट्रेटजी सही है कि आपने डाइवर्सिफाइड फंड्स को चुना है, आपके पास एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक मिड कैप फंड है, तो ओवरऑल आपने बहुत ज्यादा सेक्टर थीमेटिक फंड्स की तरफ आप नहीं गए हैं। ये तो इसमें मैं आपकी सराहना करूंगा कि आपकी चॉइस ऑफ कैटेगरी ऑफ फंड्स अच्छा है। एक्सिस लार्ज कैप पिछले कुछ साल थोड़े निराशाजनक रहे हैं इस फंड के लिए जरूर, क्योंकि परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाए हैं, तो अगर आप काफी निराश है इस फंड से तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले सकते हैं।
3: वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, दिनेश जी सवाल पूछें।
4: नमस्कार, मैं दिनेश कुमार बोल रहा हूँ दिल्ली अशोक विहार से।
3: जी,
4: मेरे दो क्वेश्चन हैं, एक तो ये है कि जब गोल्ड फंड और सिल्वर फंड बढ़ते हैं या कम होते हैं तो डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउसेज जो है वो गोल्ड या सिल्वर फंड या ईटीएफ के जो परसेंटेज इंक्रीज है वो अलग अलग क्यों दिखाते हैं जबकि एक शुद्ध से है। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे गोल्ड फंड है वो उसको एफओएफ कहते हैं, फंड ऑफ फंड्स, तो इसका मतलब क्या ये हुआ कि उस हम इन्वेस्टर जो है उसके लिए एक्सपेंस बियर करता है और वो फंड जिस फंड में इन्वेस्ट कर रहा है उसका भी एक्सपेंस होता होगा, वो भी बियर करता है, क्योंकि हमें जो पता चलता है केवल फर्स्ट फंड का ही एक्सपेंस रेशो पता चलता है, दूसरे फंड का एक्सपेंस रेशो नहीं पता चलता है। थैंक यू।
0: जी, तो पहला सवाल आपका कि गोल्ड और सिल्वर फंड्स में जब सारे ही ये फंड्स गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं तो इनके प्राइस में या इनके रिटर्न्स में डिफरेंस क्या होता है? काफी अच्छा सवाल है, आपने काफी आपने ऑब्जर्व किया, उस बेसिस पे आप ये पूछ रहे हैं। तो देखिए, गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, इनका जो आपको रिटर्न मिलता है वो डिपेंड करता है मार्केट के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर। तो जो ईटीएफ्स होते हैं वो ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट में, और स्टॉक मार्केट में ये जरूरी नहीं है कि जो अंडरलाइंग एनएवी है फंड का, क्लोजिंग प्राइस या फंड्स का ट्रेडेड प्राइस एनएवी के आसपास हो। काफी बार देखा गया है कि फंड्स प्रीमियम पे या कभी कभी डिस्काउंट पर भी ट्रेड करते हैं, तो जो इन्वेस्टर के रिटर्न्स होते हैं वो इन पर उनके ट्रेडेड प्राइस पर निर्भर करते हैं, ना कि अंडरलाइंग एनएवी पर, तो इस वजह से इनके रिटर्न्स डिफर कर जाते हैं। दूसरी बात, जो गोल्ड फंड ऑफ फंड्स होते हैं वो बेसिकली आप देखिएगा कि हर फंड कंपनी के पास एक ईटीएफ वेरियंट होता है और एक एफओएफ वेरियंट होता है। एफओएफ वेरियंट सिंपली ये करता है कि आपका पैसा जो कलेक्ट करता है वो उठाकर ईटीएफ में लगा देता है, गोल्ड उन्हीं का जो गोल्ड ईटीएफ होता है। तो यहां पर भी जो आपको एनएवी डिक्लेयर होती है फंड ऑफ फंड्स की, वो ईटीएफ के ट्रेडेड स्टॉक मार्केट प्राइस पर निर्धारित होती है, इसलिए इनके रिटर्न्स डाइवर्ज करते हैं अलग अलग फंड में। कुछ फंड्स में जिनमें ट्रेडिंग वॉल्यूम काफी अच्छे होते हैं, प्रीमियम या डिस्काउंट कम रहता है, एनएवी के क्लोज ट्रेड करते हैं, वो काफी इन्वेस्टर सेंट्रिक है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है, और उनके रिटर्न्स एनएवी के रिटर्न्स के आसपास रहते हैं। लेकिन जो फंड्स में ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होती है इसलिए प्राइस काफी वेरी कर जाता है, प्रीमियम या डिस्काउंट पे रहता है, उनके रिटर्न्स में आपको काफी बार कुछ उठापटक दिखेगी, एनएवी के क्लोज नहीं होगा। और आपका ये आंकलन बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये एफओएफ्स ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो एफओएफ के एक्सपेंस

0: लेयर होती है वो ETF के एक्सपेंस के ऊपर होती है. ये बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं होता है, एक मामूली सा एक्स्ट्रा लेयर होता है, क्योंकि FOF अपने आप में कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसे इकट्ठा करकर आप जो पैसे उसमें निवेश करते हैं वो पैसा इकट्ठा करके ETF में लगा देता है. वहां पे और कोई काम नहीं हो रहा है, कोई और फंड मैनेजर का ऐसा कोई रोल नहीं होता है खास, तो वो एक्सपेंस की लेयर काफी थिन होती है लेकिन जरूर होती है. तो अगर आप एक्सपेंस देखना चाहते हैं तो आप किसी भी फंड कंपनी के ETF का और FOF का, आप दोनों का अगर एक्सपेंस देखेंगे और उनको ऐड कर देंगे तो आपको थोड़ा अंदाज लगेगा कि आप टोटल एक्सपेंस कितना दे रहे हैं. आपको कौन सा चुनाव करना चाहिए, देखिए अगर आपके पास स्टॉक मार्केट में, आप वैसे भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, आपके पास डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आप ETF की तरफ जा सकते हैं. लेकिन सिर्फ एक गोल्ड फंड में निवेश करने के लिए अगर आप आपके लिए कन्वीनियंट ज्यादा होगा कि आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फॉर्मेट में FOF ही खरीदें, लेकिन अगर आप आमतौर पर वैसे भी स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आप जरूर ETF की तरफ भी जा सकते हैं. हाँ, ETF खरीदते हैं तो जरूर आप खरीदने से पहले देखिए कि क्या ये यूनिट्स NAV से बहुत ज्यादा डिस्काउंट या प्रीमियम पे है. अगर प्रीमियम पे है तो आप समझिए कि आप एक्स्ट्रा खर्चा उठा रहे हैं. अगर 10 रूपये की NAV की चीज मार्केट में 12 रूपये पर ट्रेड हो रही है तो आप ये मानिए कि 10 रूपये का सामान आप 20% महंगा खरीद रहे हैं. तो ये इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा. NSE की वेबसाइट पे हर फंड की INAV बताई जाती है. INAV होता है रियल टाइम NAV इस फंड की क्या होनी चाहिए, उससे आप क्लोजिंग प्राइस को कंपेयर कर ये आप निर्धारित कर सकते हैं.
1: और अब शंकर भोपाल से हमें कॉल कर रहे हैं. शंकर जी आपका स्वागत है, सवाल पूछे.
2: पहला सवाल बड़ा जनरल है, क्या एक फंड हाउस में हम दो बैंक डिटेल्स ऑपरेट कर सकते हैं क्या, सो दैट मेरी जब मर्जी हो जहां से मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ या जिधर मैं पैसा रखना चाहूँ, मेरे अकाउंट है दोनों, क्या दो अकाउंट एक ही म्यूचुअल फंड हाउस में जैसे कोटक या टाटा या कोई भी ऑपरेट कर सकते हैं. दूसरा सवाल मेरा है सर, मेरा एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट टाटा में है, टाटा म्यूचुअल फंड, और कुछ एक्सिस में है, क्या इसमें कुछ अच्छे फंड है जो अच्छा कर रहे हैं, जैसे मिड कैप हुआ में की कैटेगरी में हुआ या लार्ज एंड मिड कैप हुआ एक्सिस में हुआ, तो इसमें कोई अच्छे फंड एक्सिस और टाटा ही जो है मेरा, तो बता सकते हैं क्या प्लीज, थैंक यू.
0: आपका पहला सवाल, क्या दो बैंक अकाउंट में ऑपरेट कर सकते हैं सेम AMC में, जी बिल्कुल. देखिए म्यूचुअल फंड्स में जो भी आपका इन्वेस्टर डिटेल होता है वो फोलियो लेवल पर मैप होता है. आपकी नॉमिनेशंस, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारी चीजें पर फोलियो होती हैं. तो आप अगर सेम फंड में भी दो अलग अलग फोलियो से आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों फोलियो में अगर अलग अलग बैंक अकाउंट से आपने इन्वेस्ट किया है तो ये सारी फ्लेक्सीबिलिटी आपके पास है, आप बिल्कुल दो अकाउंट से मैनेज कर सकते हैं. बस ये आप ध्यान रखें कि जब भी आप किसी फोलियो में रिडम्पशन डालेंगे तो पैसा हमेशा उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो उस फोलियो पे मैप्ड है. ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, क्योंकि पैसा हमेशा निवेशक के खाते में ही जाएगा और उसी खाते में जाएगा जो आपने अपने फोलियो में मैप किया हुआ है. तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है. अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगता है मल्टीपल बैंक अकाउंट्स को अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मैप करना, तो ये फैसिलिटी आपके पास पॉसिबल है, ये फ्लेक्सीबिलिटी और ये निर्णय आपका है. दूसरा टाटा एक्सिस, देखिए मैं आपको राय दूंगा कि बहुत ज्यादा किसी एक AMC से आप के लिहाज में ना देखें. आप पहले देखिए कि आपका निवेश की जरूरत क्या है और किस तरह का फंड आपके लिए सूटेबल रहेगा, उसके बाद आप उस कैटेगरी के फंड्स में चुनाव करें. तो स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होना चाहिए कि टाटा या एक्सिस या कोई और AMC, स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि आपकी निवेश की जरूरत क्या है और उसके लिए सही फंड कौन सा है, वहां से अपने फंड के चुनाव की शुरुआत करें.
3: लेट्स आस्क जितेंद्र फ्रॉम जयपुर व्हाट हिज क्वेश्चन.
4: हेलो सर, जैसे इतना दिन मार्केट मतलब सुनने के बाद ऐसा हमको लगा कि नए निवेशक के लिए सबसे पहले कोई इंडेक्स फंड ले या एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ले, तो क्या अगर एग्रेसिव हाइब्रिड फंड के जगह इक्विटी सेविंग ले वो भी चलेगा, और निफ्टी या जैसे कोई भी इंडेक्स फंड के जगह मिड कैप बल्क इंडेक्स फंड ले तो क्या चलेगा क्या नए निवेशक के लिए?
0: जी पहला आपने पूछा इक्विटी सेविंग्स. देखिए इक्विटी सेविंग्स आप ले सकते हैं लेकिन आपको अपने रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना होगा. इक्विटी सेविंग्स फंड में आप मानिए कि आपका करीब 35-40% पैसा ही इक्विटी मार्केट का एक्सपोजर आपको मिलता है, बाकी जो इक्विटी का एक्सपोजर इन फंड्स में होता है वो डेरिवेटिव्स के जरिए हेज्ड रहता है, तो उसमें आपको मार्केट के रिटर्न्स मार्केट गेन्स नहीं मिलते हैं. तो इक्विटी सेविंग्स फंड्स आमतौर पर कंजर्वेटिव निवेशक जो एक मॉडेस्ट रिटर्न विद मॉडेस्ट रिस्क की उनकी अभिलाषा रहती है, रेगुलर इनकम सीकर्स हैं उनके लिए इक्विटी सेविंग्स को आमतौर पर देखा जाता है कि एक अच्छी कैटेगरी माना जाता है. तो अगर आपको मॉडेस्ट रिटर्न्स चाहिए तो आप इक्विटी सेविंग्स की तरफ जा सकते हैं. देखिए शुरुआती निवेशक के लिए मेन एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स इसीलिए ही रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि जिन नए निवेशक

0: जिनको इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, उनके निवेश करती है अगर मार्केट 20-25% कभी गिर जाती है तो वो निवेशक काफी चांस होता है कि वो हताश होकर मार्केट को छोड़कर चले जाएंगे और फिर जिंदगी में शायद कभी वो इक्विटी मार्केट्स में वापस मुड़कर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो इस पॉसिबिलिटी से बचे रहने के लिए एग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स रिकमेंड किए जाते हैं क्योंकि इनमें 25% करीब पैसा आपका डेट में लगा रहता है, तो हमेशा ही जब भी मार्केट गिरती है फंड्स मार्केट से कुछ कम गिरते हैं तो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज मिलता है नए इन्वेस्टर्स को। बाकी ये एडवांटेज इक्विटी सेविंग्स फंड में भी मिलेगा क्योंकि उनमें तो इक्विटी और भी कम होता है, लेकिन हाँ फिर आपको रिटर्न्स भी उनसे कम मिलेगा। दूसरा आपका सवाल, इंडेक्स फंड में क्या मिड कैप इंडेक्स फंड की तरफ जा सकते हैं? फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह होगी नहीं, इसी रीजन से क्योंकि मिड कैप फंड्स में काफी वॉलिटिलिटी रहेगी, अगर मार्केट गिरती है तो काफी आराम से गिर सकते हैं मिड कैप्स। तो सिर्फ इस रीजन से मैं आपको सलाह दूंगा कि एज अ फर्स्ट इन्वेस्टमेंट मिड कैप में इन्वेस्ट करने से बचें।
1: और असम से सुकृत है हमारे अगले कॉलर, आपका बहुत बहुत स्वागत, सवाल पूछिए।
2: गुड इवनिंग मैडम
1: जी। गुड इवनिंग
2: जी मैडम, सवाल ये है कि हमने चिल्ड्रेन बेनिफिट फंड मतलब एसबीआई का वो म्यूचुअल फंड एसआईपी किया था 4000 करके जी, तो उसमें से ये चिल्ड्रेन फंड ये मेरे लिए कैसे रहेगा, बच्चे के लिए मतलब सही रहेगा या नहीं रहेगा, और उसके लिए मेरे पास कोई बॉन्ड पेपर तो नहीं है अभी, तो उसके लिए कौन सा कैसे मेरे को बॉन्ड पेपर डाउनलोड करके मतलब हार्ड पेपर रखना है, यही मेरा सवाल है
0: जी। बच्चे के लिए निवेश किया है, लंबे समय का निवेश है तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। लंबे समय के लिए आप धैर्य के साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये एक इक्विटी फंड है, आप ये मानकर चलिए कि इक्विटी मार्केट्स के उतार चढ़ाव के साथ साथ ये जब मार्केट गिरेगी तब तक ये फंड भी गिरेगा, तो अगर आप वो उतार चढ़ाव को बर्दाश्त करने की क्षमता रखते हैं उससे आप बहुत हताश नहीं होंगे, लंबे समय के इन्वेस्टमेंट के लिए आप रख सकते हैं। आपको एक जैसे मैं समझ पाया हूं, देखिए म्यूचुअल फंड्स में कोई बॉन्ड पेपर इस तरह से या सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप आपको नहीं मिलता है जैसे कि बॉन्ड्स में होता है। आप म्यूचुअल फंड कंपनी जिसमें भी आपका एसबीआई में है तो आप एसबीआई के इन्वेस्टर सर्विसेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ईमेल कर दें, आपके पास ईमेल पे आता भी होगा अगर आपने अपने फोलियो में अपना ईमेल मैप किया हुआ है, तो काफी संभावना है कि आपका जब जब भी इसमें निवेश होता है एसआईपी इंस्टॉलमेंट जाती है आपको एक स्टेटमेंट ईमेल करी जाती होगी। लेकिन अगर वो नहीं आ रही है तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पर जाएं, वहां आपको इन्वेस्टर सर्विस सेंटर का नंबर मिलेगा, वो नंबर डायल करके आप उनको अपना फोलियो या कुछ जानकारी वो मांगेंगे और आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आपको एक स्टेटमेंट इशू कर दें, आपको वो ईमेल पर मिल जाएगा।
1: हाँ, वो बॉन्ड मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने अभी बॉन्ड आपको लगता है फिजिकली होना चाहिए?
0: तो म्यूचुअल फंड्स में ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं इश्यू किया जाता बॉन्ड्स की तरह, तो स्टेटमेंट आपका जो स्टेटमेंट होता है वही आपका ओनरशिप का एंटाइटलमेंट होता है।
3: लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट कॉलर फ्रॉम दिल्ली, विनोद जी सवाल पूछे।
4: मार्केट बंद रहती हूँ, मैं से नमस्कार
3: जी। नमस्कार,
4: मेरा एक्सपर्ट टीम से मेरा ये सवाल है कि रिबैलेंसिंग के बारे में हम जैसे रिबैलेंसिंग करते हैं ना, तो उसमें एक तो टैक्सेशन का इशू आ जाता है और दूसरा वो जो फंड फिर हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाता है वहां से खर्च हो जाता है, तो इसका कोई दूसरा रास्ता है कि टैक्सेशन से कैसे बचा जाए, और अगर हम लंबे समय तक रिबैलेंस ना करें तो उसका हमारी रिटर्न पे क्या प्रभाव पड़ता है? और एक सवाल हो रहा है कि अगर एक पर्टिकुलर फंड हाउस का हम स्विच करते हैं तो उसी फंड हाउस के सारे बाकी स्कीम्स दिखाता है वो, अगर मुझे किसी दूसरी फंड हाउस में जाना है तो कैसे करते हैं, स्विच करने में दिक्कत आती है?
0: देखिए पहला सवाल आपका टैक्सेशन को लेकर, देखिए टैक्सेशन एक हकीकत है, आप उससे बच नहीं सकते हैं। हाँ, आपको ये देखना है कि आप रीबैलेंसिंग अगर आप डिसिप्लिन से करते हैं तो आप टैक्स से बच सकते हैं, उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आप बहुत जल्दी जल्दी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस ना करें। शायद साल में आप अगर एक बार अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करते हैं, रीबैलेंस करते हैं, तो मेरा ख्याल वो पर्याप्त है। और अपना कोई रूल बनाइए कि जब भी आपकी एसेट एलोकेशन 7-8-10% से डेविएट करेगा तभी आप रीबैलेंस करेंगे, और साल में एक बार करेंगे। और रीबैलेंसिंग के लिए फिर आप वही फंड्स यूज करिए जिनमें जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की श्रेणी में आते हैं, वही यूनिट्स वही फंड्स के साथ आप करें। आपके पास 1,25,000 तक का एनीवेज टैक्स एग्जम्पशन है इक्विटी में, तो अगर आप ये सारे टूल्स यूज करते हैं, और उसके बाद आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि अपनी रीबैलेंसिंग को आप अगर किसी एक साल में रीबैलेंस करना पड़ रहा है, मार्केट में इतना उठा पटक हुआ है कि आपको रीबैलेंस करना पड़ेगा, तो वो अगर आप फाइनेंशियल ईयर में कुछ आप मार्च में अगर यूनिट्स बेचते हैं, कुछ अप्रैल में बेचते हैं, तो आपको दो फाइनेंशियल ईयर ईयर का सवा लाख रुपए का कैपिटल गेन एग्जेम्पशन मिल जाता है, तो 2.5 लाख तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप की चीजें आप फॉलो कर अपना टैक्स मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, आपने कहा कि अगर आप रीबैलेंस नहीं करते, तो देखिए आप रीबैलेंस अगर नहीं करते, मानिए आप 70% इक्विटी 30% डेट आपने अपने लिए एसेट एलोकेशन निर्धारित करी थी जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे थे, अब अगर इक्विटी मार्केट चल पड़ती है और ये 70% जो आपका वेटेज था ये बढ़कर 80% हो जाता है, तो वो आप थोड़ा सा एडिशनल रिस्क ले रहे हैं। बस इतना ही है कि आपका उसके बाद ज्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज हो गए हैं एज अ पोर्टफोलियो। आपकी जरूरत के लिए क्या वो सही है, उचित है, या आपको रीबैलेंस करना आवश्यक है, ये आपकी निजी नीड्स क्या है, इन्वेस्टमेंट की आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो आपका रिस्क रिटर्न थोड़ा वेरी करेगा, उसको आपको देखना है।
1: अगले कॉलर है फरीदाबाद से मनिंदर। मनिंदर जी अपना सवाल पूछे।
5: हाँ सर, ये मैं जानना चाह रहा था कि शिफ्ट आउट करने में कितना टाइम लेना चाहिए कंपनी को। फोर्थ को हमने शिफ्ट आउट किया है दूसरे फंड में, तो वो 2 दिन लगा देते हैं, क्या सही है?
0: जी, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसी तरह होता है, क्योंकि आप जिस दिन सिर्फ से आप जिस दिन भी आप रिडम्पशन डालिएगा, तो अगर आप 3 बजे से पहले रिडम्पशन डालेंगे तो उस दिन जो रात को एनएवी फंड डिक्लेयर करेगा आपके, उस एनएवी पर आपकी यूनिट्स रिडीम होंगी। अगर दोपहर तीन बजे के बाद अगर आप रिडम्पशन डालते हैं तो अगले दिन शाम की आपको एनएवी मिलेगी, और उसके बाद 1 से 2 दिन जो बैंक ट्रांसफर में पैसा लगता है, अगर बीच में छुट्टी आ जाती है, शनिवार इतवार आ जाता है, तो वो दिन इसमें ऐड होंगे, तो 2 से 3 दिन लगते हैं और ये नॉर्मल है।
3: Alright, and now let's see how has been the movement of crude oil. Global crude oil prices declined last week following a deal between Iran and Oman to reopen the Strait of Hormuz. The two countries are also seeking to charge a fee on ships crossing the strait. During the week at the Intercontinental Exchange, ICE, Brent crude October futures plunged 5% to settle at $83.55 per barrel. West Texas Intermediate crude September futures stumbled 7.7% to end at $78.18 per barrel.
1: स्टील एंड कमोडिटीज, सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में इस सप्ताह तेजी दिखाई दी। अमरीकी डॉलर में नरमी और अमेरिका के सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में कमी के बीच सोने चांदी की कीमतों में बढ़त देखी गई। अमरीका के श्रम आंकड़े उम्मीद से कमजोर आने से अमरीकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में वृद्धि की आशंका कम हो गई और इससे भी निवेशकों की धारणा को बढ़ावा मिला। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध वाले सोने की कीमत सप्ताह के दौरान 5.9% के उछाल से 1,51,820 रूपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज हुई। इस बीच सितंबर अनुबंध वाली चांदी की कीमत 6.6% बढ़कर 2,31,466 रूपये प्रति किलोग्राम हो गई। उधर कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाला सोना सप्ताह के दौरान 7.1% की वृद्धि से $4,399.70 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंचा। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी सप्ताह के दौरान लगभग 10% उछाल दर्ज करती हुई $63.49 प्रति ट्रॉय आउंस पर पहुंच गई।
3: Alright, now let's take a quick look as to how the markets are expected to show up next week. The domestic investors are set to navigate a week packed with key market triggers including macroeconomic data, quarterly earnings reports and geopolitical developments. Markets are likely to take cues from foreign institutional investor inflows, commodity prices and currency movements. Market participants will closely monitor monthly mutual fund data, the quarterly bulletin of the periodic labor force survey and retail and wholesale inflation prints. Globally, investors will focus on geopolitical developments surrounding the West Asia conflict along with oil market reports from the International Energy Agency and the Organization of the Petroleum Exporting Countries.
1: कार्यक्रम का समय समाप्त होने को है, सो चर्चा को भी अब हम यहीं विराम देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी, आप आए और आपने हमारे सभी श्रोताओं के विस्तृत सवालों के इतने अच्छे जवाब दिए।
0: धन्यवाद।
3: लिसनर्स, बिफोर वी रैप अप टुडे शो, अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स इन्फ्यूज ओवर 12,900 करोड़ रुपीज इनटू इंडियन इक्विटीज ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट। ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस टंबल लास्ट वीक। and domestic investors to focus on inflation data, corporate earnings results, and geopolitical

0: political developments for Q's next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।
0: You are listening to a repeat broadcast of today's Market Mantra program, originally aired at 6:30 PM.
2: सामने आप सुन रहे थे प्रोग्राम मार्केट मंत्रा, ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं और सर्विस की नशरियात। प्रोग्राम इरशाद तमाम सामने की खिदमत में अब्दुल्ला की जानिब से पुरखलूस आदाब।

जमीन ससुराल कल गर्भ पर मोहम्मद रफी का गाया हुआ आपने सुना। बोलो कलम बंद किया नसर जयपुरी ने और मौसकी तरतीब दी शंकर जयकिशन ने। फरमाइश आप सबके में मौसूल हुई मुल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव जैन और छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, सदफ इकबाल फूल वाले, लखमीनिया जिला बेगूसराय से शमीम अहमद, इमरान अहमद और अहले खाना इस नंबर को सुनना चाह रहे थे। पटेल नगर मलोर से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंचन सुनार, कुसुम और सरोज सुनार के

शामिल हुई। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, तुम्माला सुरलकर कुमकुम सुरलकर के साथ है। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा की फरमाई शामिल हुई। सेक्टर ससुर मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा, रीतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा। कलका से चंद्र बजाज, साहिल बजाज, मिट्टा बजाज। गांव वडा घर निमनाबाद जिला जींद, हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह और घर के तमाम अफराद। महादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। अस्तपुरा जिला मऊ से मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। और ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है सभी मुल्ला जी देश मुल्ला जी रफीक मुल्ला जी की बरगत बेलगुली कर्नाटक से। सैयद मसरूर, शाहिन हसन, नाजिया इब्राहिम, कुमारेड़ा, सहारनपुर से फरमाइश इरसाल कर दे। चुमरपुरा, उदयपुर के सबिया खानम, फरीदाबाद और ईसा खातून भी शामिल हुई प्रोग्राम में और ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं। प्रोफेसर गौरल खंडवा से आनंद जोशी, तनुज जोशी, फाल्गुनी जोशी और इनके साथ एक और जोशी है। सभी ये फरमाइश चंडीगढ़ से मौसूल हुई है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। मोताला बाजार से बबलू ठेकेदार शेख वजीर सुहेल शेख। गांव कलाना राजस्थान से विक्रम सचिन और योगेश, विक्रम करवासरा इनका नाम है, इसी तरह से इनके सभी घर के लोगों का नाम। ये फरमाइश हमें इरसाल करते हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, मायरा सुरोशे, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से फरमाइश हमें मौसूल हुई है। गांव वाराणसी हिसार से राजकुमार दुद्दी, प्रमोद कुमार दुद्दी, पुष्पेंद्र कुमार दुद्दी फरमाइश हमें इरसाल करते हैं। अशोक, सविता, अनिकेत और भी इनके घर के कुछ साथी हैं। कुम्हार गलीशी रामपुर से और पुणे वाले पुणे से अजय सोनवेन, करिश्मा सोनवेन और अमिका सोनवेन के साथ इनके घर के और साथी। कनेरा मोहल्ला से, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, वंश बत्ता। नर्मदा पार्क मंगल बेड़ा से मास्टर अली पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल। ऐसा मेरा आपको सुनवाते हैं जिस देश में गंगा बहती है। इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। इस नगमे को भी कलमबंद किया है सज्जयपुरी ने। इस नगमे की मौसीकी शंकर जयकिशन की सजाई हुई है और फरमाइश आप सब साथियों ने हमें की है। ये फरमाइश पुणे जंक्शन मस्तानपुरा से अनंत भगत, तरुणा भगत, सुलक्षणा भगत और एक और भगत है। राजधानी नई दिल्ली से स्वीटी छाबड़ा, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा, मनमोहन रजावत और मधु रजावत और राशि रक्षित हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाहजहांपुर से फरमाइश हमें इरसाल की जाती है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, इम्तियाज इमाम, आतिश ताहिरा, परमी आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ रजा, आतिश रेडियो लिसनर्स क्लब बिशनपुर घेड़ी झारखंड से। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से हमें चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, शबनम और अक्रम और बच्चे ठीक है। मध्य प्रदेश से जवाहरनगर, उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और इनके साथ इनके और भी एक दोस्त। ये फरमाइश जमीन हमें मौसूल हुई है आवास विकास कॉलोनी कासगंज से पवन गौड़, तन्मय पूर्वी गौड़, सुरेश आशीष गौड़ की। धनौरी तेलीवाला से निसार सलमानी, नुशा सलमानी, बेबी आलिया और साथ में बाबू भी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पुनम गगनेजा, निमिता हुजा साथी और भी है।
اور سامعین یہ فرمائش ہے میرا گوبھی نگر دلی سے موصول ہوئی دلاور خان حسین بانو الیزا نایاب کی. تو لیزا میرا آپ سب کی پسند پرین ہوں آپ سب کی خدمت میں ہے.

ओए होए क्या जुर्म किया, मनुख का रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

अंजूर श्रीवास्तव ये फरमाइश हमें भेजी है जरूर जरूर से बाबा साहेब बड़ौदे आदि चर्वे चंद्र प्रभा बड़ौदे ने योगेंद्र नायक गीता नायक और निहारिका सुशांत नायक जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से फरमाइश इन्होंने हमें इरसाल की है। संजीव डाबेराव डॉक्टर रसिका डाबेराव डॉक्टर कौस्तुभ डाबेराव विदर्भ कोर्ट से और वार्डिंग खेड़ा पंजाब से मेजर टोमस पिंकी अरोड़ा पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार डैनी पवार मनीष पवार अकोला महाराष्ट्र से मौसूल हुई रमेश कामले देवयानी और गणेश कामले की यवतमाल से अनिलुषा बुरांडे अनुश्री धनुश्री बुरांडे कापछड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से आमना नसरीन आजाद दसवां परी राबिया बागवान मंजिल छोटे बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान अखलाक अहमद बागवान अब आपको सुनवाते हैं ये रात फिर ना आएगी फिल्म का दुगाना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में एसएच बिहारी ने इस नगमे को कलमबंद किया है मौसीकी से सजाया है ओपी नैयर ने और आप सबकी पसंद का ये दुगाना आप सभी की खिदमत में कृष्णा गुरु ने हासिल से सुभाष योगी राजू गिलानी पप्पू और टप्पू

बाकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशोर ताशु, गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार, और ये फरमाइश हमें इस साल की है। खैर वादे पानीपत से नरेश मल्होत्रा नीटू, लाडो कोयमा थोड़े, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, और भी एक आध आपकी फरमाइश को शामिल करते हैं। उसके बाद आपकी पसंद का गाना, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चन्न, राजकुमार, कुलदीप गांधी, कैथल अग्रहार से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, और मुनिचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी। फरमाइश हमें इस साल की थी।

सदरबाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायादेवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा। तो ये सभी आप सबकी पसंद पर ये दो गाना आप सबकी खिदमत।

0: मुकम्मल हो गई है। इन्हें मुल्क भर में मुस्तफीदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1 करोड़ मकानात खवातीन को अलाट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी अमूर की सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक्दा मंजूरी देने और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में माशी तौर पर कमजोर तबकों के कुटुंबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी गई। इनमें आंध्र प्रदेश, अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू कश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया कि एयर इंडिया की फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात की तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया। यह वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया था, जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव की कमी के बायस तकरीबन 300 फीट नीचे आ गया था। इसके बाद जहाज मामूल की उड़ान भरने लगा और बाहिफाजत दिल्ली में उतर गया। इसमें कुछ मुसाफिरों और अमले के अरकान को चोटें भी आईं। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईओडी 2026 कल से 14 अगस्त तक कोची में वाकई जनूबी बहरी कमान में मुनक्किद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी ताउन और अमली हम आहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मशक के दौरान माहरीन के दरमियान तजुर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरक तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरतहाल पर मबनी अमली मशकें की जाएंगी। शहीद तूफान डॉल्फिन आज तीसरे पहर चीन के मशरकी साहिल पहुंच गया, जिनसे यिजियांग और फूजियान सूबे मुतासिर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुकाम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3 लाख अफराद को महफूज जगह पहुंचाया है। यिजियांग, फूजियान, शंघाई, जियांगजू, अनहुल, जियांगजी, हुबेई, हेनान और शांगडोंग में बुध के रोज तक शदीद बारिश होने की तवक्को है। तवक्को है कि यह तूफान शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ जाएगा और वहां पहुंचने के बाद यह बतदरीज कमजोर पड़ जाएगा। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलग्रोद इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक, जबकि दीगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इलाकाई हुकाम ने बताया कि इस हमले में 29 अपार्टमेंट इमारतों और 5 निजी मकानों को नुकसान पहुंचा। रूस के हमले में यूक्रेन में खारकीफ और साल्टिवेस्कीज जिले में एक बुलंदी रिहायशी इमारत निशाना बनी। इलाकाई गवर्नर ओले ने कहा कि इसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 13 जख्मी हो गए। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराग्ची ने आज कहा कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुजाकरात नहीं कर रहा है, अलबत्ता दोनों ममालिक के दरमियान साजिशों के तवस्सुत से पैगाम का तबादला जारी है। ईरान के सरकारी मीडिया के जरिए जारी किए गए उनके बयान के मुताबिक जनाब अराग्ची ने कहा कि बहुत से ममालिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुजाकरात दोबारा करने के लिए साजगार माहौल वजा करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है। झारखंड की सरकार ने इल्जाम और बेजाबतगियों पर जेपीएससी इब्तदाई इम्तहान को मनसूख करने से इतफाक कर लिया। एहतजाज करने वाले तलबा ने कहा कि एहतजाज जारी है, जेपीएससी के 3 अराकीन ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस के शरियात। ये सामने पेश है फरमाइशी फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम तामीले इरशाद के बाकी नगमे।

आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से, सिटी सेंटर अहमदाबाद से कंच सुनार कुसुम और सरोज सुनार, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से स्वपन ताड़े तुषार करांगले, जिगांव विदर्भ से वसंतराव भोजने पी एस नहावकर, बांगलारमकोट मुंबई से बेगम सोनम शेख, मारिया शेख मोहम्मद अरीब शेख, अकोर से विनायक बिंडे, मंगला बिंडे, शुभम बिंडे, जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, अर्जित भाटिया और इनके घर के एक और फर्द, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन, अनजान साइमन नवाज, हसन नवाज और ये फरमाइश हमें इस साल की है, गाड़गे नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पनाताई लोखंडे, शैलेश लोखंडे, रघुवीर नगर दिल्ली से फरमाइश इस साल करते हैं, जफर मौजम शेख, फलक तबसुम शेख, बेबी अलिशबा शेख, जाफरगंज जहानाबाद बिहार से इंतजार अंजुम आलम आरा ने भी हमें फरमाइश इस साल की थी, रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महविया, कविता महविया और ईशु बाबा, नरेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नाहकर, निर्मला नाहकर, विशाल नाहकर, गुजरात गांधीग्राम से परवीन सोनी, कलावती सोनी, प्रथम सोनी, मानेवाला राव रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, अंकिता भटकर, साथ में इनके एक और साथी, आइए सामने नाम आपको सुनवाते हैं पेइंग गेस्ट फिल्म का ये दो गाना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी ने बोलों को लंबत किया है और मौसीकी सजाया है सचिन देव बर्मन ने, फरमाइश आप सबकी मौसल हुई, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब राम टेके, यशोधरा राम टेके, शराव्या राम टेके, गुजरात गंजड़वारा कासगंज से जायरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी और ये फरमाइश हमें इस साल की जुम्मन खंडवा के बच्चों ने, अल्तमस अमीना मुदस्सिर इनके नाम है, मोहल्ला पठान कुरावली से बेगम समीरा खान, मोहम्मद अजीम कामरान खान, ये फरमाइश भेजते हैं ठीपर कॉलोनी खंडवा से मोहम्मद यूनुस खत्री, मोहम्मद सादिक खत्री, अयूब खत्री, ये फरमाइश हमें मौसूल हुई है पश्चिम को गंडवारा से मास्टर अली रजा सिद्दीकी, मास्टर मनोहर हुसैन अंसारी, फैजल अलीम सिद्दीकी की, बड़ी गैबी चौराहा वाराणसी से अरुण कुमार मालवीय, त्रिभुवन नाथ मालवीय, खंडवा की तीनों बहुएं साबरा शबाना और रईसा, साधु शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, जयराज प्रौट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और प्रयागराज भट्ट, और खेराना शरीफ जिला खंडवा से सलीम चौधरी, माहनूर सुल्ताना, मनोर पंजाब से राज शर्मा, योगी शर्मा, निवान शर्मा, पश्चिम तो गंडवारा से फरमाइश हमें इस साल हो चुकी है, पुरानी भिलाई 314 छत्तीसगढ़ से डॉक्टर निशान अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदो सिद्दीकी, निशान अहमद सिद्दीकी, और सहारनपुर से आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली, सहरी रेडियो स्टेशन क्लब खंडवा मध्य प्रदेश से हमीदा बानो, आशा भदौरिया और सईदा बानो, तम राम चेन्नई से शाहिद अली, फत फारूकी और हिफ्जा अली, गुजरात से महमूद मदनी, अयूब मुल्ला जी, याकूब मुल्ला जी, आशा देवी, भानु प्रिया, रविन्द्र मोहनदास किशनगंज बिहार से फरमाइश साल करते हैं, तो ये सामने आप सबकी पसंद पर ये दो गाना आप सबकी खिदमत में है।

बिहार के दिल्ली से डॉक्टर सोना, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा शामिल हो गई हैं। तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी विश्वकर्मा और चेतन विश्वकर्मा। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, नसीन जहां, मन्नत जहां, तेजस्वी चौहान, अंकिता निके चौहान, विजय चौहान। वाराणसीपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से फरमाइश मौसूल हुई। रायगढ़ बिहार से उमाराज जाधव, पवन उमा, संजय उमा। पलोंग निजामाबाद तेलंगाना से एमए वहीद्रुमानी, मौलतसी डॉक्टर मोहम्मद जमीर। दुबई नगर से पूरा टाउन से जुबैर अली खान, सबिया जुबैर, अंजुमन खान शामिल हुए हैं और ये हमें फरमाइश इरशाल करते हैं। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक और सुशांत नायक। संभल से छोटे अंसारी जी भी शामिल हो गए हैं और रुद्दीन मंथाल, शब्बीर बनहट्टी, आसिफ इकबाल, कर्नाटका गुलबर्गा से फरमाइश आई है। राहट गांव के अमरावती महाराज से दिलीप नामिकर, आशा नामिकर, अक्षय रामिकर शामिल हुए हैं और ये फरमाइश साल की है हमें। मरटाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जग्गी दुआ और सनावर से शेख मूसा, मोहसिन शहबाज भी प्रोग्राम में शामिल है। तो लीजिए साहब, आप सबकी पसंद करिए ना, आप सबकी

जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, यासून अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी को भी हमने शामिल किया। नगर महाराष्ट्र से मनोज जेठवा, आशा जेठवा।

0: कुल आवाज से रमेश कामले, दिव्यानी और गणेश कामले।
1: न कह सका
0: नगमे के साथ फरमाइश फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम था मेरे शाद खत्म होता है। ये आकाशवाणी आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। इस हमें पेश है प्रोग्राम सुर्खियों में।
2: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: आगामी 15 अगस्त को भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज हर घर तिरंगा 2026 अभियान का शुभारंभ हुआ और 17 अगस्त तक इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन के तहत करोड़ों भारतवासी हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता दर्शाने वाले राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को गर्व और उल्लास से फहराएंगे। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान और भी खास है क्योंकि वह हमारे राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में।
4: नमस्कार।
3: अशोक जी, सरकार ने 2022 में हर घर तिरंगा के तहत जो हर नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर या अपने कार्यालय पर फहराने का जो अधिकार दिया है, उसे आप कितना महत्वपूर्ण समावेशी पहल मानते हैं और भावनात्मक रूप में ये कैसे सभी भारतवासियों को जोड़ता है?
4: जैसे आपने कहा कि 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम को चलाया था, लोगों से आह्वान भी किया था और इस बार भी अगर मैं कहूं तो 26 जुलाई 2026 को जो प्रसारित मन की बात के 136वें एपिसोड में भी प्रधानमंत्री ने फिर से भारतवासियों को, भारतवंशी जो विदेश में रहते हैं उन सबको स्वतंत्रता दिवस को लेकर हर घर तिरंगा अभियान को फिर से इस बार भी पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि ये तिरंगा हमारे संविधान के आदर्शों को संजोए हुए है और ये देश को एकजुट करता है। तो इस आह्वान का अर्थ यही था कि लोगों को याद कराना कि जब इस बार 9 अगस्त आज से और 17 अगस्त तक ये जो हर घर तिरंगा अभियान चलेगा, इसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें और इस वर्ष अपने घरों पर तिरंगा फहराने और उत्सव को भव्य बनाने की अपील भी की थी कि लोगों से तिरंगे के साथ अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर करके और अपनी प्रोफाइल पिक्चर को बदलने का आग्रह प्रधानमंत्री हर साल करते हैं। तो इस बार की कुछ विशेषताएं जिनकी ओर आपने भी ध्यान दिला वो ये है कि ये अभियान राष्ट्रव्यापी जो है 9 अगस्त से 17 अगस्त तक चलेगा और इसको जैसे आपने भी कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ भी इसको जोड़कर इस बार मनाया जाएगा। तो गीत के बोल और धुन हमारी तस्वीर पर खुद ब खुद जुड़ जाएंगे, ये एक विशेष फीचर इस बार है। कुल मिलाकर जो 9 दिन ये चलेगा और उसकी जो सूत्रधार होते हैं वो हमारी कल्चर मिनिस्ट्री जो होती है वो इसका अभियान करती है और एक और महत्वपूर्ण पहलू इस बार जोड़ा गया है।
3: इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जो आपने अभी जिक्र किया कि बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज भी तिरंगा के आसपास प्लान की गई है, यात्राज, रैलीज, कॉन्सर्ट्स, एग्जीबिशंस और क्विज भी है। सो केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस अभियान का जब शुभारंभ किया तो उन्होंने नागरिकों से इन गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेने का भी आह्वान दिया। सो आपको लगता है इससे एक जागरूकता फैलेगी सब नागरिकों में, जो अतीत का हमारा गौरव है, वर्तमान की जो कर्तव्य निष्ठा की आवश्यकता है और भविष्य के सपनों का जो एक प्रतीक बना है तिरंगा, उसके बारे में ज्यादा जागरूकता फैलेगी?
4: कि देश के हर जिले और ब्लॉक में स्तर पर स्थानीय सांसदों, विधायकों और सामाजिक संगठनों के नेतृत्व में विशाल तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं, जिनमें युवाओं, जेंजी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने का एक तरह से मौका मिलेगा। और इस बार इस बात का भी विशेष ध्यान दिया गया है कि झंडा फहराने के दौरान और अभियान

0: खत्म होने के बाद तक झंडे को उतारते समय जो है हमको कई नियमों का पालन करना होगा, और इसीलिए जब हम इसको राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहते हैं तो इसका मुख्य देश भारत की स्वतंत्रता दिवस के जो अवसर पर प्रत्येक नागरिक जो है वो इसमें उसका जुड़ाव हो। और एक और बहुत महत्वपूर्ण पहल इस बार की गई है कि उसका नाम रखा गया है सूर्य पथ तिरंगा, यानी विदेश मंत्रालय के सहयोग से एक अनोखी एक पहल शुरू की जा रही है। दुनिया के 54 देशों में मौजूद जो भारतीय दूतावास या हाई कमीशन हैं या कॉन्सुलेट हैं, वो उगते सूरज की दिशा के अनुसार पूर्व से पश्चिम की ओर एक के बाद एक तिरंगा फहराएंगे। यानी जो हमारा पूर्व में सबसे फिजी देश है, वहां पर जो हमारा एम्बेसी है, जो झंडा फहराने की शुरुआत करेगी, और जो जो सूर्य आगे बढ़ेगा तो सैन फ्रांसिस्को में जो अमेरिका का बिल्कुल पश्चिमी शोर है, वहां पर सूर्य अस्त के समय तक ये झंडा फहराया जाएगा। तो ये एक हमारा जो डायस्पोरा है उनको साथ जोड़ने की बात है, और हमारे जो डिप्लोमेटिक मिशन है वो दुनिया भर के देशों को भी एक संदेश देना की कोशिश होगी कि जो हमारे देश में स्वतंत्रता का दिवस है उसको हम कितने ढंग से मनाते हैं, और उसका एक हिस्सा हमारा बन गया है हर घर तिरंगा। हमारे जो लोग जैसे संस्कृति मंत्रालय है उसका जो पोर्टल है उस पर पहली बार एक तकनीकी टूल को जोड़ा गया है। देश के नागरिक राष्ट्रगीत वंदे मातरम को सही धुन में गाने के लिए उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल दिए गए हैं और वोकल गाइडेंस दिया गया है कि आपको राष्ट्रगीत सचमुच में ठीक ढंग से कैसे गाना चाहिए। तो इसके साथ एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि पिछले कुछ वर्षों से प्रधानमंत्री के इनिशिएटिव पर अब दिल्ली, कलकत्ता और अमृतसर जैसे प्रमुख शहरों में मौन जुलूस निकाले जाते हैं, क्योंकि इसको विभाजन की त्रासदी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी स्क्रीन की जाती हैं, क्योंकि अब ये केवल दो ही इसके महत्व नहीं है, यानी हर घर तिरंगा हो और वंदे मातरम हो, साथ में जो विभाजन की विभीषिका थी
1: जी,
0: उसको भी लोगों तक पहुंचाकर कैसे जिस तरह से भारत का विभाजन हुआ और उसमें से कैसी विभीषिका हुई, उसको भी इस बार से कुछ सालों से ये लोगों के साथ नई पौध के साथ नई जनरेशन के साथ उसको जोड़ने की दृष्टि से भी ये कार्यक्रम साथ में लिया गया है। तो ये लोगों की सक्रिय भागीदारी करना, उनके साथ उनको ये पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ हम लोग क्यों करते हैं। हमारी नई पीढ़ी जो है उसको ये जानकारी रहनी चाहिए कि कितनी कठिनाइयों के बाद भारत ने स्वतंत्रता हासिल की थी, कितने लोगों ने बलिदान दिया था, और कैसे विभाजन के दौरान एक बड़ी भारी विभीषिका हुई जिसमें लाखों लोगों को जान पड़ी।
1: पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे भी मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, और ताकि प्रेरणा मिले कि हम किस संघर्ष और बलिदान से आजादी हमने प्राप्त की है उसका मूल्य हम समझें। तो आपको लगता है इससे प्रेरणा मिलेगी सब नागरिकों को, खासकर युवाओं को, कि राष्ट्र निर्माण में यथा योग्य जितना भी कर सके योगदान करें और अलगाववाद से बचें?
0: बिल्कुल, देखिए पहले के कई दशकों तक न तो कभी तिरंगा का महत्व समझाया गया था हमारी पीढ़ी को स्वतंत्रता के बाद, और न ही कोई जो विभाजन की विभीषिका है उसके बारे में बताया गया था। नई जनरेशन को मालूम ही नहीं था कि कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और वो किस किस तरह के बलिदान थे, उसमें भगत सिंह की बात आती है, लेकिन ये जो विभीषिका हुई पार्टीशन की इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी। अब कुछ वर्षों से इसके बारे में इसलिए उसकी प्रदर्शनियां लगाई जा रही हैं, उसकी फीचर फिल्म बन रही हैं, और लगातार एक अभियान के तहत इन सारी चीजों को नई पौध को नई जनरेशन को अगर हम बताते रहेंगे तो उनको भी और वो भी आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि ये कार्यक्रम और ये आयोजन जो अभियान है ये सचमुच में अब एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, कारपोरेट, रिलीजियस स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, इन सबको इसके साथ में भागीदारी करनी चाहिए, और तभी ये जो हमारा अभियान है ये और ज्यादा तेजी से लोगों की समझ में आएगा।
1: बिल्कुल। सो अशोक जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जन भागीदारी ऑलरेडी ये बन चुका है, लेकिन और भी ज्यादा से ज्यादा इसमें लोगों को आगे आना चाहिए। आपको लगता है कि इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक जिम्मेवारी भी आती है कि जो हमें आजादी हमें मिली है इतनी मुश्किल से, उसको हमें संभाल के रखना है और हमें अपनी समृद्धि को आगे बढ़ाना है, और जो हमारी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा आपने कहा स्वतंत्रता सेनानी या जो आंदोलनकारी रहे जिनके संघर्ष से हमें आजादी मिली, उनके अलावा जो वर्तमान सशस्त्र बल हैं जो रक्षा करते हैं।

0: हमारी, उनके प्रति भी एक आदर भाव सम्मान जागता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद बलिदान हुए हैं वो युद्ध में लड़ाइयों में हमारे जो वीर सैनिक जवान उन्होंने जो शहादत दी है उसको भी याद करने का यही अवसर होता है। और इसीलिए ये जो हर घर तिरंगा है ये केवल आजादी के परवानों की याद नहीं दिलाता बल्कि उसके बाद आजादी को बनाए रखने में वीर सेनानियों जो इसमें बलिदान होता है जो शहीद होते हैं और लगातार आतंकवाद से लड़ते हुए भी शहीद होते हैं तो उनके प्रति भी श्रद्धांजलि का एक प्रतीक बनता है। और इसीलिए हर घर तिरंगा के साथ साथ जो इसके साथ वंदे मातरम को जोड़ा गया है क्योंकि वंदे मातरम भी स्वतंत्रता संग्राम के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत प्रोत्साहित करता था और एक जोश भरता था और उसके साथ राष्ट्रीय गान के साथ जैसे उसको जोड़ दिया गया है तो इससे हमारे सेनानियों को भी एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो जो पहरेदारी कर रहे हैं वो देश को एक सुरक्षित रखने के लिए और हम लोग भी अपने घरों में रात को इसलिए सो पाते हैं देश सुरक्षित हाथों में है तो ये हमारे जवानों के प्रति भी एक श्रद्धांजलि का बहुत बड़ा अवसर है।
0: सो अशोक जी, एक सामूहिक पहचान है हम सभी की, प्रत्येक भारतवासी के लिए तिरंगा और हमारा राष्ट्रगीत राष्ट्रध्वज दोनों एक कहें कि ड्यूल सेलिब्रेशन है। और अगर हम देखें कोई भी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होता है या खेल आयोजित होते हैं तो हरेक देश जो उनका ध्वज है और उनका राष्ट्रीय गीत है वो बहुत महत्व रखता है। सो उस संदर्भ में भी एक अपनी पहचान बनाने के लिए और पूरा जो हमारा विविध देश है, इतना बड़ा देश है, उसको एक सूत्र में बांधने के लिए आपको लगता है कि इस तरह के आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है?
1: बिल्कुल, देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जब हम बात करते हैं तो उसमें वो जो एक भारत है तो उसमें एकता बहुत आवश्यक है। तो जितने भी देश में विविधता है उनके रहते हुए भी अनेकता में एकता भारत की विशेषता, ये जो एक मंत्र है और ये भारत के हर क्षेत्र को चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो चाहे दक्षिण राज्य हो इन सबको एक माला में पिरोए रखता है। और इसी तरह भाषा और जाति और धर्म इन सब को मिलाकर रखना बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है तो उसके लिए देशभक्ति की भावना जगाने का लिए जो प्रतीक है वो राष्ट्रीय ध्वज ही है तो उसके प्रति सम्मान को अगर हम और गहरा करेंगे उसके साथ हम राष्ट्र गीत के साथ राष्ट्र गान को भी हम बढ़ावा देंगे तो कोई कारण नहीं है कि ये जो अभियान है ये पूरे देश और समाज को एक सूत्र में पिरोने में और अधिक योगदान करेगा।
0: अशोक जी, पहले तो बहुत ही फॉर्मल और ऑफिशियल ही लहराया जाता था हमारा ध्वज, लेकिन अब जिस तरह से सब नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त हुआ है, जैसा आपने भी अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि जो ध्वज है उसकी गरिमा और उसको लहराने के कुछ नियम, अगर आप संक्षेप में जो प्रमुख गाइडलाइंस है वो बता सके।
1: बिल्कुल, देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अपने घरों, निजी प्रतिष्ठानों, सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों में तिरंगा फहराएंगे और इसको फहराते समय जो एक ध्वज संहिता में संशोधन किया गया है, एक फ्लैग कोड जो है उसमें भी बदलाव किया गया है। जी, आप यदि झंडा खुले आसमान में हो या किसी घर पर हो तो उसे दिन और रात 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले ऐसा माना जाता था कि दिन में फहराकर उसको जो है रात को उतार लिया जाए, ये अभी बदलाव किया गया है कि नागरिक जो है वो आधिकारिक जो वेबसाइट पर डिजिटल रूप से भी अपना झंडा पिन कर सकते हैं, तिरंगे के साथ सेल्फी अपलोड कर सकते हैं और उससे उनको भागीदारी का प्रमाण पत्र भी मिलेगा, वो भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ एक चीजें इसमें जोड़ी गई है और मैं समझता हूँ कि जो ये अभियान है ये नागरिकों के दिलों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को और ज्यादा गहरा करेगा और जागरूकता बढ़ाएगा, विशेष तौर से नई पीढ़ी के मन में, क्योंकि उनको जब तक हम लगातार अपने देश की विविधता को बुलाकर सभी में राष्ट्रीय गौरव एक साझा प्रतीक के रूप में एकजुट करेंगे नहीं तो कोई कारण नहीं है कि ये जो हमारी नई पीढ़ी है वो इससे वंचित रहे, इसलिए उनको जोड़ के रखने के लिए ये आयोजन और ये अभियान बहुत ही आवश्यक है और उसी तरफ देश अब चल भी रहा है।
0: अशोक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर घर तिरंगा अभियान 2026 के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालने के लिए।
1: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे हर घर तिरंगा, देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना के उत्सव पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन। कार्यक्रम कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
3: आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी है। आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की शरियात। निशा मेरा पेश है कव्वालियां। आज के फनकार हैं मेहताब फरीदी कव्वाल और हम नवा।

सन ऑफ इंडिया फिल्म का नाम गीता दत्त का गाया हुआ। आइए अब हेमंत कुमार और संध्या मुखर्जी की आवाजों में सजा फिल्म का ये दो गाना।

मंगेशकर की आवाजों में तराना फिल्म का ये दो गाना आप सुन रहे थे। आइए अब प्यार की बाजी फिल्म का दो गाना सुनते हैं। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और गीता दत्त की।

सुशांत बेगम और किशोर दा की आवाजों में नया अंदाज फिल्म का नगमा आपने सुना, ये गोला फिल्म का नगमा मुबारक बेगम और तरत महमूद की आवाजों में।

की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ उस वक्त तक दोबारा बातचीत नहीं शुरू करेगा जब तक कि अमेरिका उस 14 नुकाती मुफाहिमत नामे की खिलाफ वर्जी खत्म नहीं करता जिस पर दोनों मुल्कों के दरमियान जून में दस्तखत किए गए थे। भारतीय बहरिया और अमरीकी बहरिया की जानिब से धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने से मुतालिक मुश्तरका मश्क ईओडी 2026 आज से 14 अगस्त तक कोची में वाक जनूबी बहरी कमान में मुनक्किद की जाएगी। वजारत दिफा के मुताबिक इस बाहमी मश्क का मकसद दोनों बहरी अफवाज के माहिर गोताखोर और धमाका खेज मवाद को नकारा बनाने वाली टीमों के दरमियान बाहमी ताउन और अमली हमाहंगी को मजीद मुस्तहकम करना है। 5 रोजा इस मश्क के दौरान माहिरीन के दरमियान तजर्बात और मालूमात का तबादला, मुश्तरका तरबियती सरगर्मियां, मुख्तलिफ आलात का अमली मुजाहरा और सूरत हाल पर मबनी अमली मश्कें की जाएंगी। वजारत दिफा के मुताबिक भारतीय और अमरीकी बहरिया साल 2005 से ये मुश्तरका मश्कें करती आ रही हैं। आइंदा होने वाली मश्क इस सिलसिले की 8वीं कड़ी होगी। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। रूस के बेलगोरोड इलाके में यूक्रेन के ड्रोन के हमले में 5 अफराद हलाक जबकि दीगर 2 दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी हो गए जिनमें 4 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इलाकाई हुक्काम ने बताया कि इस हमले में 29 अपार्टमेंट इमारतों और 5 निजी मकानों को नुकसान पहुंचा। रूस के हमले में यूक्रेन में खारकीव के साल्टिवस्की जिले में एक बुलंद रिहायशी इमारत निशाना बनी। इलाकाई गवर्नर ओले सीनी हुबोफ ने कहा कि इसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 13 जख्मी हो गए। मुकामी हुक्काम के मुताबिक ओडेसा के ब्लैक सी के साहिली शहर और मुत्तसिल इलाकों पर दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स के हमले में 8 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये वाज़े पैगाम दिया कि भारत अपने शहरों और मुल्क की ख्वातीन के माथे के सिंदूर के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर दिफा ने ये बात नई दिल्ली में बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के कैंप का इफ्तिताह करते हुए कही। उन्होंने भारतीय अफवाज की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों और उनके सरपरस्तों का सफाया किया और भारत पर बुरी नजर रखने वालों को संगीन नतायज का सामना करना पड़ा। सिंदूर महारक्तदान यात्रा का जिक्र करते हुए वजीर दिफा ने कहा कि जहां ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की शुजातमंदी का मुजाहरा किया है वहीं खून का अतिया देने का ये कैंप हमदर्दी और इंसानियत की अलामत है। उन्होंने बताया कि कैंप में महाराष्ट्र के तकरीबन 1000 पहलवानों और खिलाड़ियों ने खून अतिया किया। उन्होंने कहा कि ये अकदाम बेलौस खिदमत और मुसल्ले अफवाज के साथ यकजहती के जज्बे की अक्कासी करता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर दौलत मुश्तरका गेम्स 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से मुलाकात की। एक वीडियो पैगाम शेयर करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि जो खेल कूद में शिरकत करते हैं वो तरक्की करेंगे। उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो भारत के लिए हमेशा खिलाड़ियों की हिम्मत अफजाई करें। 23 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में मुनक्किदा खेल कूद मुकाबलों में भारत तमगों की फहरिस्त में 4थे मुकाम पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ खेलकूद मुकाबलों में मजमूई तौर पर 39 तमगे हासिल किए। इनमें सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे शामिल हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अमरीकी शहर ओरेगन में हुई 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप में शानदार कारकिर्दगी का मुजाहरा करने वाले भारतीय बहरिया के एथलीटों बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान को मुबारकबाद दी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। शहरी हवाबाजी की वजारत ने बताया है कि एयर इंडिया के फुकेट से दिल्ली जाने वाली परवाज के हालिया वाकये की तहकीकात हवाई जहाज के हादसात के तहकीकाती ब्यूरो की जानिब से की जा रही है। वजारत ने इस वाकये को एक संगीन वाकया करार दिया है। ये वाकया इस माह की 4 तारीख को पेश आया जब परवाज के दौरान तैयारा अचानक हवा के दबाव के कमी के बाद तकरीबन 300 फुट नीचे आ गया था।

0: हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के तहत अब तक 1,25,00,000 से ज्यादा मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकानात की तामीर मुकम्मल हो गई है, नीज उन्हें मुल्क भर में मुस्तफिदीन के हवाले किया जा चुका है। तकरीबन 1,00,00,000 मकानात ख्वातीन को अलॉट किए गए हैं। हाउसिंग और शहरी उमूर के सेक्रेटरी सत्येंद्र सिंह की सरबराही में मुनक्कदा मंजूरी देने वाले और निगरानी की मरकजी कमेटी की मीटिंग के दौरान 16 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में मुआशी तौर पर कमजोर तबके के कुनबों के लिए PMAYU 2.0 के तहत 2,09,000 से ज्यादा मकानों की मंजूरी दी गई थी। शहरियों के माबैन हुब्बुल वतनी को फरोग देने, कौमी यकजहती को मुस्तहकम करने और भारत की सकाफती विरासत को फरोग देने के लिए मुल्क भर में हर घर तिरंगा मुहिम की तकरीबात मनाई जा रही है। ये मुहिम हर घर तिरंगा पहल का 5वां साल है, जिसका आगाज 2022 में हुआ था, नीज जब से ये मुल्क की आवामी शिरकत की सबसे बड़ी तहरीकों में से एक बन गई है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा मुहिम में जोशो खरोश के साथ शिरकत करने और विकसित भारत की तामीर के तई अपने ताउन के इज्तिमाई अहद का इआदा करने के लिए लोगों से अपील की है। शदीद तूफान डॉल्फिन कल तीसरे पहर चीन के मशरिकी साहिल पर पहुंच गया, जिससे ज़ेजियांग और फूजियान सूबे मुतासिर हुए हैं। इस तूफान के आने के बाद मुल्क के मौसमियात के कौमी मरकज ने मुल्क में शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। इसी दौरान शंघाई के 2 हवाई अड्डों पर 1,300 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं, जबकि हुकाम ने आसपास के इलाकों में तकरीबन 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पर पहुंचाया है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि इस वक्त उनका मुल्क अमरीका के साथ बराह रास्त मुजाकिरात नहीं कर रहा है। रूस और यूक्रेन ने रात के दौरान एक दूसरे पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों में बहुत से शहरी हलाक और जख्मी हो गए। मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज हो गया है और शदीद तूफान डॉल्फिन चीन के मशरिकी साहिल पर पहुंच गया है। रेड अलर्ट जारी किया गया है। 1,300 से ज्यादा परवाजें मनसूख की गई हैं, जबकि 3,00,000 अफराद को महफूज जगह पर पहुंचाया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। सामिन सबका एक बजा चाहता है। उर्दू सर्विस की आज की तीसरी मजलिस की नशरियात अब खत्म होती है। ये आकाशवाणी कल सुबह 9:30 पर पहली मजलिस की नशरियात लेकर फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज। सब खैर। जय हिंद।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
3: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की।
2: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
4: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 100

0: 50वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। डीएमआरसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन की शुरुआत की गई है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने नागरिकों से गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराने और डिजिटल कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का आग्रह किया। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें से करीब 1,00,00,000 मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। राज्य के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 2025 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच करेगी और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। पाकिस्तान में दक्षिणी वजीरिस्तान के जारमिलान इलाके में हथियारबंद हमलावरों ने 2 बुजुर्ग आदिवासी नेताओं की गोली मारकर हत्या कर दी। पीड़ित गाड़ी से जा रहे थे तभी डोरजांडा में अज्ञात बंदूकधारियों ने उन पर गोलियां चला दी। दोनों आदिवासी नेताओं को कई गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक हाजी गुल और मलिक बादशाह सुलेमान खेल कबीले से थे। गोलीबारी के तुरंत बाद हमलावर मौके से भागने में सफल रहे। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुग पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार बारिश जारी है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated across the country to promote patriotism, national unity, and India's rich cultural heritage.

जी हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे, और बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गीत रचना की ओर। यह गीत है कैसे आए, फिल्म नास्तिक से बेहतरीन रचना। ये फिल्म नास्तिक फिल्म 1954 प्रदर्शित फिल्म रही है, और आवाज लता मंगेशकर की, और गीत फिल्मिस्तान बैनर तले गीत है, और संगीत से सजाया है सी रामचंद्र ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

ये साथियों बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। और ये गीत वाकई बहुत ही प्यारा है, विधि का विधान फिल्म से। बहुत ही सुंदर रचना है और ये रचना वाकई खूबसूरत है। विधि का विधान, फिल्म वीर भीष्म, आवाज प्रदीप की है और ये फिल्म 1964 प्रदर्शित फिल्म रही है। वीर भीष्म और सी रामचंद्र का संगीत से सजा खूबसूरत गीत है। आइए सुनते हैं ये प्यारी सी रचना।

बेहद खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। जी हाँ दोस्तों, और ये गीत जो आने वाला है बहुत ही सुंदर और बेहद खूबसूरत है। घिर घिर के आसमान पार, बाबरन एंड फिल्म से शानदार रचना, आवाज राजकुमारी की है। ये फिल्म बाबरन एंड 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है। गीत केदार शर्मा के हैं और संगीत रोशन का। आइए सुनते हैं ये खूबसूरत गीत।

या दोस्तों, बहुत ही सुंदर गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन रचना के साथ। एक बहुत ही खूबसूरत रचना है, ये गीत वाकई बहुत ही लाजवाब है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हाँ दोस्तों, फिल्म भाई बहन से शानदार रचना, जो 1950 प्रदर्शित फिल्म रही, आशा भोसले और साथियों की आवाज में बेहतरीन रचना। आइए सुनते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।

जी हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गीत की ओर। ये गीत दिल को तेरी तस्वीर, फिल्म दास्तान से। ये शानदार रचना, फिल्म दास्तान 1950 प्रदर्शित फिल्म रही है और सुरैया और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में शानदार रचना। गीत शकील बदायूनी के और संगीत नौशाद का। आइए सुनते हैं

जी हाँ, दिल को भाए दिल को, बहुत ही सुंदर खूबसूरत रचना भी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और बेहतरीन गीत की ओर। यह गीत वाकई बहुत ही शानदार है और ये गीत के बारे में हम बता देते हैं। मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, फिल्म श्री 420 से यह शानदार रचना आशा भोसले और मन्ना डे और साथ 1955 प्रदर्शित फिल्म रही है और ये गीत शैलेंद्र के और संगीत शंकर जयकिशन का। आइए सुनते हैं।

0: श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। मुझे यानी अपने दोस्त ललित कुमार को दीजिए अनुमति। 2 बजने को हैं और अब पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
1: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
3: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
1: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देशभर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने आजादी की भावना का जश्न मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम वाली एक खास मेट्रो ट्रेन शुरू की है। DMRC ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के जश्न के तहत आयोजित हफ्ते भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के तौर पर कल से इस ट्रेन

की शुरुआत की गई है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में लगातार भारी बारिश हो रही है जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में वैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है। आईएमडी ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है। भारत ने बोलिविया की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा क्षमता को मजबूत करने के लिए 8 मीट्रिक टन जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि भारत एकजुटता और साझा प्रगति के जरिए सहयोग बढ़ाने के लिए हमेशा तैयार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने कुल 285 किलोग्राम भार वर्ग उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मैंने एक ख्वाब सा देखा है।
1: जरा मैं भी सुनू।
0: सुन के शर्मा तो न जाऊंगी
1: तुमसे नहीं।

0: मैंने भी ख्वाब सा देखा है।
1: कहो, तुम भी कहो।
0: खुद पे इतरा तो न जाओगे?
1: नहीं, खुद पे नहीं।

0: ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? उनका अंत निकट है।
0: तथास्तु।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,
0: वेद शास्त्रों की भाषा को ये ढोंगी क्या जाने, ये पूजा करवाए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेताओं ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
1: जो खेलेगा वो खेलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
0: इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। मणिपुर भी देश के बाकी हिस्सों की तरह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगल जामई में अपने घर से इस अभियान में शामिल हुए मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने लोगों से अपील की कि वे खुद को पहले भारतीय और फिर मणिपुरी कहें। उन्होंने कहा कि जब तक लोग खुद को अपनी जातीय पहचान से जोड़कर देखेंगे, तब तक राज्य में शांति कायम करना मुश्किल होगा। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीबीआई जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की बात भी कही गई है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव श्री वत्स कृष्णा ने सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय में योजना और डिजिटल परिवर्तन के उपमंत्री अब्दुल अजीज अल मथानी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए हज के अनुभव को बेहतर बनाने के मकसद से हज पोर्टल्स के तकनीकी एकीकरण पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने हज और उमराह मामलों के उपमंत्री अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहीम वज्जान से भी मुलाकात की और मदीना में हज यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने पर सार्थक चर्चा की। इस दौरान आवास, परिवहन, समन्वय और तीर्थ यात्रा से जुड़ी अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर खास जोर दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के यूजीन में हुई विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में बसंत कुमार मेघवाल और शाहनवाज खान ने इतिहास रचा है। बसंत कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक और शाहनवाज खान ने लंबी कूद में कांस्य पदक जीता, जिससे चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई। बसंत विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में ऊंची कूद में और शाहनवाज लंबी कूद में पदक जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाज में ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे थे फिल्म सड़क से। अब आइए आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में हम दिल दे चुके फिल्म से ये खूबसूरत सा नगमा।

अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में हम हो गए आपके इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम और लता मंगेशकर की आवाज में हम आपके हैं कौन फिल्म का ये गीत।

हिरन अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में हम साथ साथ है फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

1942 अलव स्टोरी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाज थी कुमार सानू की। अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे हैं जो जीता वही सिकंदर फिल्म से, आवाज है उदित नारायण और साधना सरगम की। इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम गीत और गजल अब यहीं समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। प्रातः के 4 बजे हैं और प्रस्तुत है कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

अब आप सुनेंगे भगवान कृष्ण को समर्पित एक रचना, स्वर चेरतला आर गोपालन नायर और के राधामणि के हैं।

0: इसके साथ ही
1: आज का अर्चना कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
2: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है और प्रस्तुत है नाद ब्रह्म।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। आज सोमवार है, शक संबत 1948, श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त सन 2026। सुबह के 4:53 और

अब हम आपको हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से कुछ ही पलों में यानी 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार। आओ योग करें, यह कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 5:10 पर। देशभक्ति संगीत आप सुन सकेंगे 5:20 पर। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी होगा 5:30 पर। हिंदी में समाचार आप सुनेंगे प्रातः 6 बजे और 6:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना हम लेकर आएंगे प्रातः 6:10 से। चिंतन ये कार्यक्रम आप सुन सकेंगे प्रातः 6:40 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान से आज का प्रसंग। प्रातः 7:10 पर होगा कार्यक्रम संगीत का। 7:30 पर लेकर आएंगे हम फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग। समाचार प्रभात होंगे प्रातः 8 बजे और 8:15 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा आप सुन सकेंगे प्रातः 8:45 पर। अवर गेस्ट ये कार्यक्रम होगा प्रातः 9:15 पर। पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक होगा प्रातः 9:30 से। प्रातः 10:10 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़िया ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:10 पर। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर मंजरी होगा दिन में 11:30 से। महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन आप सुनेंगे।

1:40 पर आप सुनेंगे पंजाबी कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आप प्रातः के 5 बजने को है आप समाचार होंगे।

काल जुग रतन का रतो शाम कहे से तंबर स्वामी सच में से साच रहे सबको सच संभावे रे कहे रहे आप हर पूराम नाम देवस नाय ले प्रास जाए नान कौ मुखंतर पाहे जुज में जोर चली चंद्रावन कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया काल में वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई अलहो भया नील वस्त्र ने कपड़े पहरे तुरक पठानी अमल किया चारे वेद हुए सत्यार।

पौड़ी कपर रूप सुहावना छड़ दई अंदर जावना मंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म के मन पाम दे राही पिड़े गया जावना नंगा दोज के चलिया ता दिसे खरा डरावना कार्योगन पछतावना कार्योगन पछतावना।

0: पौड़ी साहिब होए दयाल कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे सुन हुक्म मनाए सी हुक्म मने होवे प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चंदिया सो फल पाए सी ता अंदर कह पैदा जाए सी अंदर कह पैदा जाए सी
1: कोई गावे रागी नादी बेटी बहु पात कर।

विवेक दान विसादान परोसादान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा रखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहेब।

पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास पुल चुक माफ करनी। सच्चे पातशाह जीओ जिना जिना गुरमुखा प्रेमिया वलों कड़ा प्रसाद भेटा कीता।